जब अब एक भक्त अपने इष्ट पर भरोसा करता है तो संकट कितना ही बड़ा क्यों न हो, वो हमेशा चिंता मुक्त रहता है।

भक्ति वो भाव है जिसे न पाने की चाह न बचने की याचना होती है, होता है तो केवल स्वीकार और समर्पण का भाव।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग।

आराध्य से मनचाहा वरदान प्राप्त कर मुनि सुतीक्ष्ण की साध पूरी हुई। प्रभु की इच्छा के अनुसार तब वो उन्हें अपने गुरु अगस्त्य मुनि के आश्रम ले चले।

श्री राम लक्ष्मण सीता का आगमन सुन अगस्त्य मुनि उनके दर्शनों को दौड़े। नाना प्रकार से श्री राम की पूजा वंदना करने हेतु जब उन्हें आसन पर बिठाया तो मुनियों का समूह प्रभु दर्शन के लिए एकत्र हो गया। पूरी ऋषि मंडली में श्री राम इस मुद्रा में बैठे हैं कि प्रत्येक उपस्थित जन को वो अपनी ही ओर देखते दिखाई देते हैं। श्री राम ने अगस्त्य मुनि को वहां अपने आगमन का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मुझे ऋषि मुनि द्रोही राक्षसों के विनाश का उपाय बताएं। अगस्त्य मुनि ने श्री राम से दंडक वन में पंचवटी जाकर गौतम मुनि के कठोर शाप का दमन करने की प्रार्थना की।

0: इसी के साथ संपन्न होता है श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाई, राम राम। कृषि की बात मैं आज जिक्र करेंगे वर्मी कंपोस्ट के फायदे हैं इस बारे में कुछ सुझाव भाई। खास तौर पे और जो सामान्य बात है, सामान्य तौर पर हम गोबर की खाद या कंपोस्ट बनावे हैं तो उसमें कुछ पोषक तत्व की कमी हो जाए है, हम इस खाद ने कंपोस्ट को केंचुआ की सहायता से बना सके हैं। केंचुए जैविक कचरे ने खा कर और गुणवत्ता युक्त जो पदार्थ हैं इनमें रूपांतरित करते हैं। इस विधि नाम वर्मी कंपोस्टिंग कहें और इस तरह तैयार जो कंपोस्ट है इसने वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद भी कहते हैं। खाद बनाने की जो प्रक्रिया वो है इसमें जैविक कचरा केंचुआ के द्वारा खाया और पचाया जा है। इस दौरान केंचुआ की आंता द्वारा उत्सर्जित जो स्त्रावित पदार्थ पाचित पदार्थ मिल जाए हैं जो शरीर से निकलने के बाद वर्मी कास्ट के रूप में केंचुआ खाद बना दे हैं। ये वर्मी कास्ट पौधे के लिए हानिकारक जीवों को दूर भगाने का काम करें हैं और केंचुआ खाद को हम न केवल अपने खेतों में प्रयोग कर सके हैं बल्कि इस खाद को बेचकर हम काफ़ी अच्छी आमदनी भी कमा सके हैं। और बहुत से जो किसान भाई हैं जो डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं वो इस खाद ने बना कर और बेचने भी लाग रहे हैं, उससे भरपूर फायदा भी लेने लाग रहे हैं। और खेत में अगर हम डाल रहे हैं अपनी जो ज़मीन है उसने ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ बनाओगे भाई। जो अपनी ज़मीन की तासीर हमने बिगाड़ ली है रासायनिक खादाते हैं उससे इसमें बहुत ज़्यादा सुधार आओगा। जो भी हम फसल लेंगे उसकी गुणवत्ता भी बहुत बढ़िया अच्छी रहेगी और जो खान पीन की जो भी चीज़ें हैं उसमें स्वाद न्यारा होगा। जय आम रासायनिक खाद डालना बंद कर दें, हालांकि एकदम तो बंद नहीं कर सकते लेकिन धीरे धीरे इसने कम कर जरूर कर सके हैं तो इस कारण जो हमारी फसल में भी कोई पैदावार पर असर नहीं पड़ेगा बल्कि पैदावार हमारी बढ़िया अच्छी तरीके से बढ़ोतरी पर जाएगी। तो इस वर्मी कंपोस्ट के बहुत फायदे हैं खेत में डालने से। पौधे के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं ये सकते संतुलित मात्रा मिल जाए इससे। इस खाद में पौधे की वृद्धि वाले जो हार्मोन पाए जा हैं वह प्रचुर मात्रा में पाए जा हैं जिससे पौधे की बढ़ोतरी बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। इस खाद के प्रयोग से फसलों की ज़्यादा उत्पादकता और उच्च गुणवत्ता यह हम ला सके हैं, यानी कि गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है। खाद के प्रयोग से मिट्टी में जो हानिकारक रसायन की पौधे के लिए उपलब्धता में कमी भी आ जाए है, क्योंकि जो हानिकारक जो रसायन पैदा हो जाए रासायनिक खादों के द्वारा उसकी कमी होकर और गुणवत्ता बढ़िया आ जाए है, जो पोषक तत्व हैं वह हमारी ज़मीन में ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए हैं। मिट्टी में जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी बने है वर्मी कंपोस्ट डालने से, और मिट्टी में जो जैविक पदार्थ हैं इसकी मात्रा भी बढ़ रहे है। ज़मीन की जो भौतिक संरचना है इसमें सुधार हुए है, इसके कारण ज़मीन की जो उपजाऊ ताकत है वह भी बढ़ रहे है और पानी सोखने

0: की क्षमता भी बढ़ जाए, मिट्टी की पानी पकड़ने की क्षमता में वृद्धि हो है, यानी कि जो निचली परत रासायनिक खाद आदि करड़ी होगी है वह टूटकर नरम हो जाए है, पानी संचार करने की उसमें ताकत बढ़ जाए है जमीन के अंदर। मिट्टी में पानी और वायु का संचार बहुत बढ़िया तरीके तो है, जिसके कारण पौधा की जड़ा में भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी बन जाए है। गोबर को ईंधन के रूप में प्रयोग होने के बाद होने वाले जो पर्यावरण प्रदूषण है उनसे भी हम बच सके हैं, और पशुशाला के जो कूड़े करकट से हैं, फसलों के अवशेष से हैं, इनका सही प्रयोग करके हमें वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सके हैं, जिससे हमारी फसल में भी सुधार, खेत के उपजाऊपन में भी सुधार और पर्यावरण में भी सुधार ये चीज़ हो सके हैं। तो वह देखे आपने कि वर्मी कंपोस्ट ने बहुत ज़्यादा किसान भाई फायदा ले सके। तो ये कुछ मोटी मोटी बात थी कि भाई केंचुआ खाद का प्रयोग करके, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करके ने हम अपने खेतों की जमीन ने भी उपजाऊ बना सके हैं और फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार कर सके हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब समाचार प्रसारित होंगे। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नोपवेशनानन्तरं 13,000 कोटि रूप्यकाधिकाः 5 परियोजनाः अनुमोदिताः। एतासु 4 रेलमार्गसम्बद्धाः, 1 च राजमार्गसम्बद्धा परियोजना अस्ति। सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन पश्चिमबंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश इत्येतेषु 4 राज्येषु रेलमार्गस्य 8 बहुमार्गीय परियोजनाः अनुमोदिताः। असौ उक्तवान् यत् आहत्य 50,4,900,000,000,000 रूप्यकाणां व्ययेन एताः परियोजनाः 30,2,000,000,000 वर्षात् 31,2,000,000,000 वर्षपर्यन्तं पूर्णाः करिष्यन्ते।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रूपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव संसूचितवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन बिहार राज्ये मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खण्डस्य राष्ट्रिय राजमार्ग 22 इत्यस्य 4 मार्गीय मानकानुसारं उन्नयनमपि अनुमोदितम्। अस्य व्ययः आहत्य 90,500,000,000,000 रूप्यकाधिकः अस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य नवदिल्ल्यां जापानस्य रक्षामन्त्रिणा शिन्जिरो कोइजुमी इत्यमुना सह द्विपाक्षिकोपवेशनं करिष्यति। अपेक्ष्यते यत् अस्मिन् उपवेशने हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे रणनीतिक विश्वासः सहयोगश्च अधिकं सुदृढौ भविष्यतः तथा स्थिरतायाः सुरक्षायाश्च प्रवर्धनं भविष्यति। उभौ मन्त्रिणौ सामुद्रिक सुरक्षा क्षेत्रे गहन सहयोगस्य अथ मेक इन इंडिया इत्यस्य च अन्तर्गतं रक्षोपकरणानां प्रौद्योगिक्याश्च क्षेत्रे अधिक निकट सहयोगस्य विषये विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। केन्द्रीय मन्त्री किरेन रिजिजुः एतत् कथनं निराकृतवान् यत् चीन देशः अरुणाचल प्रदेशे 60 किलोमीटर पर्यन्तम् अन्तः प्रविष्टः अस्ति। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे श्री रिजिजु

0: सिद्धु उक्तवान् यत् बांग्लादेशस्य छायाचित्राणि दृश्यचित्राणि च चीनदेशस्य अरुणाचलप्रदेशे प्रवेशं मिथ्यारूपेण प्रदर्शयितुं प्रयोज्यन्ते। असौ उक्तवान् यत् एतादृशानि असत्यानि अभिकथनानि सीमां रक्षतां सैनिकानां मनोबलं न्यूनीकर्तुं शक्नुवन्ति तथा अनावश्यकं भ्रमं जनयितुं शक्नुवन्ति। मन्त्री उक्तवान् यत् भारत चीन सीमा सम्बद्ध विषय गंभीर अस्ति। सः जनान् आहूतवान् यत् एतादृशे संवेदनशील विषये मिथ्यानि उतवा अप्रमाणितानि कथनानि न कुर्वन्तु। दिल्ल्यां प्रचलितस्य विशेष गहन पुनरीक्षणस्य अन्तर्गतम् आवेदन पत्राणाम् उपस्थापनस्य अन्तिमतिथि अस्य मासस्य चतुर्विंशति दिनांकं यावत् वर्धिता। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः अनुसारम् अधुना प्रारूप मतदातृसूची अस्य मासस्य एकत्रिंशत् दिनांके प्रकाशिता भविष्यति। अभ्यर्थनानाम् आक्षेपानां च प्रस्तुतेः अन्तिमतिथि आगामि मासस्य त्रिंशत् दिनांकं भविष्यति। बांग्लादेशे अद्य राष्ट्रपति पदाय निर्वाचनं भविष्यति। अस्मिन् निर्वाचने सांसदाः शासनाधिरूढस्य बीएनपी दलस्य वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर तथा एकादश दलात्मकस्य विपक्ष संयुतेः प्रत्याशी कर्नल ओली अहमद इत्येतयोः मध्ये चयनं करिष्यन्ति। पञ्चत्रिंशत् वर्षाणाम् अनन्तरं प्रथमवारं राष्ट्रपति पदाय निर्वाचने मतदानं भविष्यति। मतदानम् अद्य अपराह्णे द्विवादनादारभ्य सायं पञ्चवादनपर्यन्तं संसद्भवने भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में

0: शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता विषय पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को के गोस्तीनी दौर में आयोजित किया जाएगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरलम, माहे और तमिलनाडु में बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कल देर रात बारिश हुई। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला आज चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल किए, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत को मजबूत बढ़त दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railways covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with a total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं।
3: 5 मेजर डिसीजंस हैव बीन टेकन। द फर्स्ट 4 प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टू द रेलवेज व्हाइल द फिफ्थ इज द हाईवे प्रोजेक्ट। द फर्स्ट 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड द क्वाड्रपलिंग ऑफ द हावड़ा चेन्नई मेन रेलवे रूट एंड द क्वाड्रपलिंग ऑफ द कटक पारादीप रेलवे लाइन। द फिफ्थ प्रोजेक्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 4 लेन हाईवे फ्रॉम मुजफ्फरपुर वाया सीतामढ़ी टू सोनबरसा। दीस प्रोजेक्ट्स विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 13,041 करोड़ रुपीज वर अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट टुडे।
2: टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: Mr. Vaishnaw informed that the cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of the National Highway 22 in Bihar to a 4-lane standard at a total capital cost of over 3,590 crore rupees. The Ministry of Education has informed that the last date for online registration for Yuva Sangam Phase 7 has been extended till the 31st of this month. The Ministry said that the extension will provide an additional opportunity to eligible youth from across the country to register and participate in this unique youth exchange program. Earlier, the last date to register for Yuva Sangam Phase 7 was 18th of August. Interested youth aged between 18 to 30 years, including students of higher education institutions, NSS volunteers and young professionals can register through the official Yuva Sangam portal. For Yuva Sangam Phase 7, 20 higher education institutions including IITs, IIMs, Central Universities and NITs have been identified as nodal institutions to host and facilitate the exchange program. Defence Minister Rajnath Singh will hold a bilateral meeting with the Defence Minister of Japan, Shinjiro Koizumi, in New Delhi today. The meeting is expected to further strengthen bilateral defence relations, enhance strategic trust and cooperation, promote stability and security in the Indo-Pacific region. The two ministers will exchange views on deeper maritime security cooperation and closer defence equipment and technology collaboration under the Make in India framework. Defence Ministry Ministry said that the meeting provides an opportunity to provide a roadmap for further advancing bilateral defence and security cooperation. On his maiden visit to India, Shinjiro Koizumi visited the Western Naval Command in Mumbai yesterday, where he held discussions with the Chief of the Naval Staff, Admiral Krishna Swaminathan, and Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command, Vice Admiral Sanjay Vatsyayan. The fourth round of India-Singapore Ministerial Roundtable will be held in Singapore today. The participating ministers from the Indian side are Finance Minister Nirmala Sitharaman, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, and Minister of State for Commerce, Industry, Electronics and IT, Jitin Prasad. The mechanism of the India-Singapore Ministerial Roundtable is an important platform to drive cooperation, including in new and emerging areas. Its inaugural meeting was held in New Delhi in September 2022, followed by the second meeting in Singapore in August 2024 and the third meeting in New Delhi in August 2025. Bangladesh will hold its presidential election today, with lawmakers set to choose between the ruling BNP stalwart Mirza Fakhrul Islam Alamgir and 11-party opposition alliance candidate Colonel Oli Ahmed. The voting will take place for the first time in a presidential election after a gap of 35 years. The voting will be held at the Parliament Jatiya Shangshad from 2 p.m. to 5 p.m. today. In badminton, Indian shuttlers will be in action on the pre-quarterfinals day of the BWF World Championships at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi. Indian ace and former world champion PV Sindhu will lock horns with third seed Wang Zhiyi of China in the women's singles. And that is the end of this news bulletin.
4: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। समय है कार्यक्रम रूपरेखा का, तो डालते हैं एक नज़र हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर।

रात 9:30 बजे कार्यक्रम कंट्री वाइड और रात 9:45 बजे कार्यक्रम इनसाइट्स प्रसारित होगा। ये दोनों कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे फूलों की खेती से अधिक लाभ कैसे लें, इस विषय पर डॉक्टर प्रिंस के साथ की गई बातचीत।

शाम 7 बजे ग्रामीण संसार कार्यक्रम में प्रसारित होगा। श्रावण मास में हमारे पारंपरिक व्यंजन विषय पर डॉक्टर वर्षा रानी से की गई बातचीत। सुगम संगीत इस कार्यक्रम का समय रहेगा रात 8:25। लोक संगीत कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर गायक कलाकार होंगी शकुंतला देवी।

0: फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे। हमारी पहली प्रसारण सभा में सुबह 9 बजे फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक में, दोपहर 1:10 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम में हमारी दूसरी प्रसारण सभा में, तीसरी प्रसारण सभा में सुनिएगा शाम 7:30 कार्यक्रम फिल्म संगीत में, रात 9:15 कार्यक्रम एक फिल्म से और रात 10:00 कार्यक्रम मन चाहे गीत के अंतर्गत। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा, जिसमें आप सुनेंगे साहित्य चर्चा विषय पर हिंदी वार्ता। वार्ताकार हैं श्री रचित कुमार।
1: श्रोताओं, अब की बार बात करेंगे देशभक्ति साहित्य के ऊपर। साहित्य चर्चा का जो हमारा सेगमेंट है, ये इसमें हर महीने हम कोई ना कोई विद्वान को आपके साथ में मुखातिब कराते हैं कि साहित्य के किसी एक अन्य विषय पर, विभिन्न रंगों पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि अगस्त का महीना है और अगस्त का पूरा महीना हमारा देशभक्ति से ओतप्रोत है। चाहे हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, अगस्त क्रांति की बात करें, या फिर 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस आता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना अगस्त के इस महीने में हम ऐसे साहित्य पर बात करें जो हमारे देश को जोड़ता है और जो हमारे देश की बात कहता है, देशभक्ति की बात कहता है, राष्ट्र निर्माण की बात कहता है, राष्ट्रवाद की बात कहता है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं रचित। आप अंग्रेजी विभाग झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि रांची में है, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और बहुत विद्वान आदमी हैं, टैलेंटेड आदमी हैं। तो स्वागत करते हैं रचित जी आपका बहुत बहुत।
2: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में 15 अगस्त हुआ है, और सभी देशवासियों को भी मैं पुनः उसकी बधाई देना चाहता हूं। और अब हम इसकी चर्चा शुरू कर सकते हैं
1: जी।
2: तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि देशभक्ति साहित्य का अर्थ केवल रचनाओं से नहीं है
1: जी। मैं इस पे आ रहा हूँ आपके पास में, तो पहले ये थोड़ा सा मैं जान रहा हूँ इस बात को कि जैसे आप बता रहे हो कि देशभक्ति साहित्य का अर्थ, तो सबसे पहले यही बताइए कि जो देशभक्ति साहित्य है या फिर राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ साहित्य है, उसको एक आम आदमी किस तरह से पहचाने समझे, क्योंकि जितने भी हमारे श्रोता हैं, कोई पाठक हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे किसी भी पाठ्य सामग्री में या फिर किसी भी कविता में, उपन्यास में या फिर किसी भी विधा में नज़र दौड़ाए तो उनको सरसरी नज़र में समझ में आए कि अमुक रचना देशभक्ति साहित्य या राष्ट्रवाद के साहित्य से जुड़ी हुई सी प्रतीत होती है।
2: जी, जैसा आपने कहा कि देशभक्ति साहित्य का अर्थ केवल रचनाओं से नहीं है, और इसमें मूल भाव की तरफ हम जा सकते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि देश की प्रशंसा भी हो सकती है, देश प्रेम का आह्वान भी हो सकता है, और उसमें बहुत गहराई तक भी साहित्यकार जाते हैं। तो साहित्य लोगों को यह कल्पना करने की भाषा देता है कि एक बड़ा समुदाय उसको अपना हिस्सा समझे, वो किसी भूभाग, इतिहास, संस्कृति, भाषा, स्मृति और साझा भविष्य के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करता है
1: जी।
2: भारत के संदर्भ में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 19वीं सदी में भारत, जैसे कि आप सभी को पता है, कि कॉलोनाइज था, ब्रिटिश शासन के अंदर था।
1: ठीक है, तो कॉलोनाइज था, उस समय की जड़ें हैं वहां पे और औपनिवेशिकवाद की

0: रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा और पीछे जाते हैं रचित, और वहां पर बात करते हैं कि जब आप राष्ट्रवाद को और देशभक्ति के साहित्य को बांध रहे हो, तो क्या इनमें थोड़ा सा फर्क हो सकता है? देशभक्ति साहित्य कुछ अलग अपना फ्लेवर रखता है और राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ साहित्य, इनमें कुछ महीन अंतर भी हो सकता है?
1: जी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जहाँ तक राष्ट्र की कल्पना है तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि थोड़ा आधुनिक हो जाता है
0: जी।
1: इसके इसकी इसकी परिकल्पना यूरोप में शुरू हुई थी 16वीं शताब्दी में।
0: इसकी जड़ें कहाँ तक जा रही हैं?
1: जी, जैसे मैंने कहा कि यूरोपीय जो देश हैं उनमें 16वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की परिकल्पना होती है, और उसका कहीं ना कहीं एक दूरगामी प्रभाव पड़ता है बाकी जगहों पे भी। और जैसे आपको पता है कि जब भारत ब्रिटिश शासन के अंदर था तो राष्ट्रवाद भी उसका पनपना एक कह सकते हैं कि नैसर्गिक प्रक्रिया थी, क्योंकि हम लोग अधीन थे और हमारे बहुत सारे जो हमारी फंडामेंटल राइट्स होते हैं और ड्यूटी, वो सारी चीजें हमारे पास नहीं हुआ करती थी और हम हर तरीके से जकड़न में थे। इस कारण से आप देखते हैं कि जो राष्ट्रवाद की कल्पना है वो 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान भी हो रही थी, भारतीय राष्ट्रवाद की मैं जो बात कर रहा हूँ। और जहां तक देशभक्ति की बात है तो देशभक्ति तो इसकी परिकल्पना और इसके जिक्र तो आपको वेदों से लेके, पुराणों से लेके हमारे ग्रंथों में भी मिलता है, महाभारत हो या रामायण हो।
0: जी, देशभक्ति की बात प्राचीन समय तक जाती है, लेकिन राष्ट्रवाद की बात आधुनिक युग के दौर की बात है। जब आप बता रहे हैं रचित की 16वीं शताब्दी से ये शुरू हुई है बिल्कुल, और जब हम वहाँ पे जाते हैं 16वीं शताब्दी में जा रहे हैं, उसके बाद पूरे यूरोप में एक तरह से कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की लहर आई है धीरे धीरे, एक जगह से दूसरी जगह तक, और जहाँ जहाँ औपनिवेशीकरण हुआ है वहाँ तक राष्ट्रवाद गया है। तो जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो राष्ट्रवाद भारत में आया, इसकी जड़ें थी भारत में, धीरे धीरे वो पनपी हैं, वो फली फूली हैं, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रवाद और देशभक्ति दोनों को किस तरह से बैलेंस करके हमारे जो नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे, हमारे देशभक्त थे, हमारे जो लीडर थे या फिर क्रांतिकारी थे, किस तरह से लेके चलाऊं?
1: आपका जो सवाल है ये कहीं ना कहीं केवल साहित्य से नहीं जुड़ा है, पूरी राजनीतिक और सामाजिक चिंतन के तरफ भी जाना पड़ेगा
0: जी।
1: तो भारत के संदर्भ में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण तो हो जाता है, क्योंकि आपने पहले ही कहा कि 19वीं शताब्दी में भारत औपनिवेशिक शासन के अधीन था, तो उस समय साहित्य धीरे धीरे एक ऐसा माध्यम बना जिसके द्वारा भारतीयों ने औपनिवेशिक सत्ता पर प्रश्न उठाए, अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को पुनः खोजा और फिर राष्ट्र की भी कल्पना शुरू हुई। इसका अगर वृहद इतिहास है तो इस पे अगर हम चर्चा करने जाते हैं तो फिर हमें काफी पीछे जाना पड़ेगा, 19वीं शताब्दी ही नहीं उससे पहले का भी हमें संदर्भ समझना और देखना पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल, तो इसमें एक बड़ा महीन सवाल आ रहा है, बड़ा गंभीर सवाल आ रहा है कि जब 20वीं शताब्दी में हम बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे हैं, उस समय राष्ट्रवाद की भावना यहाँ पे जड़ें जमा चुकी है, और साथ के साथ में जो देशभक्त लोग हैं वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, देशभक्ति के बारे में बता रहे हैं, अपने देश के बारे में, अपनी माटी के बारे में जन जन तक पहुँच रहे हैं, लेकिन उसमें पीच ये फंसता है रचित कि हमारे देश में उस समय साक्षरता दर 10% से भी कम थी। उस समय जब देशभक्ति और राष्ट्रवाद का साहित्य है वो 90% से ज्यादा जो असाक्षर लोग हैं, निरक्षर लोग हैं, उनके जनमानस पटल में, उनके मन में कैसे अंकित हो रहा है और कैसे उसने इस लहर को आगे बढ़ा के सृजनात्मकता अपनी दिखाई?
1: ये बहुत ही महीन और अच्छा सवाल है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि साक्षरता दर की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं ये केवल लिखन से नहीं है जुड़ा हुआ, इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हुआ करते थे जिनको अपना जहन में ये समझ में और चीजों को समझने की मतलब कि मैं ये तो मतलब कि अगर वो साक्षर नहीं भी थे या लिखना पढ़ना नहीं भी जानते थे तो भी जैसे कि मैं गीत की बात होती है, कविताओं की बात होती है, जिसको सुनने से भी कई सारी जो चीजें हैं वो समझ में आने लगी थी लोगों को
0: जी।
1: तो जैसे मैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बात करूं तो अब उनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ
0: जी,
1: जिसका प्रकाशन 1882 में हुआ था और उसमें सन्यासी विद्रोह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी थी, और उसके अलावा ये उपन्यास इसलिए भी जाना जाता, वंदे मातरम जैसा गीत भी। तो वंदे मातरम का महत्व केवल एक गीत के रूप में नहीं है, क्योंकि इसमें भारत भूमि को माँ के रूप में देखा गया, और जैसे जैसे इस उपन्यास का प्रचार प्रसार हुआ और ये आपको पता है कि अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई, तो इसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग के अलावा जो जनमानस के भी लोग थे कहीं ना कहीं इस भाव से जुड़े। तो इसमें भाव बहुत ज्यादा विशेषकर महत्व रखता है, क्योंकि धीरे धीरे करके ये जैसे आपने कहा कि जनमानस तक पहुंचा और ये कहीं ना कहीं ये जनगीत

0: बन के उभरा।
1: जी, मैं कुछ और ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ आपको रचित साथ के साथ में। जरा उस दौर में लौटते हैं वापस, जब 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था, जब क्रांतिकारी आंदोलन जोर पकड़ रहे थे। उस समय चाहे वो बंगाल हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, देश के हर हिस्से में क्रांतिकारी और कवि लेखक रचनाकार उभर रहे थे। चाहे वो प्रेमचंद के साहित्य की बात करें, सौजे वतन, या फिर रामप्रसाद बिस्मिल की कविताएं और गजलें हैं, या फिर हम बात करते हैं करतार सिंह सराभा जिनकी कविताएं पंजाबी में हैं जो देशभक्ति को बहुत अच्छे से बताती हैं। और उनके गीत न केवल गाए जाते थे आम जनसभा में ग्रामीण क्षेत्रों में, बल्कि नारों के रूप में भी उनसे कई बातें निकली। जी, तो ये जो सारा साहित्य है उस समय पे आया, इसने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में, आजादी की लड़ाई में क्या योगदान दिया है?
0: कि इसमें कई सारे राष्ट्रवादी क्रांतिकारी भी हुए जिन्होंने कई तरह के गीत भी लिखे, और आपने इसका उल्लेख भी किया कि अलग अलग भाषाओं में किया है,
1: जी
0: तो इसका असर पूरे पूरे कह सकते हैं कि भारतीय महाद्वीप में दिखने लगा था।
1: क्या ये लोगों को
0: तो
1: अपनी तरफ आकर्षित कर पाया?
0: जी एकदम, जहाँ तक हिंदी साहित्य की बात है तो उस दौरान आप देख सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त और भी कई तरह के लोग भी थे जो तरह का साहित्य लिख रहे थे, और उसके तरफ लोग आकर्षित भी हो रहे थे और भाव विभोर भी हो रहे थे, क्योंकि वो ऐसा दौर था जहाँ पे औपनिवेशिक ताकतें भारतीयों को एकजुट भी कर रही थी और एक जनमानस का भी भाव धीरे धीरे करके क्रांति की तरफ जा रहा था।
1: जी
0: तो एकदम इसमें साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: जी इसमें बड़ा एक तर्कशील प्रश्न रखता हूँ मैं। जब देशभक्ति साहित्य की बात करते हैं, इसमें कौन सी विधा ज़्यादा भावनात्मक हो सकती है, जो आम व्यक्ति है, जो हमारा पाठक है, या फिर जो देश प्रेमी है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है? कोई कहानी होगी, कोई उपन्यास होगा, कविताएं, गजलें होंगी, कौन सी ज़्यादा सही रहती है और ज़्यादा सृजनात्मक रूप से प्रसारित भी होती है लोगों तक?
0: जहाँ तक ये बड़ा पेचीदा सवाल है, क्योंकि अगर आप देखिएगा कि जो माध्यम का बात आप कर रहे हैं, चाहे वो कविता हो, उपन्यास हो या नाटक हो, तो सबका अपना अलग अलग महत्व है। लेकिन जहाँ तक इस उत्तर का अगर मैं प्रश्न देना चाहूँ, तो कविताएं क्योंकि बहुत आसानी से सुनी जा सकती है और उसपे विश्लेषण किया जा सकता है, और उसका प्रचार प्रसार बाकी माध्यमों से शायद उस समय भी थोड़ा ज्यादा आसान था, और जैसे आपने खुद कहा कि उस समय साक्षरता दर भी थोड़ा कम हुआ करता था, तो
1: जी
0: इस कारण से मुझे लगता है कि जो काव्य है, जो गीत, वो ज्यादा जनमानस तक पहुंच सके, और उन्होंने कहीं ना कहीं एक क्रांति को भी उकेरा है।
1: जो कविताएं होती हैं, वो जो अपनी ओरल ट्रेडिशन होती है, मौखिक परंपरा, उसमें भी वो दूर तक प्रसारित हो सकते हैं। जी, तो जब हम स्वतंत्रता की बात करें, हम स्वतंत्रता से बाहर आ रहे हैं, उसके बाद के दौर में क्या राष्ट्र निर्माण में भी जो देशभक्ति का साहित्य, राष्ट्रवाद का साहित्य, उसमें जो योगदान है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं?
0: तो जैसे कि आपने कहा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद भी कई तरह के लेखन हुए हैं और अलग अलग तरह के कविताएं लिखी गई हैं, अलग अलग तरह के उपन्यास लिखे गए हैं और नाटक भी लिखे गए हैं जिन्होंने इन चीजों पे ज्यादा जिक्र किया है कि उसमें देश निर्माण के अलावा और राष्ट्रवाद की भी बात की जा रही थी। तो इसमें से प्रमुख में अगर मैं बोलना चाहूँ तो ऐसे तो बेमानी होगी कुछ चुनिंदा नाम लेना, लेकिन अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो जैसे आपके पास कवि प्रदीप जैसे लोग, क्योंकि उन्होंने कई तरह का गीत लिखा जो जनमानस तक,
1: आप कह रहे थे कई तरह के गीत लिखे? जी
0: जैसे मैंने कहा कि देश के आजाद होने के बाद भी कई तरह का लेखन हुआ है और अलग अलग भाषाओं में हुआ। अगर
1: जी
0: मैं कुछ प्रमुख नामों का उल्लेख करूं हिंदी में, जैसे कवि प्रदीप हुए हैं या रामधारी सिंह दिनकर हुए हैं या मैथिली शरण गुप्त ने भी आगे भी काफी कुछ लिखा है, उसके अलावा भी आप देखिए कि अलग अलग भाषाओं में कई तरह के देशभक्ति वाले गीत लिखे गए हैं और उनको काफी ज्यादा पसंद भी किया गया है।
1: जो देख पा रहे हैं रचित, मोटा मोटी इसमें एक ये भी बात आ रही है, पहले तो हम आज़ादी की बात कर रहे थे, गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलने की बात कर रहे थे, लेकिन आज़ादी के बाद का जो देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का साहित्य है, वो हमारे देश के सामने वर्तमान चुनौतियाँ रखें, साथ के साथ में एक देश की जो परिकल्पना है, संकल्पना है, वो कैसा होना चाहिए, उसकी भी तस्वीर क्या रख पाने में सफल हुआ?
0: जी, काफी हद तक। और इससे पहले मैं कुछ और उल्लेख करना चाहता हूँ, जैसे
1: जी
0: कि अगर आप 19वीं सदी में अगर वापस जाते हैं तो उसका बीज उसी समय से बोया जाना शुरू हो चुका था।
1: जी
0: तो जैसे कि एक अवधारणा है कि अंग्रेजी साहित्य जो हिंदी जो भारतीयों ने लिखा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं देशभक्ति का भाव और राष्ट्रवाद की बात बहुत ही शुरुआती दौर में भी शुरू हो गई थी।

0: तो जैसे मैं आपको एक उल्लेख करना चाहता हूँ एक कवि का, जो बहुत अल्पकाल तक जीवित रहे लेकिन उनका प्रभाव बहुत ही गहरा है। तो
1: जी
0: हेनरी लुविस विवियन डरोजियो,
1: जी
0: ये एक महान कवि थे जो उनको एंग्लो इंडियन भी माना जाता है क्योंकि उनका मिक्स्ड ओरिजिन था, वो इंडो पोर्टुगीज फैमिली में पैदा हुए थे। तो
1: जी
0: उन्होंने आई थिंक सबसे पहले राष्ट्र, यू कैन से राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त किया था, नेशनल पोएट भी कह सकते हैं उनको, और यंग बंगाल मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे।
1: जी
0: और उन्होंने कई तरह की कविताएं लिखी, जैसे कि एक उनमें से एक प्रमुख कविता है हार्प ऑफ इंडिया,
1: जी
0: और इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने कल्चरल रिवाइवलिज्म की बात की थी।
1: बिल्कुल
0: तो हाँ, तो सांस्कृतिक चेतना जो कहीं ना कहीं कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि सुप्त अवस्था में चली गई थी ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश शासन के दौरान, ये कविता उस चीज को वापस से पुनर्जागृत करने की बात कर रहा था और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को भी जनमानस तक पहुंचाने के काम कर रहा था। इसके
1: बिल्कुल
0: अलावा भी आप ये देखिएगा कि जैसे मैं गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी बात की जाए, तो उन्होंने जब गीतांजलि लिखी तो उसमें भी कुछ चुनिंदा अगर आप कविताएं देखें, खासकर उसमें से एक जो उनकी पोएम नंबर 35, उन्होंने राष्ट्रवादी चीजों को उकेरा है और उन्होंने देशभक्ति को भी उसका जिक्र करते हुए उसकी कल्पना की है।
1: जी बिल्कुल। तो अब आखिर में आते हैं, आखिरी पड़ाव की बात करते हैं। इसमें जब हम देशभक्ति और राष्ट्रवाद के साहित्य की बात कर रहे हैं, वर्तमान समय में इस साहित्य में निहित क्या चुनौतियां हैं, और जो ये साहित्य सृजन कर रहे हैं, चाहे वो कवि हो, लेखक हो, उपन्यासकार हो, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं?
0: वर्तमान समय में कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी साहित्य लिखना काफी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। उसके कई कारण हैं और इसमें आप देखेंगे कि अभी भी कई लोग हैं जो इस तरह का साहित्य लिख रहे हैं और नई पीढ़ी को भी समझा रहे हैं कि राष्ट्र की जो कल्पना है वो भावनात्मक, सामाजिक और राजनीतिक तर्क के अलावा भी आध्यात्मिक भी होती है।
1: जी
0: कुछ हद तक कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का और माइग्रेशन का, इन सब चीजों का काफी हद तक असर पड़ा है नई पीढ़ी पे। लेकिन राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद आप देखेंगे कि ग्लोबल स्तर पर वापस से उसका एक री इमरजेंस सा हुआ है।
1: जी
0: तो कह सकते हैं कि इस साहित्य का महत्व वर्तमान काल में और आगे भी बना रहेगा।
1: ग्लोबलाइजेशन के दौर में, जिसको हम बोल रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम पूरी धरती एक परिवार के तौर पे हो गई है, अब इसमें सारी बातें पीछे जा चुकी हैं, और साथ के साथ में जब एक दूसरे को हम जान रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ गया है, उस समय में क्या देशभक्ति और राष्ट्रवाद को बचाया जा सकता है?
0: बहुत ही अच्छा सवाल है। जहाँ तक राष्ट्र की कल्पना का बात है तो ये हमसे जुड़ा हुआ है, आगे इसको कैसे संजो के रखना है ये नई पीढ़ी को भी समझना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र लोगों के द्वारा निर्मित हो। तो जब तक जनमानस का भाव एक निरंतर निरंतर रहेगा तो उसकी कल्पना भी हमारे जहन में बनी रहेगी। तो चाहे ग्लोबलाइजेशन हो जाए या तकनीकी विकास हो जाए या AI आ जाए, राष्ट्र की कल्पना और राष्ट्र से जुड़ी बातें और देशभक्ति की बातें कभी भी पूरी तरीके से सुप्त अवस्था में नहीं जा सकती है, और ये हम सबसे जुड़ी हुई बातें हैं तो नई पीढ़ी तक भी ये
1: जरूर
0: पहुंचती है।
1: पहुंचेंगी। जी बिल्कुल। तो रचित जी, आप झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़े, और आपने साहित्य चर्चा के इस अंक में हमसे बहुत सारी बातें की। रचित जी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, जिसमें आपने सुनी साहित्य चर्चा में हिंदी वार्ता। वार्ताकार थे रचित कुमार। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

श्रोताओं, आज 20 अगस्त है और आज हम सब सद्भावना दिवस मना रहे हैं। सद्भावना दिवस राजीव गांधी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिसमें एकता, शिक्षा सुधार, युवा सशक्तिकरण, लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण और भारत के डिजिटल और तकनीकी विकास में उनके मूलभूत योगदानों के प्रति उनकी दृष्टि का जश्न मनाया जाता है। सद्भावना दिवस हर साल 20 अगस्त को हम सब मनाते हैं। ये दिन देशवासियों के बीच शांति, सामुदायिक भावना, एकता को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। ये दिन सभी धर्मों का सम्मान करने, सद्भाव से मिलकर रहने का सभी से आह्वान भी करता है। प्रतीकात्मक महत्व के अलावा सद्भावना दिवस आधुनिक भारत के विकास में राजीव गांधी जी के योगदान को भी उजागर

करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजीव गांधी की उपलब्धियों के बारे में भारत की डिजिटल और संचार प्रौद्योगिकी में प्रगति मार्ग को सशक्त और प्रशस्त किया था। वर्तमान भारतीय राष्ट्र का विज्ञान और प्रौद्योगिकी काफी हद तक उन्हीं की देन है। राजीव गांधी जी के शासनकाल में न केवल प्रौद्योगिकी में बल्कि शिक्षा, शासन और लोकतंत्र में भी बड़े बदलाव आए। राजीव जी की सरकार ने शिक्षा को आधुनिक बनाने और उसकी पहुंच को व्यापक बनाने के लिए सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जिससे न केवल युवाओं को अपनी बात रखने का अधिकार मिला बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी आए। सरकार द्वारा 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से कड़े दल बदल विरोधी कानूनों की शुरुआत का उद्देश्य राजनीतिक दल बदल को कम करना भी था, जिसके परिणाम स्वरूप संसदीय बहस में अधिक अनुशासन और राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थिर लोकतंत्र स्थापित हुआ। सद्भावना दिवस केवल श्रद्धांजलि ही नहीं है बल्कि समावेशी विकास और एकता की याद दिलाने वाला दिन भी है। तकनीकी रूप से उन्नत भारत के लिए राजीव गांधी जी के दृष्टिकोण आज भी देश की डिजिटल यात्रा को दिशा दे रहे हैं। उनके विरासत, युवा नेतृत्व, तकनीकी दूरदर्शिता और राष्ट्रीय सद्भाव के प्रति प्रतिबद्धता का मिश्रण जो समकालीन भारत में भी प्रासंगिक है।

श्रोताओं, आज हम सब भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी मना रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य नवीनीकरण ऊर्जा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन हम सब देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में भी मनाते हैं। नवीनीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न होती है, जो समय के साथ पुनः पूर्ति योग्य होती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। ये ऊर्जा का एक स्वच्छ और टिकाऊ रूप है, जो जीवाश्म ईंधन पर हमारे निर्भरता को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी हमारी सहायता करता है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस का उद्देश्य नवीनीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और सीमित संसाधनों के दोहन को कम करना है। इस दिन की स्थापना नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा साल 2004 में की गई थी और यह देश में बदलाव लाने में एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। इसकी शुरुआत दिल्ली में हुई, उसके बाद पूरे देश में ये फैल रही है। भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस मनाने के बहुत सारे कारण हैं और उनमें से कुछ हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, नवीनीकरणीय ऊर्जा के विकास में भारत द्वारा की गई प्रगति को प्रदर्शित करना, लोगों को अपने घरों और व्यवसायों में नवीनीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, नवीनकरणीय ऊर्जा उत्पाद और सेवाओं की मांग पैदा करना, नवीनकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए, साथ ही नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार सृजित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही इसके द्वारा हम जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी तत्पर और तैयार होते हैं। भारत नवीनीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। देश ने महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए। तो वायर के अनुसार साल 2010 से साल 2020 के बीच भारत ने नवीनकरणीय ऊर्जा जल में अपने हिस्सेदारी 16% से बढ़ाकर 22% कर दी। देश नवीनकरणीय ऊर्जा की खपत बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। 7 दिसंबर 2022 को विद्युत मंत्रालय ने साल 2030 तक 500 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में एकीकरण के लिए पारेषण प्रणाली योजना की घोषणा की थी। आखिर में बस यही कहेंगे कि भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस नवीनीकरणीय ऊर्जा के विकास में भारत द्वारा की गई प्रगति का जश्न मनाने और लोगों को अपने घरों और व्यवसायों में नवीनीकरणीय ऊर्जा को

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, मच्छर भले ही छोटे हों, लेकिन वे मानव जाति को ज्ञात कुछ सबसे घातक बीमारियों को फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हर साल

20 अगस्त को हम विश्व मच्छर दिवस मनाते हैं ताकि मच्छर जनित बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, उनके बचाव के तरीकों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। विश्व मच्छर दिवस भारत में कार्यरत ब्रिटिश सेना के सर्जन सर रोनाल्ड रॉस द्वारा की गई खोज की स्मृति की याद में मनाया जाता है। उन्होंने 1897 में एक संक्रमित रोगी का खून चूसने वाली मादा एनोफिलिस मच्छर की आंत में रंगीन मलेरिया परजीवी की पहचान की थी। इस खोज ने पहली बार ये सिद्ध किया कि मच्छर मनुष्यों के बीच मलेरिया का संचारण करते हैं। रोस को इस खोज के लिए 1902 में शरीर क्रिया विज्ञान और चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार दिया। तभी से 20 अगस्त को ये दिन हम मना रहे हैं। मच्छरों से फैलने वाले मुख्य जो बीमारियां हैं उनमें मलेरिया, डेंगू, बुखार, चिकनगुनिया मुख्य हैं। बड़े बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं इस तरह के रोगों से ज़्यादा संक्रमित होती हैं क्योंकि उनमें प्रतिरक्षा प्रणाली उनकी कमज़ोर होती है, वे अधिक संवेदनशील होते हैं जिससे जटिलताओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं को जीका जैसे कुछ संक्रमणों से गर्भस्थ शिशु को प्रभावित होने का खतरा भी अधिक होता है। जल भराव, घनी वनस्पति और उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में रहने वाले या यात्रा करने वाले लोगों को मच्छरों से अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है। खराब जल निकासी वाले शहरी क्षेत्र और स्थिर जल वाले निर्माण स्थल आमतौर पर जोखिम वाले स्थान होते हैं। विशेष रूप में मानसून में इस तरह के रोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके निजात के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आसपास पानी को भरने से रोकें, साथ ही कूलर, टायर, गमलों को हर हफ्ते साफ करें, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, पूरे बांह के कपड़े पहने, मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल ज़रूर करें। साथ ही अगर खांसी, जुकाम या बुखार जैसी स्थिति आती है तो उस समय पर घर में इलाज ना कर डॉक्टर के पास जाएं और उसके द्वारा बताए गए प्रशिक्षण या परीक्षण ज़रूर करवाएं, उसके बाद ही आप दवाई लें। इस तरह के छोटे छोटे उपाय जब हम अपनाएंगे तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे बीमारियों से खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचा सकेंगे।

इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम सुबह सवेरे। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 8 बजने को हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे। पहले हिंदी में, 8:15 पर अंग्रेजी में। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने लक्ष्य है।
3: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
3: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के

0: स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्ट्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का 4th संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
3: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
1: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
4: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी

0: नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए, लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
1: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है, उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए, जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की, तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में, तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
3: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, CID को सौंपी गई जांच। UPSC जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेन जी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है भारतीय जनता

0: पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है। साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए सीएम जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टर्डम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Union Cabinet approves 4 multi-tracking railway projects covering 8 districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears 4 laning of Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. Fourth round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to polls today to elect a new president. US President Donald Trump declares economic warfare against Iran, threatens economic punishment for any country helping Tehran. And Indian women's team to take on England in their final Pool D match of FIH Hockey World Cup in Amstelveen this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railways covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
3: Five major decisions have been taken. The first 4 projects are related to the railways, while the 5th is a highway project. The first 4 railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradip railway line. The 5th project is the construction of a 4-lane highway from Muzaffarpur via Sitamarhi to Sonbarsa. These projects, with a total cost of 13,041 crore rupees, were approved by the cabinet today.
4: Total 13,041 crore rupees ke projects cabinet ne approved kiye.
2: Mr. Vaishnaw informed that the cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of National Highway 22 in Bihar to a 4-lane standard at a total capital cost of over 3,590 crore rupees.
3: The project is becoming a major lifeline for the entire Bihar. It starts from Sonbarsa on the Nepal border and passes through Sitamarhi and Muzaffarpur. It will create a complete transport artery which will benefit Bihar for many years. It is an 83-kilometer brownfield project under which the existing road will be upgraded into a 4-lane highway with an investment of 3,591 crore rupees
4: ka investment isme ho.
2: Union Home Minister Amit Shah will chair 31st meeting of the Southern Zonal Council at Kovalam near Chennai in Tamil Nadu this morning. The meeting is likely to focus on issues requiring coordination between the centre and southern states and union territories. The Southern Zonal Council comprises Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Telangana, along with union territories of Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Chief ministers of the southern states and 3 union territories, Puducherry, Andaman, Nicobar Islands and Lakshadweep, are

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार हो जाए, समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज गायक कलाकार हैं शकुंतला देवी।

0: तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

इसी गीत के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज गायक कलाकार थी शकुंतला देवी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक।

फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप सभी को किरण का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले अपने फ़ोन नंबर्स बता देते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2554462554472558। जो श्रोता रोहतक के बाहर या मोबाइल से संपर्क कर रहे हैं तो फ़ोन नंबर से पहले रोहतक का एसटीडी कोड ज़रूर लगा लें। एसटीडी कोड है 01262। तो जब तक आपके फ़ोन कॉल्स हम तक पहुंचते हैं, हम पहुंचा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में चुपके चुपके फिल्म का ये गीत आप सभी तक।

0: नैनो यूरिया।
1: पेश है दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया, अब खेती की लागत कम, आधा लीटर बोतल में एक बोरी यूरिया का दम।
0: इफको नैनो यूरिया।
1: इफको नैनो यूरिया।
2: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर, आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
3: चुपके चुपके फिल्म के गीत के बाद सुने कुछ संदेश। बात करते हैं कार्यक्रम के पहले श्रोता से। हेलो, आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। नाम बता दें, कौन कहां से बात कर रहा है? जी जगदीश जी, कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे? जी गीत के बोल बता दें। जी

0: जी जगदीश रॉय जी, आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: न झटको जुल्फ से प

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार। नाम बता दें, कौन कहाँ से बात कर रहा है?
1: तो मेरे प्यारे मैम को मेरा क्या है मेरा गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, नाम बता दें।
1: मैं ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुर्वे बात कर रही हूँ। थैंक
0: स्वागत है तनुश्री आपका कार्यक्रम में।
1: यू मैम। कैसी है मैम आप?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं और कार्यक्रम कैसे लगते हैं?
1: जी मैम,
0: कार्यक्रम कैसे लगते हैं?
1: कार्यक्रम भी सुन रही हूँ और आपकी प्रस्तुति भी बहुत बढ़िया लग रही है और आपकी बात करने का जो तरीका है ना मैम, बहुत खूबसूरत
0: जी धन्यवाद। आप लोगों से बात करके खुद ही हमें भी अच्छा लगता है। तो गीत के बोल बता दे तनुश्री।
1: है। जी मैम, उनका नाम है रोजा और गाने के बोले हंसी वादिया।
0: तो पहुंचा दें आपकी पसंद का गीत आप तक। धन्यवाद
1: जी मैम, ओके बाय बाय।
0: कॉल करने के लिए। तो आइए सुनते हैं तनुश्री की फरमाइश पर रोजा फिल्म का गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ों में।

0: हेलो
1: जी नमस्कार जी
0: नमस्कार जी, नाम बता दें।
1: जी देवेंद्र कुमार, गांव निगाना कला, डिस्ट्रिक्ट भिवानी से बोल रहा हूँ जी।
0: स्वागत है देवेंद्र कुमार जी आपका कार्यक्रम में।
1: जी आज मुझे एक वो सूरज और चंदा फिल्म का गीत सुना देना जी, मुकेश और

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: हे गर्ल्स, कांग्रेचुलेशंस, आज तो पार्टी चाहिए,
4: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आईडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हेलो,
7: नमस्कार एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू यू दीदी किरण।
6: नमस्कार जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। नाम बता दे, कौन कहाँ से बात कर रही हैं?
7: आदर्श गांव केलंगा से सेवानिवृत्त शिक्षक सुंदरपाल कौशिक बोल रहे हो। दीदी,
6: स्वागत है सुंदरपाल जी आपका कार्यक्रम में।
7: थैंक यू दीदी।
6: आज कौन से फिल्म का गीत सुनवा दे?
7: फिल्म दीदी पुरानी है, एक नौ निहाल।

0: रफी जी की आवाज है, तुम्हारी जुल्फ के साए में श्याम कर लूंगा
1: जी। तो आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचा रही हैं, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
0: थैंक यू दीदी, धन्यवाद।

0: आज तो पार्टी चाहिए,
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर

0: हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: हेलो।
2: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
1: नमस्कार जी, नाम बता दें।
2: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश रहने वाला हूँ। अभी मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ कि वहाँ श्रोता सम्मेलन था, श्रोता सम्मेलन, रेडियो श्रोता सम्मेलन।
1: जी
2: तो वहीं आए थे, दो दिन का दोस्त, आज कल भी हो गया था, आज भी हो गया था। रेडियो श्रोता सम्मेलन मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो मेरे दोस्त। हेलो।
1: हेलो
3: जी मैम, नमस्ते। मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ, गुना मध्य प्रदेश से।
1: जी गीत के बोल बता दें नरेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: जी, और आज श्रोता दिवस है तो सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वाकई में श्रोता वो होता है जो किसी संगीत, काव्य या भाषण की बारीकियों और भावों की गहराइयों को समझता है, उसे हम श्रोता कहते हैं। न केवल मनोरंजन या जानकारी के लिए सुनना श्रोता नहीं होता।
1: जी,
3: तो गीत बताया चांदनी फिल्म का,
1: जी,
3: लगी आज सावन की फिर वो। वाकई में सावन का महीना है और झड़ी तो लगना स्वाभाविक है।
1: जी बिल्कुल, तो आपकी पसंद का गीत आप तक
3: जी,
1: पहुंचा रहे हैं।
3: और हमारे साथ हमारे आदरणीय भाई गजराज लोधी जी भी आए हैं यहाँ, और
1: जी।
3: गोविंद वैष्णव जी हैं, कल्याण जी हैं, राम बाबू जी हैं, और हमारे कई ये श्रोता मित्र जो देश के तमाम हिस्सों से इस श्रोता सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं।
1: जी बिल्कुल, तो नरेश जी आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पहुंचा रहे हैं चांदनी फिल्म का गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हेलो
3: हेलो
2: नमस्कार जी, नाम बता दें।
3: नमस्कार जी, मेरा नाम जी कृष्ण यादव है और मैं भिवानी शहर दादरी गेट रामगंज मोहल्ला श्रीमती देवी बाई आश्रम से बात कर रहा हूँ।
2: स्वागत है कृष्ण यादव जी कार्यक्रम में।
3: कैसे हैं आप?
2: मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं आप सब कैसे हैं?
3: बस जी, आपसे बहुत दिनों के बाद बात हुई है और मैं एक नेत्रहीन आदमी हूँ और भाई इन भाइयों के साथ में ही रहता हूँ, जो और भी मेरे नेत्रहीन भाई हैं उनके साथ रहता हूँ मैं
2: जी। तो
3: और मेरा काम तो जी गाने बजाने का है और बिना देखने वाला और आदमी करेगा क्या जी।
2: कार्यक्रम कैसे लगते हैं हमारे?
3: कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं जी, लेकिन एक आधी बार भी गड़बड़ा जाता है कई बार
2: जी, कुछ तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हो जाता है मौसम की वजह से। तो गीत के बारे में बता दें।
3: हाँ, और अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अब आपको गीत मैंने आपको बताया था।

0: कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी।
1: तो कृष्ण यादव जी, तवायफ फिल्म का ये गीत है आशा भोसले की आवाज में, तो आपकी पसंद का गीत पहुंचाते हैं आप तक। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने
0: हाँ
1: के
0: जी,
1: लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी श्रोता लाइन पे हैं, मैं ज्यादा हूँ।
1: तो कृष्ण यादव जी की पसंद पर आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में तवायफ फिल्म का ये गीत।

0: आशा भोसले की आवाज़ में तवाया फिल्म का गीत आपने सुना। बात करते हैं कार्यक्रम के अगले श्रोता से। हेलो,
1: राम राम बहन जी। राम राम।
0: राम राम जी, नाम बता दें।
1: गांव लुदेसर से पप्पूराम घाट बोले रहे जी।
0: स्वागत है पप्पूराम घाट जी आपका।
1: किरण बहन जी, शुक्रिया बहन जी। पहले तो बहन जी मैं आज हमारे श्रोता भाइयों का एक बड़ा धूमधाम से मनाने वाला श्रोता दिवस मनाया जा रहा है।
0: बिल्कुल, आज श्रोता दिवस है।
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सब बहन भाइयों को, रेडियो सुनने वालों को, सभी को
0: जी।
1: और इसका जो रेडियो दिवस तो आज श्रोता दिवस मनाया जा रहा है, तो ये छत्तीसगढ़ भिलाई में मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से
0: जी।
1: तो वहाँ से हमारे हरियाणा से, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर एक स्टेट के श्रोता भाई इकट्ठे हुए हैं।
0: बिल्कुल, अभी कुछ समय पहले नरेश जी ने भी बताया।
1: बड़ा अच्छा लगता है बहन जी जब ये श्रोता दिवस मनाया जाता है धूमधाम से। तो
0: जी,
1: तो हम सारे भाई आपस में मिलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है
0: जी। हमें भी अच्छा लगता है।
1: हाँ बहन जी, और रेडियो के कारण तो इतने क्या बताएं आपको इनके बारे में। मैं तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है, इतने बढ़िया श्रोता भाई मिले हैं जो आपस में हम ब्याह शादी और सुख दुख में मिलते रहते हैं
0: जी। एक विशेष जो साथ है वो बन जाता है रेडियो के जरिए, और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम सब रेडियो से जुड़े हैं।
1: हाँ बहन जी
0: जी। तो पप्पू राम जी, कौन सा गीत सुनवा दें आज आपको?
1: आज मुझे छोटी

0: का सुना दीजिए बहन जी, रक्षाबंधन आने वाला है, रक्षाबंधन का गीत है भैया, मेरे रक्षाबंधन को निभाना और मैं सारे भाइयों को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, सुनवा रही हैं आपके पसंद का गीत।
0: धन्यवाद।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक। बात करते हैं अगले श्रोता से। हेलो।
3: जय माता दी।
2: जय माता दी, नाम बता दें।
3: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंजमेर बगला।
2: जी स्वागत है पूरन वर्मा जी कार्यक्रम में।
3: जी मैडम, आपको और तमाम श्रोताओं को रक्षाबंधन आ रही है तो उसकी भी हार्दिक शुभकामना। और जो श्रोता सम्मेलन में श्रोता गए तो आज श्रोता रेडियो श्रोता सम्मेलन भी है
2: जी,
3: तो उसकी भी हार्दिक शुभकामना।
2: जी आपको
3: भी। मेरी श्रोता आवाज पहुंच रही है तो उनसे ये कहूंगा कि हमारी भी इच्छा तो होती है मैडम, हर श्रोताओं से रेडियो श्रोताओं से मिलने की इच्छा होती है पर हम जा नहीं सकते, तो उनको शुभकामना देना चाहूंगा रेडियो के माध्यम से, कभी मौका मिले तो इच्छा हो।

0: बात करते हैं कार्यक्रम के अंतिम श्रोता से। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, नाम बता दें।
1: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश तली बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है अविनाश जी आपका कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनेंगे
1: जी आज? मुझे दिल जले मूवी से शाम है धुआं धुआं सुना दीजिएगा
0: जी। तो आपकी पसंद का गीत सुनवा दें आपको?
1: जी जी बिल्कुल सुना दीजिएगा, और तनुश्री और पूरन वर्मा जी के लिए और राठी जी के लिए डेलीकेट रहेगा
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के
1: लिए। जी धन्यवाद।
0: तो आइए सुनते हैं दिल जले फिल्म का ये गीत।

आरजू झूठ है कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: दिलचले फिल्म के इस गीत के साथ संपन्न होता है फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक। अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजने को हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे, पहले हिंदी में 10:05 पर अंग्रेजी में। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ

साथ मैं वैष्णवी। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला

की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोड मैप के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के अंतर्गत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी।

0: पहले चार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का, थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक, ये फोर लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार के पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष में बनाए गए 2,35,000 आवासों के लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित करेंगे। श्री चौहान पटना के बामेटी में कृष्ण जन कल्याण संवाद में भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों की तस्करी और नेटवर्क से निपटने के लिए मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान बल के गठन को मंजूरी दे दी है। दुर्गापुर, मालदा, खड़गपुर और नादिया में मादक पदार्थों के खिलाफ 4 पुलिस स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने इस पहल के लिए 591 नए पदों को मंजूरी दी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए थे, लेकिन वे विफल रहा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरल, माहे और तमिलनाडु में दिन के दौरान बिजली और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टरडैम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the new

62.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। सुबह की 10:10 और 15 सेकंड हुए हैं। इसी के साथ संपन्न होते हैं हमारी पहली सभा के प्रसारण। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले जारी रहेगा। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स पर दोपहर 12:30 पर हमारी दूसरी प्रसारण सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

मीडियम वेव 262.77 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30 हो चुके हैं। हमारी दूसरी प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
3: और अजीत का भी जोहार और नमस्कार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सूर्य बिना कुछ मांगे हमें प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने दिया, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है।
3: बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओं, इसी प्रकार प्रकृति भी हमें बस देती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का,
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कुटकुटिया नायक, शुभम नायक।

0: एक और सत्यजीत नायक।
1: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खीरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है।
0: उन्होंने लिखा है, धैर्य रखें, कठिन समय भी सरल हो जाएगा।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन और ईशांत देवांगन।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ज्ञान विज्ञान साहित्य भूगोल इतिहास और अनेकों ज्ञान की शाखाओं की मनोरंजक जानकारियाँ।
0: तो विमलेश जी, आज हमारी बातचीत का विषय क्या रहेगा?
1: अजीत जी, मैं सोच रही थी जानकारियाँ तो हम इस श्रृंखला में देते ही रहते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह प्राप्त संदेशों से पता चलता है कि हमारे श्रोता प्रेरक प्रसंग भी बहुत पसंद करते हैं।
0: जी हाँ, ये तो है।
1: तो क्यों ना आज और कल कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएं?
0: नेकी और पूछ विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जीवन में प्रेरक प्रसंगों से भी हमें बहुत सहायता और संबल मिलता है। तो बताइए जरा श्रोताओं को कि हमारा आज का प्रेरक प्रसंग क्या रहेगा?
1: अजीत जी, आज बात करते हैं एक तितली के संघर्ष की।
0: वाह, क्या बात है, एक तितली के संघर्ष की।
1: श्रोताओं, आज हम आपको एक छोटी सी तितली की कहानी सुनाने जा रहे हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, ये कहानी लंदन की प्रसिद्ध बाल पत्रिका किड्स वर्ल्ड में छपी थी। शीर्षक था द बटरफ्लाई एंड द कुकून। ये कहानी केवल एक कीट की नहीं बल्कि हम सबके जीवन की कहानी है।
1: जी
0: श्रोताओं, कहानी कुछ इस प्रकार से है।
1: एक दिन एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर लटके एक छोटे से कुकून पर पड़ी, यानी रेशम के कोए पर पड़ी। उसने देखा कि कुकून के भीतर एक प्यूपानुमा तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।
0: श्रोता, वो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा।
1: जी,
0: उसने देखा कि वो तितली एक बहुत छोटे से छेद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार जोर लगाती और फिर रुक जाती। कुछ देर के बाद फिर पूरी ताकत से प्रयास करती। ये संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। विमलेश जी, आगे क्या हुआ?
1: जी अजीत जी, जो हुआ वो बहुत ही अजीब हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा कि तितली थक गई है, वो बेचारी अब बाहर निकल ही नहीं पाएगी। उस व्यक्ति का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, बेचारी तितली कितना संघर्ष कर रही है, यदि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं तो इसका कष्ट समाप्त हो जाएगा।
0: श्रोताओं, ऐसा सोचता हुआ वो अपने घर गया, एक छोटी सी कैंची लाया और बहुत सावधानी से कुकून का छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया।
1: जी,
0: अब वो तितली बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उस व्यक्ति ने देखा उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख छोटे और सिकुड़े हुए और बहुत ही कमजोर थे।
1: उसे लगा कि बस कुछ देर की ही तो बात है, कुछ ही देर में पंख फैल जाएंगे और तितली उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली जमीन पर ही रेंगती रही, वो कभी उड़ न सकी और कुछ ही दिनों में उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई।
0: जी हाँ श्रोताओं, उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने एक और कुकून देखा जिससे तितली निकलने का प्रयास कर रही थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी
1: जी।
0: बार बार प्रयास करती पर थक कर रुक जाती। अब की बार इस व्यक्ति ने सोच लिया था कि वो तितली की कोई मदद नहीं करेगा।
1: कई घंटों के बाद जब वो तितली बाहर आई तो उस व्यक्ति ने देखा कि वो शानदार रंगों वाली एक बेहद सुंदर तितली थी। वो थोड़ी देर रेंगी, फिर पंख फैलाकर उड़ गई।
0: श्रोताओं, उस व्यक्ति ने अपनी कहानी में लिखा, मुझे अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि प्रकृति ने तितली के लिए यह संघर्ष जानबूझकर रखा था।
1: जी।
0: जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने का प्रयास करती है, तब मेहनत के कारण तो उसके शरीर का द्रव उसके सिकुड़े हुए पंखों में पहुंचता है। इस द्रव को हीमोलिम्फ कहते हैं।
1: और यही द्रव पंखों को मजबूत और उड़ने योग्य बनाता है। यदि तितली संघर्ष न करे तो उसके पंख कभी विकसित ही नहीं हो सकते।
0: तो विमलेश जी, इस घटना का सारांश क्या बनता है?
1: अजीत जी, जिस दया को उस व्यक्ति ने सहायता समझा था, वही तितली के जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो रातों की मेहनत, असफलताओं का डर और लगातार अभ्यास, यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
0: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है तो वही संघर्ष, वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
1: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है तभी उसकी फसल लहलाती है। जी हाँ श्रोताओ, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के न शक्ति मिलती है न सफलता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है वही महान बने हैं।
0: श्रोताओं, अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में

0: जानते हैं, उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया, लेकिन हार नहीं मानी।
1: जी
0: हेलेन केलर ने जीवन भर दिव्यांगता का सामना किया, लेकिन संघर्ष के कारण वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
1: हम सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए, लेकिन उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन गया।
0: जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, यदि इन लोगों के जीवन से संघर्ष निकाल दिया जाए तो शायद दुनिया इन्हें कभी याद भी न रखे।
1: जी
0: तो प्रिय मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि लगता है कि बार बार असफलता मिल रही है,
1: तो निराश मत होइए। हो सकता है शायद जीवन आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है।
0: तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। श्रोताओ, हमारा आज का प्रश्न है, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT Books PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो प्रारूप में यानी ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो जाइए NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर, और इसी ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को सुन सकते हैं। श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नट और नटी के तुकांत नाट्य प्रारूप में जल चक्र की कहानी को कविता और तालवाद्य की मजेदार संगत से बताया गया है और बच्चों को जल संरक्षण की प्रेरणा दी गई है।
0: पानी रे पानी, जल चक्र पर कविता।

0: सोनी जल्दी उठ जा बेटी, भीड़ हो जाएगी।
1: मम्मी सोने दो ना, ये भी कोई समय है उठने का, अभी तो सुबह के 3:30 ही बजे हैं।
0: अरे बेटी, 2 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे सामुदायिक रेडियो पर मैसेज आया था कि मोहल्ले में आज सुबह 4 बजे टैंकर से पानी दिया जाएगा। चल तैयार हो जा, मैं भी बाल्टी ले लेती हूँ।
1: माँ भैया को भी ले चलते हैं ना।
0: अरे उसे सोने दे, भैया थका हुआ है। इन दिनों स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना, कसरत करने भी तो जाता है कितनी।
1: माँ मैं भी तो स्कूल जाती हूँ और आपके साथ साथ घर का सारा काम भी कराती हूँ, क्या भैया ही थकता है बस।
0: ओहो अब चल भी, बहस मत कर।
2: नहीं माँ, इस बार मेरी बारी, अगली बार भैया की बारी, ठीक है?
0: ठीक है बाबा, ठीक है, अब चल भी, बहस मत कर।
1: ठीक है चलो।
0: अरे तू कहाँ से आ गई?
3: तो साथियों, ऐसा दृश्य थोड़े बहुत अंतर के साथ दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल जाएगा। आए दिन अलग अलग समाचार माध्यमों से सूचनाएं मिलती हैं कि जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं।
0: जी हाँ, इसी तरह सोनी के मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में अक्सर पानी की समस्या बनी रहती थी और हर बार वही क्रम चलता रहता था। वही क्रम यानी सोनी शाम को रेडियो सुन रही थी।

0: नमस्ते, हमारे कम्युनिटी रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट गौहर परवेज। शनिवार को संध्या 7 बजे हरित नगर कम्युनिटी हॉल में आप सबका रहेगा इंतजार। हम लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम, पानी रे पानी। बेहद खास इसलिए कि उस दिन आप मिल पाएंगे अपने चहेते रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी से। तो आइएगा जरूर।
1: बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि प्रोग्राम में आ रहे थे उनके प्रिय रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी।
2: इनका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है।
3: अरे आ गए, देखो,
4: अरे देखो, आ गए।

0: तो प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी।
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।
2: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
2: किस पर?
0: पानी पर।
2: पानी पर? क्यों?
0: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
2: हाँ, बड़ी तो है। अब देखो ना, इन बच्चों को सुबह सुबह 3-4 बजे पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्यों बच्चों, है ना यही बात?
3: हाँ, ये बात तो है,
4: पानी की समस्या तो है,
5: हम तो परेशान हो गए हैं।
2: तो बच्चों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जल चक्र।
6: जल चक्र?
2: हाँ, तो आज हम खेलेंगे भाषा का खेल, जिसमें आपको करना है शब्दों का मेल।
0: तो चलो शुरू करें।
2: चलो झुमकी।
0: ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। सूरज निकला चमचमाया, धूप ने फिर जल को तपाया। आगे जोड़ो झुमरू जी, और वो भी ताल में।
1: हाँ हाँ, जोड़ता हूँ मैं, ये लो, बात ध्यान से मेरी सुन लो। नदियों तालों का जल उड़ाया, भाप बन जल ऊपर आया।
0: जी ने तो कमाल कर दिया। अब ये भी लीजिए, जब भाप बनी तब बादल छाए, नील गगन में झूले खाए। जब लग गए बूंदों से बादल, भारी हो गए तब बादल। तालियां।
1: रिमझिम वर्षा आई, चहूं ओर हरियाली छाई। झरनों नदियों में बह पानी, जल चक्र की है ये कहानी।
0: तालियां, तालियां। फिर इसके बाद क्या हुआ झुमरू जी?
2: बताते हैं, सुनिए।
1: पानी फिर से सागर जाता, बार बार यही क्रम दोहराता।
0: क्या बात है। सूरज भाप बादल वर्षा का, जल चक्र यूं चलता जाता। सभी बोलेंगे, जल चक्र यूं चलता जाता।
2: तो बच्चों, कैसा लगा भाषा का ये खेल?
6: बहुत अच्छा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो बारिश का दिन।
1: ये कार्यक्रम एक रोचक नाटक के द्वारा वैज्ञानिक खोज की जानकारी देते हुए बताता है कि ज्वर मापी यंत्र थर्मामीटर का आविष्कार कैसे हुआ।
2: तनु माँ के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुई है। तनु के नाना जी आजकल तनु के साथ छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पर अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते हैं। नाना जी के साथ तनु रोज सैर करने जाती है, पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं।
3: ये मारा। हरा दिया, हरा दिया।
4: वैसे तनु, हाँ बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा है।
5: जी,
4: पर कैरम का खेल खूब जमा। न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आज मैंने, फिर भी एक खिलाड़ी को हरा दिया।
5: नाना जी, मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ।
4: ये कैसी अजीब बात है।
5: देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते, हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है।
4: ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की?
5: ना परियों की ना जादू वाली, मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाइए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे।
4: अच्छा बेटा तनु, तेरे डॉक्टर नाना के पास तो बीमारी, रोगी और उनके स्वस्थ होने की कहानियाँ ही है बस।
5: लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक रोचक और मजेदार होती हैं।
4: अच्छा।
5: हाँ और क्या, तो सुनाइए ना। हाँ, जल्दी सुनाइए।
4: हाँ, बेटा
5: जल्दी सुनाइए।
4: अरे सोचने तो दो,
5: जल्दी
4: सोचिए। किसकी कहानी सुनाऊं देखो।
5: अरे जीवन काका।
4: अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई।
6: बाबूजी,
4: हाँ?
6: आज सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है।
4: बुखार? अरे भाई बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं? आओ आओ अभी देखता हूँ, आओ इधर आओ।
6: जी
4: यहाँ लेट जाओ।
6: जी
4: लग रहा है बुखार। अरे बेटे तनु,
5: जी
4: जरा अंदर से थर्मामीटर तो ले आओ।
5: जी अभी लाई।
4: हाँ हाँ खांसी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो।
6: जी
4: पेट भी गड़बड़ है तुम्हारा तो। एक मिनट देखो, ये बारिश की वजह से हुआ है
6: जी।
4: पहली बारिश में थोड़ा सावधान रहा करो।
6: जी जी जी।
4: अरे बदलते मौसम का असर तो होता ही है ना भाई जीवन।
5: जी ये नाना जी।
4: हाँ ला बेटा ला। जीवन
6: जी
4: जरा मुंह खोलो, लो इसे जीभ के नीचे रख लो।

0: डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी।
1: अरे तनु
2: जी,
1: क्या बात है, कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
2: नाना जी, मैं सोच रही थी जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे?
1: बेटी तनु
2: जी,
1: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
2: तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना।
1: सुनो
2: जी,
1: जब थर्मामीटर नहीं था ना तब डॉक्टर रोगी को छूकर

0: Shalom.
1: ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहां एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस
2: जी।
1: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
2: अच्छा।
1: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी।
2: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
1: बेटे, एकदम अलग आकार था।
2: अच्छा।
1: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
2: जी।
1: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उठते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
2: अच्छा।
1: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
2: लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
1: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी।
2: अच्छा।
1: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
2: अच्छा।
1: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।
2: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
1: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
2: जी,
1: जिसे बुखार होता
2: जी,
1: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते
2: जी।
1: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता।
2: फिर
1: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता
2: जी।
1: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
2: अच्छा।
1: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
2: लेकिन बुखार?
1: ओहो बेटा, बताता हूँ, सांस लेने दे बूढ़ा आदमी। सुन ध्यान से
2: जी।
1: तो बेटा, तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना
2: जी,
1: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती
2: जी।
1: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।
2: अच्छा।
1: और बुखार का अनुमान लगा लेते। हाँ, लेकिन एक बात।
2: क्या?
1: देखो, पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था
2: जी,
1: कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे।
2: यानी बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती रोगी का बुखार उतना ही तेज होता।
1: बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक।
2: लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना।
1: हाँ बेटा, ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
2: हाँ जी।
1: इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर
2: जी
1: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
2: अच्छा।
1: हाँ बेटा, आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना
2: जी।
1: समझ गई ना
2: जी।
1: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था
2: जी,
1: और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते।
2: अच्छा।
1: आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा।
2: वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
1: नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
2: अच्छा।
1: हाँ बेटा, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
2: अच्छा।
1: आजकल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं
2: जी,
1: इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं।
2: अच्छा।

0: डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा।
1: जी
0: लगाते ही डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता।
1: अरे वाह।
0: हाँ। पर बेटा डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है।
1: हाँ, और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे।
0: हाँ, क्यों नहीं बेटा। और बेटे अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर भी बन गया है।
1: वाह, क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं
1: जी,
0: बोलकर बतला देता है।
1: नाना जी।
0: हाँ?
1: मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं।
0: सही कह रहे हैं बेटा, लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है।
1: अरे वाह।
0: हाँ, और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती।
1: वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी।
0: है ना
1: जी।
0: अरे बेटा, नाना किसका हूँ।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम वो बारिश का दिन, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना
2: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम, ये प्रसारण आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से किया गया। दिन का 1 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। इसके बाद 1:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें रिले किया जाएगा आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल वक्त है हिंदी समाचारों का, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री

कहा कि भारत जापान संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी सम्मान और पुराने सभ्यतागत संबंधों पर आधारित है। जापान के रक्षा मंत्री ने भूकंप पर भारत की संवेदना के लिए आभार जताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक चेन्नई के कोवलम में शुरू हुई। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जल

अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि बैठक के दौरान सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और समय पर तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्म जोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जनकल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। CISF ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें दो मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व और पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत तथा बचाव कार्य जारी है। घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 557 अंक बढ़कर 77,466 जबकि निफ्टी 141 अंक के वृद्धि के साथ 24,219 पर कारोबार कर रहा था। FIH हॉकी विश्वकप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टरडेम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाका निशी को हराया। पीवी सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में जेन जी उद्यमियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान सफल युवा उद्यमियों द्वारा अपना स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुक युवाओं को न केवल स्टार्टअप की स्थापना के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा, बल्कि स्टार्टअप के लिए धनराशि, तकनीकी सहायता प्राप्त करने सहित अन्य पहलुओं के संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में किसी औपचारिकता के बिना युवाओं के साथ सीधा संवाद होगा। कार्यक्रम में 6 मास्टर क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे, जिनमें सफल उद्यमी विशेषज्ञ के तौर पर 50-50 बच्चों के समूह को स्टार्टअप की स्थापना व अन्य पहलुओं का प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। बाद में इन युवाओं को एमएसएमई से लिंक किया जाएगा, जहां ये स्टार्टअप का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस दौरान बैंकों द्वारा ऋण संबंधी तथा कौशल विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा भी युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन उच्च शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी युवा उद्यमी यात्रा के अंतर्गत 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये बसें गुरुग्राम से चलकर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कॉलेज, विश्वविद्यालयों, आईटीआई, कोचिंग संस्थानों आदि के विद्यार्थियों को स्टार्टअप व उद्यमों के संबंध में जागरूक करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि संपत्ति पहचान पत्र पीआईडी को लेकर कोई भी समस्या मुख्यमंत्री कार्यालय में आएगी तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाएगी, इसीलिए अधिकारी उनका निवारण अपने स्तर पर जल्द सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय, नगर योजनाकार एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ संपत्ति पहचान पत्र को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वीट के साथ शहरी स्थानीय निकाय के तालमेल बैठक आयोजित कर पीआईडी से संबंधित समस्याओं का त्वरित गति से समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता को किसी प्रकार की दिक्कत पेश न आए। उन्होंने अधिकारियों को पूरी प्रणाली को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4,42,570 संपत्तियों की 2,79,658 पीआईडी प्रमाणित की जा चुकी है। शेष संपत्तियों से संबंधित आईडी को भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने जींद के लघु सचिवालय सभागार में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में अपने स्वैच्छिक कोष से 74 लाभार्थियों को 1,11,65,000 रुपए की आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। ये राहत राशि आगजनी व बीमारी से प्रभावित लोगों और सामाजिक धार्मिक संस्थाओं को तुरंत सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से दी गई है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने जींद के विकास का ब्यौरा साझा करते हुए बताया कि जिले के प्रभावित लोगों को अब तक लगभग 1,34,00,000 रुपए की सीधी मदद पहुंचाई जा चुकी है, जबकि विभिन्न विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे और संस्थाओं के लिए लगभग 4,00,00,000 रुपए की ग्रांट स्वीकृत की जा चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि जींद अब 9 नेशनल हाईवे से जुड़ चुका है, जिससे उद्योगों और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है। डॉक्टर मिड्ढा ने दोहराया कि सरकार हरियाणा एक, हरियाणवी एक की सोच के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हरियाणा के भिवानी जिले में आम लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। इस योजना के तहत सोलर पैनल लगाने पर सरकार की ओर से 1 किलोवाट पर 30,000 रुपए, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपए और 3 किलोवाट पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। योजना का लाभ उठा रहे भिवानी के दीपक मुतरेजा ने इसे कहा कि सब्सिडी के कारण ही एक ही साल में पूरी लागत वसूल हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
1: आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

वसुंधरा दास, के लॉय मेंडोसा और साथियों की आवाज़ों में ये था कल हो ना हो फिल्म का गीत। इस गीत के बोल रचे थे जावेद अख्तर ने, संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए लव आजकल फिल्म से। नीरज श्रीधर और साथियों ने इस गीत को आवाज़ें दी हैं, इरशाद कामिल के बोल, संगीत प्रीतम का।

0: हिमेश रेशमिया और साथियों की आवाज़ों में ये था आशिक बनाया आपने इस फिल्म का गीत। समीर के बोल थे, संगीत था हिमेश रेशमिया का।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।
2: शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के। पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है।

ये था राहत फ़तेह अली खान और साथियों की आवाज़ों में मेरे ब्रदर की दुल्हन, इस फिल्म का गीत। इस फिल्म के गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीत था सुहेल सेन का। आइए अब सुनते हैं रब ने बना दी जोड़ी, इस फिल्म से सुखविंदर सिंह का गाया ये गीत, जिसे रचा है जयदीप साहनी ने। गीत के संगीतकार हैं सलीम सुलेमान।

का गीत। इस गीत के बोल रचे थे विजय अकेला ने, संगीत था राजेश रोशन का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से। विशाल ददलानी और साथियों की आवाज़ें हैं, विशाल ददलानी के बोल, संगीत विशाल शेखर का।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आइए अब सुनते हैं 36 चाइना टाउन। इस फिल्म का गीत हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाज़ें हैं। इस गीत के बोल रचे हैं समीर ने, संगीत है हिमेश रेशमिया का।

बंटी और बबली फिल्म के इस गीत के साथ ही संपन्न होता है आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम। आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। दिन के 2 बजने को कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार। इसके बाद 2:15 पर समाचार होंगे हिंदी में, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
1: हमारी मैरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है। इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
0: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण का रास्ता अपना रही है।
2: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
3: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70,00,000 पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
0: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा

0: अभियान बताया।
1: एक पेड़ माँ के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है, हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
0: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और 1 सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद BNP के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनेदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
0: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577, जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

खेत खलिहान कार्यक्रम सुनने वाले सारे भण भैया ने आनंद भाई की राम राम। और भाइयों, खेती बाड़ी का जिक्र आओ तो ये देखे हैं कि अपना इब जो लगभग अगस्त का जो आखिरी पखवाड़ा है भाई टेम चल रहा है, आगे चाल की भाई जो अपनी खड़ी फसलें हैं भाई उनकी तो देखो दिन प्रतिदिन अपनी संभाल चल रही है भाई। कितने खाद का काम है, कितने पानी का काम है, बहुत सा इलाका में लगभग अपनी जो ये देखे हैं कि बरसात है, पानी का काम भी ठीक चल रहा था भाइयों का। जड़े जड़े भाइयों ही बरसात नहीं हुई है और खड़ी फसलें हैं भाई, पानी हम जरूर पुगावें क्योंकि जब तक पानी की दारमदार हो, चाहे वो कपास फसल है भैया, अरहर की फसल है, बहुत सी जगह ये देखे हैं कि भाई जो अपना बरानी इलाका है थोड़ा बहुत पानी की कमी रह गया है तो फसल व पैदावार नहीं दे पाती अपनी। और इस टाइम के ऊपर तो बूंदाबांदी के साथ साथ ये देखे हैं कि जड़े भी धान की फसल भी खड़ी थी क्योंकि सिंचित इलाका में लगभग अपना पूरा हरियाणा प्रदेश में कह ले हैं, कुछ पंजाब का इलाका है, कुछ यूपी का भाई इलाका है, कुछ जड़े भी पानी के साधन है भैया ने अगेती जो धान की फसल लगा रखी थी, कुछ पछेत की लगा रखी थी। तो भाई निराई गुड़ाई का तो थोड़ा घास पड़ाई का जो काम है भैया तो हमने देखो करना पड़ा है। और इसके साथ साथ ये देखें पानी की अगर बात करी जाए तो पानी की पूर्ति धान में रखनी बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम को अपनी जो ये देखा था कि भाई पछुआ जो हवा चल रही थी अपनी, पछुआ बाढ़ चल रही थी, बहुत सी इसमें जो धान फसल की बात करें तो खासतौर पर थोड़ा हा पत्ता लपेट की इसमें बहुत समस्या थी क्योंकि पत्ता लपेट हरेक जगह देखने में आई थी कि भाई ऊपर जो अपनी पत्तियां हैं वह सफ़ेद सफ़ेद होकर मुड़ जा रही हैं, मुड़ रही हैं, उसमें अपनी जो पत्ता लपेट की सुंडी है वह पाई जा है। तो यो है कि भाई दिन का तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए है, ऊपर तक कई जगह धूप बढ़िया निकला है और उसमें नीचे तो अपनी उमस बन जा है, मौसम में टेम्परेचर ऐसा बन है, पत्ता लपेट की बहुत समस्या आ जाए है। तो ध्यान यो रखें कि भाई जड़े ज़्यादा अपना यूरिया का प्रकोप है वो हम देख भाई या कह ले हैं या फिर अपनी मर्जी दे कह ले हैं, ज़्यादा यूरिया हम ना डालने इसमें, आगे तो ही फिर ये थोड़ा काचा अपना रखेगी, फिर इसमें कीट पतंगे की दिक्कत आओगी, फिर अपनी जो फसल है उसमें बहुत से इसमें काचापन में कीट पतंगे पर पड़ जाए हैं, इसमें बहुत बीमारियां आने का इसमें भैरव है, आशंका बन जाए है। तो जो सिफारिशुदा खाद्य हैं भाई उनका इस्तेमाल करें। पानी पात का भाइयों यह है कि जड़े ज़्यादा झील जो के इलाके हैं तो पानी भाई की तो खड़िया भी होया है भाइयों के, तो भाई कितने नहर में है, नाली डोला खोला भाई अपना इन देखें जड़े भी निकालन का प्रबंध हो, कितने भाई भाई मोटर भी टेक रहे हैं, कितने ट्रैक्टर के पंखे भी टेक रहे हैं, तो भाई अपना निकालन का प्रबंध जरूर करें ताकि आगे चाल की क्योंकि जो अपनी खरीफ की फसलों का आखिरी टाइम भी अंदाजा आगा भाई आगे चाल की रबी फसला की भी तैयारी करेंगे। बहुत से भाई इसमें देखे हैं कि अगस्त का जो आखिरी पखवाड़ा चलेगी भाई इसमें सितंबर तक शुरुआत में कुछ इलाक़े में अपना सरसों है, तारा मीरा है, राया है भाई इनकी बिजाई शुरू हो जाए, तो वहाँ भी भैया तैयारी पकड़ की चालनी है कि भाई जड़ा अपनी देसी खाद अगर हैं तो भाई खेतों में हम डाल लें बढ़िया भाई, अपना बरसात हो रही है तो इसमें आल दबाण का काम ही चल जाएगा क्योंकि भाई जुताई करके बहुत से भाई देखा है कि बरसात हो या पाछे जड़े भी भैया ने सरसम का इलाका है, तोरिया का इलाका है, तारा मीरा अगर बिजाई करनी है तो आल दबा दें हैं इसमें बढ़िया सुहागा पाटा लगा की और फिर टेम सर फिर वागा चाल की बिजाई शुरू कर दी हैं। थोड़ा हा जो ही मौसम अपना अनुकूल हो है, तापमान में कमी आओ है तो फिर सरसों की बिजाई भी है, तारा मीरे की बिजाई है भाई, तोरिया की बिजाई ही अभी शुरू हो जाएगी तो इनका भी ध्यान करेंगे, बढ़िया उन्नत किस्म का चुनाव कर लें हर एक जगह भाई, चाहे वो कौन सी फसल भी हम बो रहे हैं। आजकल आधुनिक टाइम चल रहा है, आधुनिक टाइम में भाई चाहे वो अपना कृषि संबंधित अपनी पत्रिकाएं हैं भाई, अखबार का माध्यम है, फ़ोन का इंटरनेट का माध्यम है, तो नई नई जो तकनीकी है, नई जानकारी है, नई किस्में हैं, इनका भैया ने ख्याल करना पड़ेगा। और थोड़ा खेती में सूझबूझ के साथ भाई हरेक बारी कहा जा है कि सूझबूझ जब तक किसान भाई नहीं अपना होगा, चाहे वो हरेक फसल की बात आओ, खर्चा कटौती की बात आओ, साधन संपन्न भाई रखें उनकी देख रेख की बात आओ है, तो बहुत सूझबूझ के साथ किसान भाई ने खर्चा कटौती करके खेती करेंगे जब बचत हो पाओगी। लेकिन आज जो बात है

की खतरी सजा ठेकरा चोराए बीच दराया करे पूत की खतरी सैने पिंडे कसी ते बुल वाया करे पूत की खतरी शनिवार ने आग छोर में लाया करे पूत की खातरी रोटी

तेरे छुटुआ कहने महल हवेली अस्थल थाना क्यों देस है राजा आली पोशाक छोटा के।

मेरी चंदगीरा में सुमर धनपत संग गुरु हिम्मती साया करे। अगर सैन के वाणा आजा गोती नती।

जगबीर सिंह बलमीय की गाई हुई। और जकरा भाई अपना ये देखे हैं कि इब इस टाइम के ऊपर जिन भाइयों के ऊपर गन्ना फसल खड़ी है और गन्ना फसल में बहुत सा दारमदार ये रो है कि भाई बारू मासी जोड़े अपनी खबात का टाइम हो है, क्योंकि चौमासे के टाइम पे पानी की पूर्ति हो जा है। और थोड़ा ये देखे हैं कि टाइम शर हम जब इसमत हैं, चाहे वो खरपतवार नियंत्रण की बात आओ है, भाई माटी चढ़ाने की बात आओ है, तो चौमासे तो पहले निपटा लिया तो सबसे बढ़िया रहा हूँ इसमें, क्योंकि इसकी बंधाई इस टाइम के ऊपर भाई काफ़ी शुरू हो गया है। और ये देखे हैं कि भाई कई भैया ने जो माटी चढ़ाने का काम है भाई इतनी नहीं कराया और अपनी पर्याप्त जमीन भी इसमें फौली हो है, तो अड़फड़ की भाई अपनी माटी चढ़ा ली है इसमें। इन दिनों में गुरदासपुर जो छेदक है बोरर है की रोकथाम के लिए भाई हर सप्ताह जो है प्रभावित गन्ना नाम इकट्ठे करा और ने निकाल की थोड़ा हम नष्ट कर दें ताकि अग चाल किया जो बीमारी हुआ दोबारा ना बद पाओ अपने। और ईख के जिन खेता में पायरिल्ला जब भी अपना जो पायरिल्ला है अड़ है अधिक बढ़ जाए है, तो उड़े ये देखा है कि इसके जो परजीवी हैं गन्ना अनुसंधान केंद्र करनाल ते लिया की छोड़ने हमने चाहिए। ऐसे ही अपना एच ए यूनिवर्सिटी में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसके जो पायरिल्ला है इसकी अपना अनुसंधान केंद्र में जो परजीवी हुए मिल जाए हैं, तो पायरिल्ला अलका प्रकोप होने पर भाई 400 तो लेकर 600 मिलीलीटर इसमें जो हल्की दवाई है अपनी सब्जी फसला पर भी इस्तेमाल करी जा है और गन्ने पर भी देखा हमें मेलाथियान है हर एक फसल में इसका स्प्रे जो है लाग जाए, चाहे वो अलका प्रकोप है जब दिखे हमने। मेलाथियान 50% ताकत की दवाई रहेगी इसमें, 400 तो लेके 600 लीटर पानी मिला के प्रति एक किलो के हिसाब से इसमें हमने छिड़काव कर दी। अगर परजीवियों की जो संख्या काफ़ी हो रही हो तो भाई कीटनाशक हमने इसमें छिड़कना नहीं है। वैसे अपनी जो फसल में पायरिल्ला बढ़नते परजीवी खेत में छोड़ने का प्रबंध हमने जरूर करना चाहिए, इससे जो परजीवी हैं भाई वो अपना पायरिल्ला है अड़ उसने ख़त्म कर दिए काफ़ी हद तक। और जड़ बेदक का आक्रमण हो तो भाई इसमें अगस्त में लगभग 8 किलोग्राम इसमें जो क्विनल फास दवाई है या 5G की मात्रा इसमें रहोगी प्रति एक किलो के हिसाब से, तो फसल में खुड्डा के साथ साथ हमने डालनी है। और फिर इसमें डाल की थोड़ी ही हल्की जो सिंचाई है किसान भाई वह कर दे हुए, तो इसमें काफ़ी हद तक जो है जड़ बेदक का आक्रमण तो इसमें फ़र्क पड़ जाएगा। और बहुत से भाई ये देखे हैं कि चाहे वो अपने गन्ने के साथ साथ अगर चल के भाई बंधाई बहुत ज़रूरी करवानी, क्योंकि बंधाई तो अगर गन्ना अपना बढ़िया हाइट ले रहा है बढ़िया बढ़ुहार इसमें हो रही है तो पहले तपाई ला के किसान भाई इसमें 2-3 बंधाई कराया कर दे, लेकिन आज थोड़ी बहुत वो देसी खादा का इस्तेमाल नहीं हो पाता, वह देसी खाद हमारे पास तैयार भी नहीं होती, खासतौर से जब हम गन्ना बिजाई करा, क्योंकि गन्ना जो बिजाई का टाइम सबसे बड़ा उत्तम टाइम रहो फरवरी का वो है। और फरवरी में जब बिजाई करा हाँ तो खेत की भाई बढ़िया जुताई करके, क्योंकि इसमें थोड़ा साल भर की फसल है, बांध जुताई थोड़ी ज़्यादा मांगा है इसमें, बिल्कुल मिट्टी ने भरूभरी बना की बढ़िया जो अपना कोई रोग रोधी जिसमें कोई भी अपना चाहे वो ये देखा हाँ कि भाई पायरिल्ले का है या फिर कोई अपना इसमें कोई अड़ प्रकार की वानी है, बिल्कुल साफ सुथरी पोरियाँ ने लेके हम कोई रोग रोधी इसमें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रोग रोधी साफ सुथरी पोरी बीज का इस्तेमाल करके आगे चाल की बिजाई कर का, और देसी खादा का इस्तेमाल इसमें सबसे ज़रूरी हो, क्योंकि जब भी साल भर की फसल मानी जाए और साल भर के बाद में भी किसान भाई इसने मोटी फसल रख ली, मोडी फसल में भी 2-3 साल तक 4 साल तक मोडी रखे हैं, अगर जब तक बढ़िया फुटाव दे हुआ गन्ना तो इसका खरीद के जो 3-4 साल तक पेडी रख ले हैं और इसने लेन दे रहे हैं, तो देसी खाद सबसे ज़रूरी हो हैं, चाहे वो बवेरू बूंदी आनी हम शुरुआत में डाल दें हैं या फिर आगे चाल के पेडी रखा, हाँ जब देसी खाद बिल्कुल किसान भाई इसमें ट्रॉली हंडा की महक है और जब डालना हाँ तो उसमें फिर थोड़ा आग चाल के जुताई कर दे हैं पहले भाई अपना जो बड़द होया कर दे, फिर अपना कई बहुत से भाई ट्रैक्टर ते अपने हड़न वाली मशीन ते इसमें हड़ दे हैं कि देसी खाद डाल की, फिर इसमें निराई गुड़ाई का बहुत महत्व रहा है। और बहुत से भाई कह रहे हैं कि जब अपना गन्ना कटाई शुरू हो जाए तो भाई इसमें पेडी रखने से पहले इसमें पताई बिछा दे हैं, वह भी बहुत आग चाल की खरपतवारा ने रोका है और खरपतवारा के साथ साथ उसमें काफ़ी लंबे टाइम तक नमी भी बनाई रखा है, तो बहुत से भाई इसमें इस्तेमाल पताई का भी कर ले हैं जो पत्ती अपनी उतरे गन्ना फसलते,
खाद का भी काम करेगी।

0: अपनी नमी भी बनाई रखेगी, उसमें खरपतवार भी इतने नहीं होंगे। तो ये थोड़े सूझबूझ के साथ है, चाहे वो गन्ना फसल है, कोई सी फसल हो गई, हमने तौर तरीके अपनाने जरूरी हैं। और पानी का प्रबंध भाई थोड़ा चौमासा का टाइम है, ज़्यादा बरसात नहीं हो रही है, तो गन्ना फसल में भाई पानी थोड़े दारमदार लग गया है, पानी हम जरूर पुगाऊँ ताकि आगे चाल की फसल में कोई कमी विशी ना आ पाओ इसमें, क्योंकि बडवार में भी और वजन लेने में भी काफ़ी हत्ती ऐसा एक है। और इब तो नवम्बर तक काफ़ी टाइम पड़ा है इसमें, और इब तो गन्ना भाई वजन भी ले होगा, बडवार भी ले होगा, तो थोड़ी इसकी संभाल बहुत ज़रूरी है, टाइम सर करनी है हमने। पानी सबसे ज़्यादा दारमदार हैं भाई, चाहे कौन सी फसल हमारी हो जाए। चौमासा में वैसे तो पानी का काम चल जाए, बरसात ठीक हो रही हो तो, नहीं हो रही हो तो भाई अपनी अपना खेत का किसान भाई ने तासीर का बेरा हुए है भाई, चाहे वो ट्यूबवेल का पानी है, नहर का पानी है, हम पुगाने की ज़रूर कोशिश करें। तो ये भाई अनेक रागनी और सुनवाऊंगे जगबीर सिंह बड़म्बी और साथियों की गाई।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

फिर एक सपना राजा ने आया, संतों का दिखा लारा, राजपाट सब त्याग दिया, फिर

तो ये सुनी भैया ने जगवीर सिंह ब्रह्मी गाई रागनी। और जकर भाई खेती बाड़ी में अपना ये देखे हैं कि मौसम का मिजाज हम देखें, जो भी हमने भाई खाद पानी डालना है, कुछ है अपना स्प्रे वगैरह का काम है, तो मौसम का मिजाज यो है कि भाई अपना लगभग 22 तारीख तक थोड़ा सा खुशनुमा बदलाव, हल्की फुल्की बूंदाबांदी, कहीं कहीं तेज़ बारिश की आशंका है। तो इस हिसाब से अपना जो भी दिनचर्या के काम है, चाहे वो स्प्रे का काम है अपना या फिर कोई खाद वगैरह डालने का काम है, तो हम टेम रेंदी रेंदी भाई थोड़ा सा हिसाब किताब देख लें, क्योंकि तेज़ हवा जब चल रहा है तो अपना स्प्रे जो है पूरा भरपूर इतना काम नहीं कर पाता। मौसम बिल्कुल साफ हो और ख़ास तौर पर थोड़ा सा शाम के टाइम पर अगर हम स्प्रे वगैरह कराएं तो इसमें ठीक रहे है। और मौसम साफ की बात यह है कि भाई जब थोड़ा बरसात हो जाए तो स्प्रे अपना पूरा काम नहीं कर पाता। आजकल थोड़ा महंगाई का टाइम है, तो इस हिसाब से अपने दिनचर्या के जो काम है उनका हम ध्यान रख के चलना देखा। और इब देख लें भाई घड़ी का, निशी के साथ ही खेत खलिहान कार्यक्रम का समय हो रहा समाप्त। चल लेंगे सारे भाण भैया ने, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिन के 3 बज चुके हैं। हमारी दूसरी प्रसारण सभा अब संपन्न होती है। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

है 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। हमारी तीसरी सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवाओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

कार्यक्रम युवा संसार सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी साथी याचना। और साथियों, आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज हम मना रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती। इस दिन को भारत सरकार द्वारा सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो सामाजिक एकता, शांति और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। और अगर हम बात करें तो राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में देश को आधुनिकता की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया। और अगर हम देखें तो 1944 को उनका जन्म मुंबई में हुआ था। प्रारंभ में उनकी राजनीति में कोई विशेष रुचि नहीं थी और उन्होंने एक पेशेवर पायलट के रूप में भारतीय एयरलाइंस में काम किया। 1980 में उन्होंने अमेठी लोकसभा से जो है सांसद के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। यहीं पर अक्टूबर 1944 में अपनी माता इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए, माफ कीजिएगा, 1984 में अपनी माता इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वे भारत के प्रधानमंत्री बने। उस समय वे केवल 40 वर्ष के थे, जिससे वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति। उनकी नीतियों ने भारत में दूरसंचार और सॉफ्टवेयर उद्योग की नींव रखी। यहीं पर पंचायती राज व्यवस्था की दिशा में भी कार्य किया। और साथ ही 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जिसके तहत नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई। उनका जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्य भारत के आधुनिकीकरण और की दिशा में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी दूरदर्शी सोच, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और स्थानीय शासन के क्षेत्र में आज भी भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु में एक चुनावी सभा के दौरान हुए हमले में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को शोक से डाल दिया। और यहीं पर राजीव गांधी की जयंती, जैसा कि हमने बताया, सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य समाज में शांति, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया जाता है। और साथ ही हम सुनवा देते हैं आपको गीत जो रहेगा फिल्म एक था टाइगर से। इसके बोल लिखे हैं अन्विता दत्त ने, संगीत दिया है सोहेल सेन ने और इसको गाया है केके और पलक मुच्छल ने।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे द टाइगर फिल्म से गीत, जिसे गाया था के और पलक मुचल ने। इसके बोल लिखे थे अनविता दत्त ने और संगीत दिया था सोहेल सेन ने। और अब हम बात कर लेते हैं कि आज हम रेडियो श्रोता दिवस भी मना रहे हैं। यह दिन रेडियो के प्रति श्रोताओं के प्रेम और लगाव को समर्पित है तथा भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत की याद दिलाता है। और भारत में रेडियो श्रोता दिवस मनाने का श्रेय छत्तीसगढ़ को जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के रेडियो श्रोताओं ने भारत में 20 अगस्त 1921 को हुए प्रथम रेडियो प्रसारण की याद में हर साल 20 अगस्त के दिन श्रोता दिवस मनाने का सिलसिला 2006 से शुरू किया, जो तब से लेकर लगातार जारी है। भारत में रेडियो प्रसारण का इतिहास लगभग 1 सदी पुराना है। शुरुआत में निजी कंपनियों द्वारा रेडियो प्रसारण किया जाता था, जिसे बाद में सरकार ने अपने हाथ से लेकर व्यवस्थित किया। समय के साथ यह ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी के रूप में विकसित हुआ, जो आज भी देश के कोने कोने तक समाचार, संगीत, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य रेडियो सुनने वाले श्रोताओं के योगदान और उनके भावनात्मक जुड़ाव को सम्मान देना है। यह दिन हमें रेडियो के ऐतिहासिक महत्व की याद दिलाता है और आने वाली पीढ़ियों को इस सरल किंतु प्रभावशाली माध्यम के मूल्य को समझने के लिए प्रेरित करता है। और साथियों, आज है गुरुवार और गुरुवार के दिन आज हम आपके लिए लेकर आते हैं एक वार्ता। आज की वार्ता का जो विषय है वो रहेगा युवाओं के वित्तीय साक्षरता आज की जरूरत, यानी कि युवाओं में जो भी अगर हम बोले तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी युवाओं में आज कितनी जरूरी है, उसका जो है ये विषय रहेगा। और वार्ताकार रहेंगे आशीष कुमार।
1: नमस्कार श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए, एक युवा के हाथ में स्मार्टफोन है, उसमें बैंकिंग ऐप है, UPI है, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, निवेश के ऐप है, लेकिन एक सवाल है, क्या उसके पास अपने पैसे को समझने की समझ भी है? मोबाइल चलाना हम जानते हैं, लेकिन क्या हम पैसा चलाना जानते हैं? UPI से 10 सेकंड में भुगतान करना जानते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि महीने की कमाई में कितना खर्चना है, कितना बचाना है और कितना निवेश करना है? आज का युवा डिजिटल है, लेकिन क्या वह वित्तीय रूप से जागरूक है? इन्हीं सवालों पर आज ही हमारी विशेष रेडियो वार्ता युवाओं में वित्तीय साक्षरता आज की जरूरत। श्रोताओं, केवल पैसा कमाना ही काफी नहीं। हम युवाओं को अक्सर कहा जाता है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, खूब पैसा कमाओ, लेकिन एक बात कहना भूल जाते हैं, पैसा कमाने के साथ साथ उसे संभालना भी सीखो। क्योंकि जिंदगी में दो तरह की कमाई होती है, एक है आमदनी और दूसरी है आमदनी से पैदा होने वाली आर्थिक सुरक्षा। मान लीजिए रोहन और उसकी बहन दोनों की पहली नौकरी लगी, दोनों का वेतन आया 30,000 रुपये। रोहन ने पहले ही महीने नया मोबाइल, जिसकी 8,000 रुपये की किस्त, ऑनलाइन शॉपिंग की 5,000 रुपये की, बाहर खाना खाया 4,000 रुपये का, घूमना फिरना 3,000 रुपये गवा दिए, बाकी पैसे महीना खत्म होने से पहले खत्म। रोहन कहता है मेरी सैलरी कम है, लेकिन समस्या शायद सैलरी की नहीं, वित्तीय योजना की है। अब उसकी बहन नेहा, उसे भी 30,000 रुपये मिलते हैं, वह पहले ही दिन तय करती है कि 15,000 रुपये जरूरी खर्चे के, 5,000 बचत और 3,000 निवेश, 2,000 आपातकालीन फंड और बाकी अपनी जरूरतों के लिए। साल के अंत में दोनों की कमाई समान है, लेकिन आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग। यही अंतर पैदा करती है वित्तीय साक्षरता। आइए समझते हैं कि वित्तीय साक्षरता आखिर है क्या। वित्तीय साक्षरता का अर्थ केवल बैंक खाता खोलना नहीं है, इसका अर्थ है कमाई को समझना, खर्च को नियंत्रित करना, बचत करना, निवेश को समझना, ऋण यानी लोन को समझना, बीमा और पेंशन की जरूरत समझना और सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल धोखाधड़ी से स्वयं को सुरक्षित रखना। सरल शब्दों में, पैसा हमारे लिए काम करे, हम हमेशा पैसे के लिए काम न करते रहें। और आज के डिजिटल युग में इसकी जरूरत और बढ़ गई है। श्रोताओं, भारत का आर्थिक व्यवहार बदल रहा है। आज भारत में वित्तीय समावेश का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जुलाई 2026 तक 58.77 करोड़ खाते थे, और इन खातों में कुल जमा राशि लगभग 3.12 लाख करोड़ रुपए थी। इनमें लगभग 32.75 करोड़ लाभार्थी महिलाएं थी। अर्थात बैंकिंग व्यवस्था अब केवल शहरों और बड़े व्यापारियों तक सीमित नहीं रही, लेकिन खाता होना और वित्तीय रूप से साक्षर होना दो अलग बातें हैं। बैंक खाता हमारे पास हो सकता है, लेकिन क्या हमें पता है एटीएम कार्ड की सुरक्षा कैसे करनी है, नॉमिनी क्यों जरूरी है, बीमा और निवेश में क्या अंतर है, एफडी और म्यूचुअल फंड में अंतर क्या है, ऋण लेते समय ब्याज दर के साथ साथ प्रोसेसिंग शुल्क और अन्य शुल्क क्या क्या है। पत्र सूचना कार्यालय यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई के जरिए लगभग 24,162 करोड़ लेन देन हुए, जिनका कुल मूल्य लगभग 314 लाख करोड़ रुपए रहा। मार्च 2026 तक यूपीआई से 700 से अधिक बैंक जुड़े हैं, लेकिन सुविधा जितनी बड़ी है जोखिम भी उतना ही बड़ा है। एक छोटा सा उदाहरण, अमित को व्हाट्सएप पर संदेश आता है, मुबारक हो आपको 5,000 रुपये का कैशबैक मिला है, इसे प्राप्त करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अमित क्लिक करता है, फिर फोन आता है, कैशबैक लेने के लिए कृपया अपना यूपीआई पिन डालिए। अमित खुशी में यूपीआई पिन डाल देता है।

सेकंड बाद 5,000 रुपये उसके खाते में आने की जगह खाते से चले जाते हैं। याद रखिए, यूपीआई पिन पैसे प्राप्त करने के लिए नहीं, पैसे भेजने के लिए होता है, और ओटीपी, यूपीआई पिन, सीवीवी और अपना पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें। अब बात करते हैं उस लालच की जो युवाओं को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, कम समय में ज्यादा पैसा। सोशल मीडिया खोलिए, कहीं लिखा है 10,000 रुपये लगाइए और हर महीने 50,000 घर बैठे कमाइए। कहीं गारंटीड रिटर्न, कहीं सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, कहीं कोई इन्फ्लुएंसर कह रहा है यह शेयर कल डबल होगा, दुगना लाभ प्राप्त करने के लिए आज ही खरीदे। अब सवाल है, अगर कोई व्यक्ति इतनी आसानी से करोड़पति बनने का तरीका जानता है तो वह खुद करोड़पति बनने के बजाय आपको यह बता क्यों रहा है? यही वित्तीय साक्षरता काम आती है। सेबी के निवेशक सर्वे 2025 के अनुसार केवल लगभग 36% निवेशकों में सिक्योरिटीज मार्केट का मध्य से उच्च ज्ञान स्तर है, जबकि लगभग आधे निवेशकों का ज्ञान का स्तर निम्न था। इसका मतलब साफ है, निवेश करने से पहले निवेश को समझना जरूरी है। बहुत से युवा कहते हैं मैं पैसा बचाता हूं, लेकिन सवाल है कहां? अगर पैसा केवल बचत खाते में पड़ा है तो हमें इन्फ्लेशन को भी समझना होगा। मान लीजिए आज आपके पास 1,00,000 रुपये हैं और महंगाई औसतन 6% है। कुछ वर्षों बाद वही 1,00,000 उतनी चीजें नहीं खरीद पाएंगे जितनी आज खरीद सकते हैं। यही कारण है कि वित्तीय साक्षरता हमें सिखाती है कि बचत जरूरी है, लेकिन लंबी अवधि में धन सृजन के लिए निवेश को समझना भी जरूरी है। लेकिन निवेश का मतलब यह नहीं कि हर पैसा बाजार में लगा दें। निवेश हमेशा लक्ष्य, समय अवधि, जोखिम उठाने की क्षमता और सही जानकारी के आधार पर होना चाहिए। आज युवाओं में किश्तों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। मोबाइल किश्तों पर, मोटरसाइकिल किश्तों पर, कंप्यूटर लैपटॉप किश्तों पर, और यहां तक कि घूमना फिरना भी किश्तों पर। किश्तें अपने आप में बुरी नहीं है, समस्या तब आती है जब हमारे भविष्य की आय आज ही खर्च कर देते हैं। मान लीजिए किसी युवा की आय 30,000 रुपये है और उसकी किस्तें 15,000 रुपये, अर्थात उसकी आधी आय पहले ही जा चुकी है। अचानक नौकरी चली जाए, स्वास्थ्य संबंधित खर्च आ जाए, परिवार में कोई आपात स्थिति आ जाए, यही कारण है कि ऋण लेने से पहले केवल यह मत पूछिए कि किश्त कितनी है, पूछिए कुल कितना वापस करना है, ब्याज दर क्या है, संसाधन शुल्क क्या है, देर से भुगतान पर कितना शुल्क है और पूर्व भुगतान की शर्तें क्या क्या हैं। यानी ऋण लेने से पहले ऋण की भाषा समझिए। अब युवाओं के लिए एक बहुत आसान सूत्र, मान लीजिए आपकी पहली सैलरी है 25,000 रुपये, आप इसे 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, जरूरतें जैसे घर, भोजन, यात्रा, शिक्षा आदि। दूसरा, बचत, हर महीने थोड़ी राशि अलग। तीसरा, आपातकालीन निधि, अचानक बीमारी, नौकरी में बदलाव या किसी अन्य संकट के लिए। चौथा, निवेश, अपने लक्ष्य और जोखिम क्षमता के अनुसार। पांचवा, स्वयं पर निवेश, यानी कोई नया कौशल सीखना या कोई कोर्स करना या किताबें, क्योंकि सबसे अच्छा निवेश कभी कभी अपने कौशल में ही होता है। युवाओं को एक बात विशेष रूप से समझनी चाहिए, इमरजेंसी और सेल में अंतर होता है। नई घड़ी इमरजेंसी नहीं, नया स्मार्टफोन इमरजेंसी नहीं, ऑनलाइन सेल में 70% डिस्काउंट भी इमरजेंसी नहीं है। लेकिन नौकरी का अचानक से चले जाना, परिवार में अचानक बड़ा खर्च, स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिक खर्च, ये इमरजेंसी है। इसलिए धीरे धीरे एक इमरजेंसी फंड बनाइए, यानी ऐसी राशि जो कठिन समय में आपके काम आए, जिसके लिए आपको तुरंत कर्ज न लेना पड़े। श्रोताओं, वित्तीय रूप से जागरूक नागरिक केवल अपने परिवार को मजबूत नहीं करता, वह देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। आरबीआई के फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का मूल्य मार्च 2024 में 64.2 तक पहुंचा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.8% बढ़ा। आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए देश भर में सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी का विस्तार भी किया है। तो आइए आज की बातचीत से 5 बातें याद रखें। पहला, नियम, कमाई से कम खर्च करें। दूसरा, कमाई बढ़ने के साथ साथ खर्च ही न बढ़ाते जाएं। तीसरा, पहले बचत फिर खर्च, महीने के अंत में जो बच जाए उसे बचाने की बजाय महीने के शुरुआत में ही बचत अलग करें। चौथा नियम, जिसे समझते नहीं उसमें निवेश मत करना, किसी मित्र, इन्फ्लुएंसर या

0: व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर अपना निवेश का निर्णय न ले। पांचवा, ओटीपी, यूपीआई पिन या एटीएम का पिन किसी भी बैंक अधिकारी को भी न दे। और अब सबसे जरूरी जानकारी, मान लीजिए आपके साथ डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड यानी कोई भी डिजिटली या इंटरनेट के माध्यम से आपके पैसे चुरा लेता है, घबराइए नहीं, तुरंत 1930 पर शिकायत करें और राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट करें। सरकार, आरबीआई और एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई सुरक्षा उपाय किए हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार 1930 साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग हेल्पलाइन और साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल इसी दिशा में महत्वपूर्ण साधन है। याद रखिए, फ्रॉड के बाद चुप रहना समाधान नहीं, तुरंत रिपोर्ट करना जरूरी है। अब मैं हर युवा श्रोता से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आज रात अपने मोबाइल में अपना बैंक बैलेंस देखिए, फिर खुद से पूछिए मेरे पास कितनी बचत है, मेरे ऊपर कितना कर्ज है, मैं हर महीने कितना खर्च करता हूँ, मैं कितना बचाता हूँ और मेरे वित्तीय गोल या वित्तीय एम लक्ष्य क्या है। अगर अगले 3 महीने मेरी आय बंद हो जाए तो क्या मैं संभाल सकता हूँ? अगर इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है तो चिंता मत कीजिए, यही तो शुरुआत है, आज से सीखना शुरू कीजिए। श्रोताओं, आज का युवा केवल भारत का भविष्य नहीं पर भारत की वर्तमान आर्थिक शक्ति भी है। जिस युवा के हाथ में स्मार्टफोन है उसके हाथ में डिजिटल वॉलेट भी है। जिस युवा के सामने हजारों फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसके सामने हजारों फाइनेंशियल ट्रैप्स भी हैं। इसलिए आज जरूरत केवल डिजिटल इंडिया की नहीं बल्कि फाइनेंशियली वाइज इंडिया की है। हमें ऐसा युवा चाहिए जो पैसा देकर लालच में न आए, जो छूट देकर जरूरत न भूले और जो किस्त देकर केवल मानसिक किस्त न देखे, पूरी लागत देखे, जो निवेश देकर केवल रिटर्न न देखे उसका रिस्क भी देखे, जो यूपीआई देकर केवल सुविधा न देखे सुरक्षा भी देखे और जो पैसा कमाने के साथ साथ पैसे की भाषा भी समझे। क्योंकि कमाई आपको आज मजबूत बनाती है, बचत आपका कल सुरक्षित बनाती है और वित्तीय समझ आपको पूरी जिंदगी सक्षम बनाती है। याद रखिए, पैसा कितना है यह महत्वपूर्ण है लेकिन पैसे की समझ कितनी है यह उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसी संदेश के साथ आज की इस विशेष वार्ता से मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और साथियों, अभी आप सुन रहे थे यह वार्ता जिसका विषय था युवाओं में वित्तीय साक्षरता आज की जरूरत। वार्ताकार थे आशीष कुमार और उम्मीद है कि आपको यह वार्ता आपके भविष्य में मदद करेगी। साथियों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में शारीरिक स्वास्थ्य की तरह मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है लेकिन अक्सर इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पढ़ाई का दबाव, करियर की चिंता, सोशल मीडिया की तुलना और बदलते रिश्ते, इन सब का असर युवाओं के मन पर गहरा पड़ता है और कहीं ना कहीं तनाव, चिंता और अकेलापन आज के दौर की आम समस्याएं बन गई हैं। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी न होना नहीं बल्कि खुद के साथ सहज महसूस करना, भावनाओं को समझना और चुनौतियों का सामना करना और इन सब की क्षमता रखना है। इसके लिए ज़रूरी है पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम, अपनों से खुलकर बात करना और ज़रूरत पड़ने पर किसी काउंसलर या फिर डॉक्टर से मदद लेने में संकोच न करना। साथियों, समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आज भी झिझक और भ्रम है। लोग इसे कमज़ोरी समझ लेते हैं जबकि सच यह है कि मदद मांगना साहस की निशानी है, कमज़ोरी नहीं। जितना हम शारीरिक बीमारी पर डॉक्टर के पास जाना सामान्य समझते हैं उतना ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायता लेना भी सामान्य होना चाहिए और हमारी सरकार ने इसके लिए जो है मानस हेल्पलाइन भी जो है चालू कर रखी है। अगर आप उस पर कॉल करते हैं तो वो आपसे हमेशा बात करने के लिए जुड़े रहते हैं। और बढ़ते हैं आगे कार्यक्रम में, सुनवा देते हैं आपको एक गीत जो रहेगा जबरिया जोड़ी फिल्म से। इसको गाया है यसीर देसाई और अल्तमश फरीदी ने, इसके बोल लिखे हैं रश्मि विराग ने और संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

और अभी आप सुन रहे थे जवरिया जोड़ी फिल्म से एक गीत, जिसे गाया था यसीर देसाई और अल्तमश फरीदी ने, बोल लिखे थे रश्मि विराग और संगीत दिया था तनिष्क बागची ने। फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा संसार। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति का गठन किया है। ये समिति दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच करेगी। समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें नहीं हटाया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्र की प्रगति, विकास और हितों से जुड़े साझा मुद्दों तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोष, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में सहकारी संघवाद पर बल दिया गया। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, मेक इन इंडिया के अंतर्गत रक्षा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और आपसी विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा प्रदान करता है। 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को लोगों के लिए विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवन शहर बनाना है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को आज देश का 23वां राष्ट्रपति चुन लिया गया। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाति संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया है। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व कप चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिन एवानागा और की नाकाशिकी को लगातार गेम में 21-16, 21-12 से हराया। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को चीन की गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से 16-21, 5-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। लीजिए अब सुनिए आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम।

0: आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे कंट्री वाइड और 9:45 पर इनसाइडर्स। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कार्यक्रम एक फिल्म से का समय रहेगा रात 9:15। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर डॉक्टर प्रिंस के साथ बातचीत का विषय रहेगा, फूलों की खेती से अधिक लाभ कैसे लें। ग्रामीण संसार कार्यक्रम में शाम 7:00 श्रावण मास में हमारे पारंपरिक व्यंजन इस विषय पर बातचीत करेंगे डॉक्टर वर्षा रानी। फिल्म संगीत का लुत्फा उठा सकेंगे शाम 7:30 पर और रात 10:00 कार्यक्रम मन चाहे गीत के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब प्रस्तुत हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल प्रातः 7:25 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुबह सवेरे। लोक संगीत कार्यक्रम प्रसारित होगा सुबह 8:30 पर, गायक होंगे गोविंद झीमर और साथी। दूसरी सभा में दिन में 12:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा संसार के अंतर्गत युवा पसंद शाम 5:30 पर। रात 9:30 पर आप सुनेंगे नाटक। कार्यक्रम एक फिल्म से का समय रहेगा रात 9:15। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर पशुपालन संबंधी समस्या व सुझाव पर फोन इन कार्यक्रम प्रसारित होगा, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ज्ञान सिंह। ग्रामीण संसार में शाम 7:00 फोन इन कार्यक्रम जारी रहेगा। खेत खलियान कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर कृषि वानिकी के लाभ इस विषय पर जानकारी दी जाएगी। फिल्म संगीत का लुत्फ आप उठा सकेंगे सुबह 9:00 कार्यक्रम एक रंग के अंतर्गत। दोपहर 1:10 पर कार्यक्रम आपके अनुरोध के अंतर्गत। शाम 7:30 पर और रात 10:00 कार्यक्रम मन चाहे गीत के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 6:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले करेंगे। उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, इसे कानून का खुला उल्लंघन बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ कैथल जिले के गांव जाडौला में गुरु रविदास जी की मूर्ति का अनावरण किया। पीएम गतिशक्ति पोर्टल के प्रयोग और इस पर अधिकारियों की पहुंच के मामले में हरियाणा देश में पहले स्थान पर पहुंचा। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने 995 उभरते खिलाड़ियों को 3,80,00,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की और भारतीय सेना के जवान रवि प्रकाश सांगवान का उनके गांव कासनी में राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण का रास्ता अपना रही है।
1: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कैथल जिले के गांव जाडौला में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित रहे। पूर्व राज्यसभा सांसद चौधरी ईश्वर सिंह द्वारा आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री ने मंदिर समिति के लिए 31,00,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास की वाणी ने लोगों को जोड़ने का काम किया। वो किसी एक पंथ या समाज के नहीं, सबके थे।
2: संत रविदास एक ऐसे संत हैं जिन्हें मजहब, पंथ, विचारधारा की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। श्री गुरु रविदास जी का प्रभाव केवल एक क्षेत्र या एक जाति तक वो सीमित नहीं रहा। आज उनके अनुयायी केवल हरियाणा, पंजाब या काशी तक सीमित नहीं है, भारत के कोने कोने से लेकर दुनिया के अनेक देशों में लाखों श्रद्धालु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की वाणी निरंतर प्रेरणा लेते हैं।
0: जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संत गुरु रविदास जी की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं और राज्य सरकार उनके विचारों के अनुरूप समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कुरुक्षेत्र के उमरी में 124 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे भव्य गुरु रविदास धाम का भी उल्लेख किया। समारोह में पूर्व सांसद ईश्वर सिंह द्वारा संत रविदास जी की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संविधान में निहित समानता और बंधुत्व की भावना संत परंपराओं और भारतीय दर्शन से ही प्रेरित है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा है कि पीएम गतिशक्ति पोर्टल के उपयोग और इस पर अधिकारियों की पहुंच के मामले में हरियाणा देश में पहले स्थान पर आ गया है। पोर्टल पर 720 से अधिक अधिकारियों को जोड़कर प्रशिक्षित किया गया है। GIS आधारित तकनीक के इस्तेमाल से परियोजनाओं का स्थान आंकलन और सत्यापन का समय 40 से 45 दिनों से घटकर मात्र 1 से 2 दिन रह गया है। चंडीगढ़ में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि राज्य में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की संख्या अप्रैल के 9 से बढ़कर अगस्त में 34 हो गई है। बैठक में मुख्य सचिव ने एकीकृत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रणाली में तेजी लाने के निर्देश दिए और GMDA को गुरुग्राम के नगरीय रसद योजना को जल्द अंतिम रूप देने और फरीदाबाद के लिए भी ऐसी ही योजना तैयार करने की बात कही। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को लंबित आंकड़ा संयोजन का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यू

newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में खेल विभाग द्वारा आयोजित खिलाड़ी खेल सम्मान समारोह में 995 उभरते खिलाड़ियों को 3,80,00,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 48,000 रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 42,000 रुपए और तृतीय स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को 36,000 रुपए की छात्रवृत्ति देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा माहित संधू को उनकी असाधारण खेल उपलब्धियों के लिए 1,20,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। श्री कटारिया ने कहा कि ये छात्रवृत्तियां और पुरस्कार खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण का सम्मान है। उन्होंने खिलाड़ियों की सफलता में उनके प्रशिक्षकों और उनके परिवारों के योगदान की भी सराहना की। भारतीय सेना के जवान रवि प्रकाश सांगवान की आज उनके गांव कासनी में राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। शहीद के पार्थिव शरीर को उनके 8 वर्षीय बेटे देव सांगवान ने मुखाग्नि दी। युवाओं और ग्रामीणों ने बाइक काफिले के साथ शहीद की अंतिम यात्रा निकाली। रवि प्रकाश वर्ष 2015 में सेना में भर्ती हुए थे और वर्तमान में राष्ट्रीय राइफल्स की 54वीं बटालियन में कश्मीर में तैनात थे। वे हवलदार के पद पर तरक्की के लिए बेंगलुरु में प्रशिक्षण ले रहे थे। प्रशिक्षण के आखिरी दिन फिजिकल एक्टिविटी के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी तबीयत बिगड़ गई और निधन हो गया। वे मुक्केबाजी में 5 बार स्वर्ण पदक विजेता रहे थे। विधायक सुनील सांगवान ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है। परिवार की सरकार, समाज व व्यक्तिगत स्तर पर हर संभव मदद देने की भी बात उन्होंने कही। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज कुरुक्षेत्र के अंबेडकर भवन में श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ द्वारा आयोजित 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अधिवेशन में देश भर से आए संतों, समाज सेवियों, शिक्षाविदों, युवाओं और बुद्धिजीवियों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने रविदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि गुरु रविदास जी ने जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त कर एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें सभी को समान अवसर और सम्मान मिले। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश भर में श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती पर गुरु पूर्णिमा से कलश यात्रा निकाली है, जो सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे के संदेश को जन जन तक पहुँचा रही है। देश भर में ये यात्रा माघ पूर्णिमा तक चलेगी। रोहतक पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह साइबर पीड़ितों की मदद के नाम पर फर्जी वेबसाइट्स चलाकर ठगी करता था। पुलिस अधीक्षक गौरव राज पुरोहित ने बताया कि आरोपियों ने मुंबई पुलिस और गृह मंत्रालय का अधिकारी बनकर रोहतक के एक युवक से करीब 2,68,000 रुपए ठगे थे। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी कर इस गिरोह का भंडाफोड़ किया और इनके पास से 13 स्मार्टफोन, 10 कीपैड फोन, 21 फर्जी सिम कार्ड, 10 एटीएम कार्ड और फर्जी वेबसाइट से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं। पलवल जिले में होजल पुलिस ने एक युवक को देसी कट्टे और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर सेवली मानपुर रोड पर घेराबंदी कर आरोपी देवेंद्र रावत को पकड़ा गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाने के फैसले की आलोचना की। इसे कानून का खुला उल्लंघन बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ कैथल जिले के गांव जाडौला में गुरु रविदास जी की मूर्ति का अनावरण किया और पीएम गतिशक्ति पोर्टल के प्रयोग और इस पर अधिकारियों की पहुंच के मामले में हरियाणा देश में पहले स्थान पर पहुंचा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं पोर्टल में नुकसान मानता हूँ, मौसम परिवर्तन का यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ ना कुछ भरपाई होगी। जी मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: खर्चा मत बढ़ाओ, जमीन को बंजर होने से बचाओ, संतुलित खादों का इस्तेमाल करो, न मिट्टी की हालत बेहाल करो।
1: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: संजय भाई राम राम।
1: आनंद भाई राम राम और कार्यक्रम सुनाने वाले सारे वाण भाइयों ने
2: राम राम। तो संजय भाई, आज किसान वाणी में बात करेंगे, क्योंकि अपना जो पॉली हाउस है उसमें हम नेट के द्वारा या पॉली हाउस के द्वारा कौन कौन सी सब्जियां का उत्पादन इसमें कर सके हैं, तो इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ चौपाल में मौजूद हैं डॉक्टर जगत सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका चौपाल में स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। बात करें हैं जब अपना पॉली हाउस की, एक तो हम खुले में खेती करे हैं और एक किसान भाई पॉली हाउस में खेती करे, इसमें बहुत सा फर्क आ जाए। और फर्क की बात यह है डॉक्टर साहब, इसमें बेमौसम की अगर बात करी जाए, चाहे वो सब्जी फसलें हों, बहुत से भाई इसमें सब्जी फसलें भी उगाऊ हैं, कई समस्या भी किसान भैया के साथ आऊ इसमें सूत्रकर्मी की।
3: बिल्कुल जी।
2: तो डॉक्टर साहब, इसमें शुरुआत में शुरू कर, कौन सी इसमें ऐसी सब्जी फसलें हैं कि जिनका किसान भाई फायदा ले सके?
1: फायदा तो पहले आनंद भाई थोड़ा सा ये जिक्र करें कि भाई जिस तरह आपने शुरू में बताया कि भाई एक तो खुले में अपने
2: जी
1: फसल ले हैं और एक ये जो पॉली हाउस है इसमें ले हैं, तो इसमें और इन दोनों में क्या फर्क है और क्या फायदा है?
3: देखो आनंद भाई, पॉली हाउस या पॉली नेट हाउस
2: जी,
3: आजकल हमारे हरियाणा में ये पूर्व उत्तरी भारत में करें प्लेन्स में
2: जी,
3: तो पॉली हाउस में पॉली नेट हाउस ज्यादा कारगर हैं और सरकार अभी इसी पर ध्यान दे रही है
2: जी,
3: क्योंकि इसमें पॉली नेट हाउस में साइड में नेट लगाया होता है, ऊपर पॉलीथीन लगी होती है
2: जी,
3: ताकि बारिश वगैरह का ऊपर से ना आए उसमें और साइड से गर्मी निकलती रहे
2: जी,
3: और कोई इंसेक्ट ये वगैरह उसमें एंट्री ना करे।
2: बिल्कुल।
3: ये जो इंसेक्ट के वैश्विक होते हैं
2: जी,
3: फ्लाई वगैरह बटरफ्लाई बोलते हैं, वो उसमें उसकी मादा ना घुसेगी
2: जी,
3: तो इसलिए उसका कीट का जो आक्रमण है वो कम होगा फसलों पर।
2: बिल्कुल।
3: इसको बोलते हैं पॉली नेट हाउस।
2: पॉली नेट हाउस
3: एक है नेचुरली ओपन नेट हाउस
2: जी,
3: एक तो बिजली से लगा के कूलर वगैरह लगा के तापमान कम करते हैं
2: जी,
3: एक अपने आप तापमान को ऊपर से को थोड़ा तिरछा करके दाई लगा देते हैं, नेट लगा देते हैं उसमें
2: जी,
3: तो गर्मी ऊपर से अपने आप निकल जाती है
2: जी,
3: उसको नेचुरल पॉली नेट हाउस बोलते हैं।
2: नेचुरल।
3: हाँ, तो शुरू में क्या था कि हमने पॉली हाउस बनाए, कवर कर दिया पूरा पॉली हाउस चारों तरफ से, तो उसमें गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती थी और उसको तापमान ठंडा करने के लिए बिजली का खर्चा बहुत आता था
2: जी,
3: और उसमें बहुत ज्यादा लागत लगती थी किसान जी।
2: फिर डॉक्टर साहब, इसमें प्राकृतिक पॉली हाउस आपने बताया और एक जो अपना कुछ बिजली के यंत्र है, इसमें फर्क के आगे डॉक्टर?
3: देखिए प्राकृतिक में क्या, हम साइड में से भी नेट लगी, जाली लगी पॉलीथीन
2: जी,
3: पॉलीथीन की, और ऊपर जाके थोड़ा 45 डिग्री एंगल पर तिरछा ढांचा बना के वहां भी जाली लगा दी
2: जी,
3: ताकि गर्मी जो हो ऊपर उठकर अपने आप बाहर निकल जाए।
2: बिल्कुल।
3: अंदर इसमें कोई हमने बिजली के कूलर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती
2: जी,
3: लेकिन दूसरा है जिसमें बिजली के कूलर वगैरह लगा के हम तापमान कम करते हैं, तो वो हो गया उसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा आ जाएगा, बिजली का खर्चा
2: जी,
3: नहीं तो हम ऊपर कवर करते थे पहले पूरा पॉलीथीन से, तो गर्मी बाहर नहीं जा पाती थी उसकी, तो इसलिए धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस होते होते ये आगे भी ऊपर उसको खुला जाली लगा के छोड़ दिया जाए साइड में, ताकि बारिश का पानी भी उसके अंदर ना आए।
2: हाँ।
3: और गर्मी निकल जाए
2: जी।
1: डॉक्टर साहब, इसमें जिस तरह भाई खुले में हम जो फसल बोए हैं और इसमें बोआ है,
3: बिल्कुल,
1: तो वो किस वजह से बोआ है, क्या कारण है?
3: एक तो जो खुले में क्या हमें निश्चित तापमान हमने चाहिए फसल के लिए, हम उसमें थोड़ा फेर लगकर के थोड़ा ही फसल को आगे तीव ले सकते हैं, थोड़ा लेट कर सकते हैं बाहर की बजाय
1: जी
2: जी,
3: तो ये हमें फायदा उसके लिए, हमें किसान को जो अच्छा प्राइस मिल जाए मार्केट में, एक तो मेन चीज है
2: सही
3: मौसम कह लो उसको, बे मौसम गैर मौसम उसके, दूसरा इसमें जैसे मैंने बताया भाई कोई तितली वगैरह एंटर नहीं कर पाओगी तो कीटों का आक्रमण कम होगा, तो उसके हमें कोई कीटनाशक का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा ये फायदा है। दूसरा की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी हमारी, जो क्योंकि नियंत्रित तापमान मिलेगा, नियंत्रित ह्यूमिडिटी मिलेगी।
2: हाँ।
3: तो उसे गुणवत्ता भी अच्छी होगी, जो पैदावार तैयार होगी इसके अंदर
2: जी
1: बाहर। यानी मोटी सी कैट की बात यह है कि खुले में जो तापमान है या आर्द्रता है उसमें हम कंट्रोल नहीं कर सके, लेकिन इसमें कंट्रोल करके और उसके जो सब्जी हम लगाने लग रहे हैं या जो भी पौधा उसमें लगाने लग रहे हैं उसके मुताबिक वातावरण बढ़ा के और हम उस तक उत्पादन ले सकते हैं,
3: बेमौसमी उत्पादन ले सकते हैं,
1: अगेती या पचेती दोनों डाल के हम उसमें
3: उसको अगेती कर सकते हैं, थोड़ी लेट भी कर सकते हैं बाहर की बजाय।
2: बिल्कुल,
1: तो ये उसके फायदे।
3: और
1: तीसरा आपने बताया कि कोई कीड़ा है या कोई मक्खी है ना, वो उसमें अंदर नहीं घुस पाता,
3: नहीं घुस पाता, इसलिए कीट का उस पर
2: भारी प्रभाव
3: होगा।
1: हाँ,
2: तो बिल्कुल बचाव रहेगा डॉक्टर साहब,
3: क्योंकि जो कीट है उनकी मादा जो उड़ती है,
2: हाँ,
3: नर और मादा, वो उसमें अंडे दे देती है माता
1: जी,
3: उससे वह सूंडी निकलती है। जब मादा ही एंट्री नहीं कर पाएगी अंदर पोली हाउस के अंदर, नाइट हाउस के अंदर, तो इंसेक्ट कहाँ से आएगा
1: जी। तो डॉक्टर साहब एक बात है, उसमें जगह तो फिर थोड़ी रह जाए तो उसमें उस हिसाब से उत्पादन हो जाएगा, क्योंकि
3: हाँ
1: अब इस तरह हमने बेल लगा दिए वो तो
3: बिल्कुल सही बात,
1: बड़े लंबी फैल लगी।
3: सवाल बहुत अच्छा है, ये भी फायदा इसके अंदर, क्योंकि बेल टाइप फसलें हमने इसमें रिकमेंड करी है, जो बेल टाइप हो वही लगाने की सिफारिश की गई है। जैसे टमाटर है, बेल टाइप टमाटर वरायटी आती है अलग से,
2: हाँ बिल्कुल, जो लंबी लंबी आजकल उसने बांध की भी ऊपर निकाल,
3: बिल्कुल वो उसे ट्रेसलिंग से धागे, प्लास्टिक धागे से बांध कर ऊपर चलती है। दूसरा शिमला मिर्च है,
2: हाँ,
3: खीरा है,
2: बिल्कुल,
3: ये तीनों जो हाई वैल्यू क्रॉप बोलते हैं जिसका अच्छा प्राइस मिलता है मार्केट में
2: जी,
3: उन्हीं को उगाने का ज्यादा फायदा है, क्योंकि लागत उसमें जरूर ज्यादा आती है नेट हाउस में। तो बेल टाइप फसलें उगाने का ज्यादा फायदा है इसके अंदर
2: जी,
3: क्योंकि ऊपर स्पेस हम कितना भी लें, नीचे तो लिमिटेड है,
2: हाँ हाँ,
3: हम उसको ऊपर ले जा सकते हैं कितनी भी हाइट बढ़ा लें
2: जी।
3: आमतौर पर तो 16-17 फीट तक इसकी हाइट रखते हैं पोली हाउस,
2: 16-17 फीट है,
3: हाँ 15-16 फीट इसकी हाइट रख सकते हैं
2: जी,
3: लेकिन वो सफिशियंट है फिलहाल तो जो किस्में हमारी बेल वाली
2: जी,
3: लेकिन आगे स्पेस कितना भी यूज कर सकते हैं हम।
2: ठीक बात है,
3: अगर बोर कोई बड़ी बेल होगी कोई आगे रिसर्च आने वाले टाइम में ज्यादा बढ़ने वाली बेल होगी तो और भी ऊंचाई बढ़ सकती है पोली हाउस की,
2: मेहनत पे बात है डॉक्टर साहब,
3: हम स्पेस का जो है उसको भी यूज कर सकते हैं ज्यादा
2: जी,
3: इसीलिए इसमें पैदावार ज्यादा मिलती है
2: जी।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक पानी की भी बड़ी एक बात रहा है कि भाई पानी उपलब्ध होगा तो ही खुला पानी चलाओगे तो ही उसमें जो, तो एक तरफ तो हम इतना सारा खुला पानी इसमें दे हैं, अरे कि वो जो बंद वातावरण है उसमें उसमें किस तरह काम चल रहा है फिर?
3: हाँ जी, इसमें जो टपका स्थाई विधि है वो इसमें प्रयोग करते हैं।
1: अच्छा,
3: टपका स्थाई विधि और मल्च जो उसमें बेड के ऊपर प्लास्टिक की मल्च रख देते हैं,
1: हाँ,
3: पोलिथीन से, ताकि जो भी प्रोड्यूस होगा वो खराबी ना हो, नमी कम उड़ेगी, खरपतवार भी नहीं हो गएंगे उसके अंदर।
2: बिल्कुल,
3: तो मल्च और ये टपका स्थाई भी इसके लिए जरूरी है दोनों
2: जी।
3: दूसरा टपका स्थाई का फायदा कि हम इसी के साथ खाद इसके साथ ही देते रहते हैं,
2: पानी के साथ,
3: पानी के साथ
2: जी।
3: आजकल ये तरल खाद आ रहे हैं,
2: हाँ,
3: उनकी मात्रा निश्चित मात्रा में जितना हम चाहें पौधे की उम्र के हिसाब से
2: जी,
3: उतनी ही खाद उस पानी के साथ देते रहते हैं। कोई अलग से उसमें डालने की आवश्यकता नहीं होती, ना अलग से लेबर लगनी खाद डालने की
2: जी।
3: और पौधे की उम्र के हिसाब से हम उसकी क्वांटिटी निश्चित करके रो पानी के साथ देते रहते हैं।
2: डॉक्टर साहब, इसमें एक मोटी बात यह है कि किसान भाई का थोड़ी असमंजस में रहा है कि एक बार ही जैसे हम लगाओ हैं या फिर कोई मोटी वाली फसल भी इसमें कोई बार दोबारा जो बेल फुटाव करे हैं वह भी कामयाब है डॉक्टर साहब इसमें?
3: देखिए, अब तक तो ऐसी हम एक बार लगाते हैं वही फसल चलती है
2: जी।
3: और दूसरा है कि मई जून में हम इसको खाली रखने की सिफारिश करते हैं, मई जून में कोई फसल ना लें
2: जी,
3: उस टाइम गर्मी ज्यादा हो जाती है और कई क्या कि इसमें नेमाटोड की शिकायत आई कई जगह,
2: सूत्रकर्मी
3: जो बोलते हैं जड़ गांठ सूत्रकर्मी, उनकी शिकायत आएगी, तो उसके लिए मई जून में हम इसको खाली रखते हैं
2: जी।
3: और उसके दौरान हम इसमें उपचार करते हैं ताकि नेमाटोड की शिकायत ना रहे। एक तो उस टाइम क्या हम इसको इरिगेशन देकर सिंचाई करके
2: जी,
3: और उसको पॉलिथीन सीट से 40-50 OMM की थिकनेस भी पॉलिथीन ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन से ढक देते हैं पूरे एरिया को, और उसका तापमान जो 60-70 डिग्री तक

0: हाँ पोलियो से बचाव हो जाए,
1: बचाव हो जाता है बिल्कुल होता
0: जी। बात एक है अपना, एक तो खुल हमारे कई बहुत से किसान भैया द्वारा अपना बड़ी रेत तो है जैसे कि बागड़ का इलाका,
1: हाँ जी,
0: तो वहाँ पे कितना के कामयाब है अपना पोली हाउस डॉक्टर साहब?
1: देखो जी वहाँ पे तो ज्यादा कामयाब, बल्कि जयपुर के आसपास तो एक मिनी इजराइल बोलते हैं गांव है जयपुर के पास
0: जी,
1: उसी पोली हाउस को मिनी इजराइल करने लग गए।
2: अच्छा,
1: और वहां से सब्जियां दिल्ली आती हैं,
0: वहां से दिल्ली आ,
1: हाँ देखो नहीं तो पहले क्या होता दिल्ली से वहां से आती थी, अब उल्टा काम है जयपुर से, खास जयपुर से राजस्थान से कम पानी का एरिया, और वहां से सब्जी दिल्ली आ रही है
0: जी,
1: तो ये तो एक चमत्कार है ना, तो उसको बहुत पानी कम मात्रा में लगेगा और वहां तो बल्कि वो जमीन भी ऐसी कामयाब आराम से वोइंग वगैरह हो जाती है, तैयार करते हैं छोटे ट्रैक्टर से, जिसमें छोटा ट्रैक्टर कामयाब है जिसके अंदर,
0: हाँ जैसे
1: तो उसमें जल्दी खेत तैयार हो जाता है
0: बिल्कुल,
1: जो चिकनी मिट्टी वो दिक्कत करती है और पानी नहीं पीती कई बार,
0: हाँ हाँ।
1: तो फसल मरने का चांस भी रहता है
0: जी।
1: लेकिन वो तो अच्छा है बारिश के बावजूद तो
0: जी,
1: मिट्टी
0: तो डॉक्टर साहब इसमें किसान भाई तैयारी की अगर बात आओ है, शुरुआत में एक तो हम देसी खादा का प्रयोग कर रहे हैं, पोली हाउस में कुछ ऐसा जैसे कि अपना कोई केचुआ संबंधित वर्मी कम्पोस्ट खाद होगी?
1: बिल्कुल, एफआईएम की बजाय केचुआ खाद और भी ज्यादा बेहतर है
0: जी,
1: उसमें पोषक तत्व भी ज्यादा है एफआईएम की बजाय
0: जी,
1: और जो हीट का इफेक्ट होता है, हीट बनती है शुरू में पानी आने के बाद, वो भी कम होता है, खरपतवार के बीज भी नहीं जमते इससे केचुआ खाद में
2: जी,
1: एफआईएम में खरपतवार के बीज ज्यादा जम जाते हैं, लेकिन इसमें केचुआ खाद में कोई खरपतवार का बीज नहीं जमता
0: जी,
1: सब खत्म हो जाते हैं इसके अंदर।
0: फिर लगभग हम 12 महीने की बजाय में 2-3 महीने खाली रखना,
1: मई जून उतार खाली रखना होता है,
0: और इसमें बारहमासी कोई सी फसल हम इसमें
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, कोई फूलों वाली लो, कोई सब्जी, कोई भी
0: फूल बीच में,
1: कोई औषधीय पौधा हो फूल औषधीय वो भी ले सकते हैं।
0: और फिर डॉक्टर साहब इसमें किसान भाई एक तैयारी तो कोई भाई मन बना के चला के हमने पोली हाउस लगाना है
1: जी।
0: तो शुरुआत में वो किस तरीके से किस हिसाब से कोई जगह वगैरह की कोई पानी टेस्टिंग?
1: हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल
0: जी,
1: इसके लिए मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करवाता है युवाग, जो उद्यान विभाग सब्सिडी देगा ना
0: जी,
1: वो मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करवाता है कि वो सही होनी चाहिए, क्वालिटी उसकी बढ़िया हो, मिट्टी में कोई साल्ट वगैरह की समस्या ना हो, और एक जगह सिलेक्ट कर, सबसे पहली बात जगह जगह लगानी है, वहां ऐसा ना हो कि पानी भर जाए कहीं,
0: हाँ।
1: निचला एरिया ना हो, कहीं बारिश ज्यादा हो जाए उसमें पानी भर जाए,
0: ऐसी जगह नहीं हो
1: बिल्कुल
0: जी,
1: ढलान का इलाका नहीं होना चाहिए, ऐसी थोड़ी ऊपर की जगह ज्यादा कभी हो जाए तो बारिश पानी भरने का गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना।
2: और कुछ साधन आने जाने का भी थोड़ा सा,
1: वो तो आने जाने के साधन सब्जी जैसे बेच के आनी है तो नजदीक और रोड के नजदीक अच्छा पक्का रास्ते के साथ में होना चाहिए
0: जी,
1: पोली हाउस
0: आओ तो किसान भाई ने सुविधा हो जाए,
1: सुविधा होनी है बिल्कुल
0: जी। फिर डॉक्टर साहब इसमें कोई अपना एक तो सरकारी सुविधा इसमें होगी किसान भाई आते ही वो भी जागरूक, लेकिन कोई भाई पहले प्रशिक्षण के दौरान भी कोई ऐसा कार्य कराया जा सके है?
1: हाँ जी, इसके लिए प्रशिक्षण भी होता है
0: जी,
1: बल्कि पहले प्रशिक्षण लेना चाहिए उसके बाद ही लगाने की सोचे बंदा
0: जी,
1: प्रशिक्षण बहुत जरूरी है बाहर खेत के, क्योंकि इसकी वैरायटी भी अलग अलग है, बल्कि जो बाहर की वैरायटी हो ज्यादा कामयाब हद तक
0: जी,
1: तो वो कुछ समस्या जैसे पोलिनेटर है, बी पोलिनेटर या इलेक्ट्रिक पोलिनेटर, वो भी पता होना चाहिए वो कहाँ मिलेंगे कैसे मिलेंगे, ट्रेसलिंग का सामान वो तो चलो एक बार कंपनी दे देगी, उसके बाद फिर कहाँ से क्या जाना है,
0: बिल्कुल थोड़ी बहुत है इसमें,
1: हाँ जी
0: मरम्मत के काम भी तो चल रहे हैं,
1: हाँ वो तो बात जो प्राइवेट कंपनी कर देती है मरम्मत के काम
0: जी,
1: जो भी जैसा कई बार नहीं तो कई बार आंधी तूफान आता तो फट जाता कई बार,
0: हाँ
1: तो वो तो चांस की बात है, कई बार हेल स्टॉर्म हो जाता तो ओले आ जाते,
2: ओले पड़ जाए
1: वो नुकसान हो जाता है, तो रिपेयर तो करवाना पड़ेगा समय समय,
0: कोई बीमा वगैरह की भी इसमें डॉक्टर साहब सहायता मिले
1: है इंश्योरेंस
0: जी,
1: फसल बीमा जैसे है नहीं फसल बीमा योजना,
0: हाँ बिल्कुल
1: उसमें ये भी शामिल कर रखे हैं, इसकी अलग से होती है
0: जी
1: इंश्योरेंस
0: पोली हाउस,
1: हाँ जी।
0: तो डॉक्टर साहब आपने जो भी, क्योंकि जो पोली हाउस में और एक बारी खेती करने में बहुत फर्क है इसमें
1: बिल्कुल,
0: तो जो सभी बारीकियां आपने बताई और इसमें कोई ऐसी बात रहेगी हो डॉक्टर साहब?
1: जैसे इसमें एक तो रहता है कि भाई हमने लिक्विड फर्टिलाइजर जैसे पानी के साथ देने हैं
0: जी,
1: वो पता होता है ट्रेनिंग में पता होता है भाई महीने में दो बार चलाना है,
0: हाँ
1: टपका सिंचाई
0: बिल्कुल,
1: फिर कितना खाद देना है
0: जी,
1: जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी फसल की वो खाद की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी,
0: हाँ।
1: पानी की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी
0: बिल्कुल,
1: ये होना चाहिए। दूसरा इसमें स्प्रे करने पर जैसे वेजिटेबल मल्टीप्लेक्स है
0: जी,

0: वो भी उसमें सारे लगभग तत्व होते हैं जो फसल को जरूरी होते हैं, सूक्ष्म तत्व भी जीन कारण वगैरह,
1: हाँ हाँ।
0: तो उसका स्प्रे भी महीने में दो बार स्प्रे करने पड़ते हैं उसके
1: जी।
0: तो हम खाद पानी के साथ भी ऊपर स्प्रे द्वारा भी खाद देने इसके अंदर
1: जी,
0: क्योंकि ज्यादा पैदावार लेनी है तो ज्यादा उसको पोषक तत्व भी जरूरत ज्यादा होती है
1: बिल्कुल।
0: तो हम वो हमें पानी के सिंचाई के द्वारा टपका सिंचाई भी दीजिए और पत्तों पर छिड़काव करके हम उसको ये खुराक दे सकते हैं
1: जी। ड्रिप का इस्तेमाल जरूर करें,
0: ड्रिप की जरूरी है इसके अंदर
1: जी।
0: उसका एक छोटा ट्रेनिंग भी होती है इसमें,
1: कौन
0: सी फसल में किस प्रकार का पौधा किस आकार का बनाना हमने, जैसे टमाटर में है एक ही सीधी चलेगी बेल
1: जी,
0: इसी तरह खीरे में भी एक बेल चलेगी सीधी, शिमला मिर्च में ऐसा नहीं है, उसके अंदर क्या है एक बेल के हमने चार बनानी पड़ेंगी बेल, जैसे एक को एक फुट ऊंचाई से काट दिया दो आ गई उसके अंदर
1: जी।
0: फिर उन दो को एक फुट जाने बाद ऊपर से काट दिया उनमें फिर दो दो रखनी है तो चार बेल चलेंगे उसकी शिमला मिर्च की
1: जी।
0: एक पौधे की चार बेल बनानी है इसको ट्रेनिंग बोलते हैं, ट्रेनिंग प्लांट
1: जी जी।
0: ये
1: तो डॉक्टर साहब आपने सब जानकारी दी, बसरते ये है कि किसान भाई ध्यान रखे कोई प्रशिक्षण
0: जरूर लें जी बिल्कुल, ये काम शुरू करने से पहले प्रशिक्षण जरूर लें
1: जी। तो डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी जानकारी दी और सभी किसान भाई ध्यान रखेंगे, एक तो खुल लगी खेती अलग है और पोली हाउस की खेती अलग है, तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर जगत सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: शुक्रिया।
1: तो ये थी भाइयों पोलिया उसके बारे में जानकारी और काफी समय हो गया तो संजय भाई भैया ने गीत सुनवा दी है
2: बिल्कुल भाई, कौन सा
1: पनघट फिल्म का गीत सुनवाऊंगे भैया ने, कलाकार होंगे इसमें त्रिलोकी वर्मा और दिलराज कौर।
2: अच्छा

0: तो संजय भाई ये सुना भैया नहीं तो और कुछ मौसम की जानकारी।
1: हाँ बिल्कुल भाई, मौसम की जानकारी जो चंडीगढ़ से हमने मिली है उसमें ये भी पिछले 24 घंटों में एक दो जगह पर हल्की से साधारण बारिश हुई है और आगामी आने वाले समय में हल्की से साधारण बारिश होने की संभावना है कुछ जगहों पर, और उसमें भी 20 से लेकर 23 अगस्त तक का जो समय है इसमें कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है और एक दो जगह पर कहीं अच्छी बारिश भी होने की संभावना है। तो ये तो था भाई मौसम का हाल, और एक कार्यक्रम का समय समाप्त होया। सारे बाण भाइयों ने राम राम।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार दर्शन आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है अंगदान महादान जुग जुग जियो अभियान पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है अंगदान को बढ़ावा दे रहे संस्थानों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों से जुग जुग जियो अभियान पर चर्चा और आम जन से अंगदान की अपील और अंग प्रत्यारोपण के कारण जीवन पाने वाले लोगों से बातचीत। प्रोजेक्ट्स एंड आउटरीच ऑर्गन इंडिया जुग जुग जियो अभियान को आगे बढ़ा रहा है। संस्था के प्रबंधक डॉक्टर सौरभ शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि ये अभियान कई जिंदगियों के लिए

0: की किरण पैदा करेगा।
1: दोस्तों, जुग जुग जियो ये सिर्फ एक शुभकामना नहीं बल्कि उस भावना का प्रतीक है कि हर इंसान लंबा और स्वस्थ जीवन जिए। अंगदान इसी भावना को एक नई दिशा देता है। भारत में आज भी हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें जीवन बचाने के लिए किसी न किसी अंग के प्रत्यारोपण की जरूरत होती है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि करीब 5 लाख लोगों को ऐसे मरीजों को इन अंगों की जरूरत होती है और ऐसे में किसी एक व्यक्ति का अंगदान लगभग 8 लोगों को एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी दे सका है। ऑर्गन इंडिया पिछले कई वर्षों से स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और विभिन्न संस्थानों के साथ मिलकर अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहा है। हमने हजारों लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक बनाया है और हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अंगदान की सही जानकारी पहुंचे, भ्रांतियां दूर हों और ज्यादा से ज्यादा लोग अंगदान का संकल्प लें। ऑर्गन इंडिया के साथ अभी तक करीब 1.5 लाख लोगों ने अंगदान का संकल्प लिया है।
0: डॉक्टर सौरभ शर्मा ने कहा कि वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स ने इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाया है।
1: इसी संदेश को एक प्रेरणादायक तरीके से दुनिया के सामने लाने का एक माध्यम बना वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स। इन खेलों में ट्रांसप्लांट के बाद जीवन पाने वाले लोग और जिन्होंने जिंदगी में जिंदा रहते हुए अपना कोई ऑर्गन, किडनी या लिवर अपने प्रियजन को डोनेट किया है, ऐसे लोग इन खेलों में हिस्सा लेते हैं। अभी तक ऑर्गन इंडिया ने 2 वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है और प्रथम खेल्स में 2023 में हमारे साथ करीब 32 पार्टिसिपेंट्स रहे थे और 35 मेडल्स जीत लाए थे। 2025 में सेकेंड टाइम हमारे साथ 57 भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और 63 मेडल जीत लाए। तो दोस्तों, लोग इन खेलों में हिस्सा लेते हैं और ट्रांसप्लांट के बाद दुनिया को ये बताते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद जिंदगी रुकती नहीं।
0: पीजीआई चंडीगढ़ में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के तौर पर कार्यरत डॉक्टर नवदीप बंसल ने जुग जुग जियो अभियान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अंगदान के लिए जागरूकता लाना जरूरी है।
2: अभी जो हमारे भारत सरकार के द्वारा जुग जुग जियो अभियान चलाया गया है उसके तहत हम सभी को अंगदान के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि हम डेली लगभग 300 लोगों की जिंदगी है इन अंगों की कमी से खो देते हैं। चाहे हमारे देश में 30 साल से ज्यादा हो गया है कि इस ब्रेन डेथ को लीगलाइज करा गया है और अंगदान को प्रमोट करा गया है, लेकिन फिर भी हमारे पब्लिक में, हमारे लोगों में अभी भी इसके लिए बहुत से मिथ्स हैं और मिसकंसेप्शंस हैं और भरम है, जिसकी वजह से लोग अंगदान के लिए आगे नहीं आते। हम लोग सिर्फ दिल की धड़कन को रुकने को ही डेथ मानते हैं, लेकिन जब एक इंसान की ब्रेन डेथ हो जाती है तो हम उसके बहुत से अंग हैं जो किसी दूसरे को दे सकते हैं।
0: फरीदाबाद के ESIC मेडिकल कॉलेज में नेत्र रोग विभाग में सह आचार्य डॉक्टर सांची श्रीवास्तव ने नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान की जरूरत पर बल दिया।
3: हमारे जाने के बाद भी यदि हमारी आंखें किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में रोशनी ला सकें तो इससे बड़ा मानव सेवा का कार्य क्या हो सकता है। नेत्रदान, महादान, अंगदान और नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जुग जुग जियो अभियान जैसे जागरूकता अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नेत्रदान की प्रक्रिया भी बहुत सरल है। मृत्यु के बाद परिवार को नेत्र बैंक या संबंधित स्वास्थ्य संस्था को तुरंत सूचना देनी होती है। प्रशिक्षित चिकित्सा दल द्वारा मृत व्यक्ति की आंखों से कॉर्निया सुरक्षित रूप से निकाला जाता है। इसके बाद उसकी चिकित्सीय जांच की जाती है और उपयुक्त कॉर्निया जरूरतमंद व्यक्ति को प्रत्यारोपण के लिए दिया जाता है। ये प्रक्रिया सम्मान पूर्वक की जाती है। मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में प्रकाश लाना सच्ची मानव सेवा है।
0: डॉक्टर सांची श्रीवास्तव ने अब तक अंग प्रत्यारोपण को लेकर किए गए कामों की जानकारी दी।
4: साथ ही मैं आप सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद के नेत्र बैंक 25 के आसपास लोगों ने आई डोनेशन के लिए प्लेज कर लिया है और हमारे सेंटर में 16 कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो चुके हैं।
0: देहदीची देहदान संस्था के फरीदाबाद संस्था के संयोजक राजीव गोयल ने देहदान के दिशा में संस्था द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी।
5: हम ESIC मेडिकल कॉलेज देहदान कराते रहते हैं, अब तक 65 देहदान करा चुके हैं। मैं और मेरे परिवार ने, पत्नी, बेटा, बहू सब ने देहदान का संकल्प लिया है। हमें संतोष है कि हमारे जाने के बाद भी यह देह मानवता के काम आएगी और बच्चे, मेडिकल छात्र इस पर पढ़ाई कर सकेंगे। तदीची देहदान समिति पिछले 28 वर्षों से दिल्ली और NCR में देह अंग दान कराने के लिए जागरूकता फैलाने, लोगों से जीते जी संकल्प कराने और समय आने पर उस संकल्प को पूरा कराने के लिए कार्य कर रही है। हमारे पास लगभग 21,000 संकल्पित दानकर्ता हैं। 2010 से हम 1200 से अधिक नेत्रदान, 600 के करीब देहदान, 4 अंगदान, 30 से अधिक त्वचा दान और 1 अस्थि दान करा चुके हैं।
0: हरियाणा आयु

0: आयुष विभाग में कार्यरत डॉक्टर वसुधा वत्स ने जुग जुग जियो अभियान को महत्वपूर्ण बताते हुए सभी से अंगदान का संकल्प लेने की अपील की।
1: आप सब से अंगदान महादान में जुड़ने की अपील करती हूँ। अंगदान एक ऐसा दान है जिससे हम किसी व्यक्ति को जीवन दे रहे हैं। सरकार द्वारा चलाए गए इस जुग जुग जियो अभियान में आप जिंदा रह सकते हैं, किसी की धड़कनों में, किसी की सांसों में, किसी की आंखें बनकर। ये ऐसा दान है जो उस व्यक्ति को खुशी देता है जो शायद सालों से अपनी जिंदगी की सांसें लड़ रहा है। आइए हम सब इस अभियान में जुड़ें, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को प्रेरित करें कि वो अंग दान करें।
0: समाज सेविका डॉक्टर मंजू प्रभा ने ब्रेन डेथ के बारे में जागरूकता न होने को अंग दान में अवरोध बताया।
2: मृत्यु दो प्रकार से होती है। पहली मृत्यु हार्ट फेल, जिसको हम नेचुरल डेथ कह रहे हैं, उसमें नेत्र दान, अस्थि दान, त्वचा दान, देह दान, यह हो सकता है। दूसरी ब्रेन डेड, ब्रेन डेड केस में मस्तिष्क काम करना बंद करता है, मृत्यु का वापस आना हो ही नहीं सका, दो बार डॉक्टर्स की टीम एक निश्चित समय अवधि में उस व्यक्ति को चेक करके ब्रेन डेड घोषित करती है। दिल धड़क रहा होता है इसलिए पूरे शरीर को रक्त का प्रवाह मिल रहा होता है। ऐसा व्यक्ति वेंटिलेटर पर होता है। परिवार से सहमति लेकर प्रतीक्षा में खड़े जो प्रत्यारोपण के लिए रोगी हैं, उनको अंग निकालकर ब्रेन डेड व्यक्ति के प्रत्यारोपण के लिए भेज दिए जा रहे हैं।
0: डॉक्टर मंजू प्रभा ने सभी से देह दान का संकल्प लेने की अपील की।
2: ईश्वर की इस अमूल्य धरोहर को दो मुठी राख में न परिवर्तित करें, देह दान अंग दान का संकल्प लें और परिवार में चर्चा करते रहें ताकि समय आने पर यह दान संभव हो सके। और जब यह दान संभव हो जाता है तो जो शोक सभा है वो प्रेरणा सभा में बदल जाती है।
0: आकाशवाणी समाचार ने उन लोगों से भी बातचीत की जिनको अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से नया जीवन मिला है। 25 साल पहले हृदय प्रत्यारोपण से जीवन पाने वाली प्रीति उन्हाले ने कहा,
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चुप चुप जियो अभियान के माध्यम से अंगदान के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने के इस महत्वपूर्ण प्रयास को मैं हृदय से नमन और धन्यवाद करती हूँ। मैं एक हृदय प्रत्यारोपण प्राप्त करता हूँ। मेरे हार्ट ट्रांसप्लांट को 25 वर्ष पूरे हो चुके। मेरे लिए यह केवल 25 वर्षों का सफर नहीं बल्कि अंगदान से मिले जीवन, मानवता और एक अनजान दाता के प्रति जीवन भर की कृतज्ञता की कहानी है। प्रत्यारोपण से पहले मेरा जीवन हर सांस के साथ संघर्ष और अनिश्चितता में बीता था। हर पल मन में यही डर रहता था कि पता नहीं जीवन की यात्रा कब थम जाए, लेकिन एक दाता और उसके परिवार के महान निर्णय ने मुझे जीवन का दूसरा अवसर दिया। इसलिए मैं पूरे विश्वास और विनम्रता के साथ आप सभी से अपील करती हूँ, अंग दान का संकल्प लें। आपकी एक हाँ किसी के लिए जीवन की नई उम्मीद बन सकती है, किसी परिवार की खुशियां लौटा सकती है और किसी इंसान को दोबारा जीने का अवसर दे सकती है। अंग दान केवल अंगों का दान नहीं, यह जीवन का उपहार है। आपकी एक हाँ किसी की जिंदगी में सचमुच जुग जुग जीव की नई कहानी लिख सकती है।
0: हृदय प्रत्यारोपण के बाद खुद को एक सफल खिलाड़ी साबित कर चुके राहुल कुमार प्रजापति ने अपनी कहानी साझा करते हुए जुग जुग जियो अभियान की प्रशंसा की।
4: मैं एक हृदय प्रत्यारोपण हूँ। मेरा हृदय प्रत्यारोपण 18 फरवरी 2018 को नई दिल्ली एम्स अस्पताल में सफलतापूर्वक हुआ। मेरा हृदय प्रत्यारोपण सफल होने में सबसे बड़ा योगदान उस अनजान परिवार का रहा जिन्होंने अंगदान के लिए हाँ कहा। एक ऐसा परिवार जो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए भगवान के रूप में आगे आया और अपने परिवार के सदस्य का अंग मुझे दिया। मैं हृदय प्रत्यारोपण के बाद वो सभी कार्य कर पाता हूँ जो एक स्वस्थ व्यक्ति कर पाता है। और मैं इंटरनेशनल एथलीट भी हूँ, खेलता हूँ और देश विदेश से मैं कई मेडल भी लेकर आ चुका हूँ। तो एक अंगदान के वजह से ही ये सब कुछ हो पा रहा है। तो मेरा लोगों से यही अनुरोध है कि आगे आए और अंगदान में सबसे बड़ा योगदान दें। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने अंगदान जुग जुग जियो अभियान की पहल की।
0: इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका वैशाली चौधरी और प्रस्तुति सहायक

0: नैनो यूरिया।
1: पेश है किसानों के लिए दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया, इफको नैनो यूरिया। अब खेती की लागत कम, आधा लीटर बोतल में एक बोरी यूरिया।

0: कदम।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: आकाशवाणी का यूरोप केंद्र है और ये भाई सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण संसार। और भाइयों, शुरुआत करेंगे एक बातचीत के द्वारा बच्चों को स्वस्थ रखने में माता पिता की भूमिका इस बारे में। तो सुने भाई ये बातचीत।
4: आज की हमारी बातचीत रहेगी बच्चों के स्वस्थ रखने में माता पिता की भूमिका। और इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए दो शख्सियत आज हमारे साथ बैठे हैं। आप हैं श्रीमती संगीता शर्मा, बड़ा बाजार रोहतक से आप आए हैं
5: जी सर।
4: और आप हैं अनिल कुमार, सेक्टर 2 रोहतक से आप आए हैं। दोनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में। संगीता जी, पहले आपसे बात करेंगे
5: जी,
4: क्योंकि माता का रोल सबसे बड़ा होता है भाई। वो एक सीधे शब्द में कहा जा करना है कि भाई माँ तो माँ ही होया करे।
5: बिल्कुल जी, पहली गुरु बच्चों की माई होती है।
4: गुरु भी है और भाई उसका लालन पालन सारा भी, और जन्म देना भी, कष्ट लेना भी, सारी ये बात आ गई इसमें।
5: बिल्कुल जी।
4: तो जैसे बच्चे ने जन्म ले लिया, अब उसकी संभाल जितनी माता कर सकती है पिता नहीं कर सकता, मेरा ये मानना है।
5: नहीं बिल्कुल,
4: और अनिल कुमार जी आप भी मानोगे। तो शुरुआती दौर में भाई शुरुआत कैसे होती है, माँ का मन किस तरह बच्चे की तरफ होता है कि बच्चा मेरा स्वस्थ रहे।
5: बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, माता का सबसे अहम रोल होता है
4: हाँ।
5: बच्चों के लिए तो जब बच्चा पैदा होता है ना सर, शुरुआत वहीं से ही उसकी हो जाती है कि माता जो है अपना दूध पिलाए बाहर। आजकल आपने देखा ही है बच्चों की ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है
4: हाँ।
5: कि जी नहीं, वो लेडीज जो हैं वर्किंग हैं तो बच्चे को ज्यादा दूध नहीं पिला पाती, तो उनको ऊपर की बॉटल लगा देना, ये सब चीजें कर देना, जिससे उनके स्वास्थ्य में शुरू से ही बदलाव आने शुरू हो जाते हैं।
4: बिल्कुल।
5: बट माता को ये देखना चाहिए कि बच्चे का जो ये बचपन है ना
4: हाँ।
5: ये दोबारा लौट के नहीं आना, और उसके लिए उसको जितना भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, चाहे वो वर्किंग है चाहे वो घर में है, दूध बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए ताकि वो बड़ा होके पूरा स्वास्थ्य बन सके और उसको सारी चीजें, वो सारे प्रोटीन सब कुछ वो मिले जो माता के दूध में उसको होते हैं, और बच्चा उसी चीज से स्वस्थ बनता है।
4: बिल्कुल ठीक बात है। आपने शुरुआत में जिक्र कर दिया कि शुरुआती दौर में माता का ये थोड़ा सा एक शुरुआत हुआ है
5: जी।
4: अनिल कुमार जी, देखो पिता का भी रोल बहुत हो है, मानेंगे हम इस चीज ने
6: जी।
4: रोल तो सारा हुआ करे, न्यू कैस कहा वो दिखे कम है, मानोगे ना इस बात ने
6: जी, जी, जी।
4: रोल तो सारा हुआ है। तो हम भी एक अपना मनीषा रखे है भाई, मारा बच्चा स्वस्थ रहे
6: जी,
4: वो अच्छा खूब फले फूले और उसकी चिंता पूरी जितना जीवन है उसकी, उसके बालका की न्यू मेरा कीती की करा हाँ। तो आप बताओ कि हमारा की मन रहे है एक मतलब उसके पिता के नाते।
6: पिता के नाते जी, दोनों माँ भी हैं पिताजी भी हैं, दोनों मिलजुल के ही बात बन पाती है
4: हाँ।
6: आप सोचो भी पिता अकेला कर लेगा ना या माता अकेला कर लेगी ना, लेकिन क्या है, आप ध्यान दो कि बच्चा शुरू से ही उसको ऐसे डालो कि जहाँ उसका फिजिकल वर्क भी हो, खेलने कूदने में ध्यान रहे उसका। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद भी उसके साथ खेलो, सुबह सुबह जल्दी उठ के बच्चों को घुमाने लेके गए पार्क में, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाई उनके साथ।
4: हाँ।
6: जब बच्चा खेलेगा कूदेगा एनर्जी उसकी लगेगी तो उसको भूख भी अच्छी लगेगी। फिर वो क्या होगा कि वो स्टार्टिंग से ही जो घरेलू खाना खाया जाएगा ना घर पे आके और एकदम भूख लगेगी तो घरेलू ही खाना खाया, जब पेट भरा होगा तो आपका इधर उधर पटांग खानों में उनका बिल्कुल मन नहीं करेगा जाने का। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही उनके वर्कआउट के ऊपर ध्यान दोगे, किसी ना किसी कोई ना कोई स्पोर्ट्स में आप उसको डाले रखोगे, तो एक बच्चे की एक लाइन ही अलग हो जाती है कि न्यूट्रिशन के प्रति और हेल्थ के प्रति वो पूरा अवेयर हो जाता है कि भाई मुझे ये तला बुना नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, मेरे को बस अपना घर का सिंपल खाना और पौष्टिक खाना ये खाना है।
4: बिल्कुल
6: है ना जी,
4: उसका स्वास्थ्य का ध्यान,
6: स्वास्थ्य का भी। पर उसके लिए सर जब ये बच्चे को तो बेचारे छोटे को क्या पता होता है, पर लेकिन ये आपको एक आपके पास टाइम नहीं भी है तो आपको 10 मिनट 15 मिनट सुबह जब तक उसकी खुद की आदत नहीं बन जाती कि वो खुद उठ के ना जाने लग जाए तब तक आपको ये मेहनत उसके साथ करनी पड़ेगी। लेकिन जब भी आपको हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 1 दिन जब भी टाइम मिले उसके साथ टाइम लगाओ फिजिकल वर्क में, चाहे वो जब थोड़ा बच्चा बड़ा होगा तो जिम में भी एक्सरसाइज करने में स्पोर्ट्स में उसके साथ पूरा टाइम लगाओ आप।
4: बिल्कुल अनिल कुमार जी, आपका भी परिवार है, आपने अपने हिसाब से बताया है, और संगीता जी आप भी एक माँ है, आपका परिवार है, आपके पतिदेव भी घर पे है
5: जी।
4: कई बार बच्चा थोड़ी सी भी शरारत कर देना इन माताओं का बड़ा छूट है, इसने तो न्यू कर दिया अपना हस्बैंड ने कहोगे जो मेरी बातें नहीं मानता, मन तो तंग करे है न्यू करे है, लेकिन फिर भी एक अंदरूनी इतना प्यार और कोई उसने धमका दे तो बड़ा छूट है,
5: वो सहन नहीं होता।
4: तो एक बार उसका थोड़ा सा व्याख्यान करो कि कुछ सही हूं।
5: सर वो भी ना एक प्यार का ही पार्ट है। हाँ। माँ के उसको वो खुशी होती है अगर बच्चा शरारत कर रहा है कुछ भी कर रहा है अंदर से वो बहुत खुश है।
4: हाँ।
5: लेकिन वो दूसरे काम पे ध्यान नहीं दे पा रही है तो कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि इसको कोई दूसरा संभाल ले, इसको इन चीजों से चोट ना लग जाए, ये कोई ऐसी चीज ऐसा कार्य ना कर दे जो इसके लिए नुकसानदायक हो।
4: बिल्कुल।
5: इसलिए वो दूसरे का ध्यान केंद्रित करती है कि बताती है कि आप ध्यान रखो ये मुझे परेशान कर रहा है, मैं अपना दूसरा कार्य कंप्लीट कर लूं इतने। तो ये उसका मेन वो रहता है, हालांकि वो खुश बहुत है कि मेरा बच्चा जो है ये तोड़ फोड़ ये कर रहा है तो जरूर इंजीनियर बनेगा, उसके माइंड में पहले ही आ जाती है ये चीजें।
4: बिल्कुल बिल्कुल, और माँ के मन में आगे ना तो वो बनेगा भी।
5: बिल्कुल।
4: और ये सोदा माता भी कृष्ण की पिटाई करा करती।
5: हाँ।
4: और अंदर अंदर मन में खुश हुआ करती, मतलब देख मेरा लल्ला कितना अच्छा है।
5: बिल्कुल जी।
4: वो भावना रहा है।
5: हाँ।
4: चलो ये तो एक बात थी बच्चे की शुरुआती दौर की, फिर उसका स्वास्थ्य पूरी उम्र का एक बन ध्यान करे है कि यु खूब अच्छा हष्टपुष्ट इंसान बने, तो उसके लिए कुछ ऐसी चीजें ध्यान में रखनी हो है कि ये चीज मेरा बच्चा इस उम्र में खाए, तो आपका की मन रहे कि मेरा बालक मान ले 2 साल का तो मैं इसने की खवा दूं, 5 साल का होगा तो इसने की खवाऊं फिर।
5: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, उम्र के हिसाब से जो उसको जरूरत है उसके हिसाब से ही उसको खाना पीना देना चाहिए। और जैसे अनिल जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि आजकल पेरेंट्स के पास भी उतना टाइम नहीं है, बट बच्चों को ना घुमाना फिराना जरूर चाहिए
4: जी।
5: बच्चा घूमता फिरता है, भूख लगती है, घर पे आके वो अच्छे से खाना खाता है तो बाहर का लालच खत्म हो जाता है। नहीं तो घर पे उसने कुछ खाया नहीं, घर पे भूख नहीं थी, बाहर गया अगर पॉकेट में 2 पैसे हैं तो वो देखेगा ओहो ये खड़ा है यहाँ चौमिन वाला, ये खा लेता हूँ वो खा लेता हूँ, तो उससे क्या है ये चीजें नुकसान करती है
4: जी।
5: इसलिए घर पे निकलने से पहले ही माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो खाली पेट तो बाहर ना जाए।
4: बिल्कुल।
5: उसको अच्छा जो घर में बना हुआ खाना है वही खिलाएं, सब्जियां हरी सब्जियां जो आजकल बच्चे शायद पसंद नहीं करते,
4: शायद पसंद नहीं।
5: हाँ, वो चीजें जो है वो उसको खिलाने पिलाने की आदत डालनी चाहिए, और बचपन से इन चीजों की आदत पड़ जाती है तो बड़े तक उसको वो ध्यान में रहती है और उसका मन बना रहता है कि ये चीजें भी खानी बहुत जरूरी है स्वास्थ्य में।
4: बिल्कुल। बच्चे स्कूल में जाते हैं सुबह सुबह, कुछ बच्चे तो थोड़ा बहुत खा के जाते हैं, वही उनकी माता थोड़ा सा से दबाव डाल के खिला देती हैं या फिर उनका अपना ही मन होता है, और कुछ बच्चे वैसे ही चले जाते हैं बगैर खाए
5: जी।
4: वहां पे जाके फिर उनके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, ऐसी कुछ शिकायतें मिलती हैं,
5: मिल जाती हैं। बिल्कुल।
4: तो आपका क्या कहना है, उनकी जो माताएं हैं वो सुन रही हैं तो क्या कहना चाहोगे?
5: हाँ, मैं यही देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही कहा कि बच्चों को सुबह टाइम से उठाओ। आजकल जल्दबाजी इतनी होती है कि 8 बजे अगर बच्चे ने जाना है तो उसको 7:30 बजे उठाएंगे
4: जी।
5: ना बच्चे के पास टाइम है ना ही माता के पास टाइम है कि उसको सारी उसकी जितनी भी दैनिकचर्या की जो भी क्रियाएं हैं मॉर्निंग की वो करा सके। उसके टाइम से उठाओ, उसको ब्रश व्रश जो कराना है उसके पास इतना टाइम हो कि वो घूम फिर भी ले
4: जी।
5: और कुछ खाना पीना जो भी उसको है, या उसको कह के कि बेटा खाली पेट नहीं जाना है या बेटी खाली पेट नहीं जाना है, आपने ये थोड़ा सा दूध पी के जरूर जाना है और उसके साथ ये खा के जाना है
4: जी,
5: तो उसके लिए ना टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है।
4: बिल्कुल ठीक बात है अनिल जी। बच्चा बढ़ता है
6: जी,
4: दिखे के शरीर बढ़ने लग रहा है और फिर तुलना करी जावे है पास पड़ोस के बच्चों से, भाई इसका बच्चा भी 7 साल का हो गया, मेरा भी 7 साल का हो गया, लेकिन मेरा बच्चा कमजोर है, तो ये चिंता बन जाए।

0: तो फिर उसमें आप ध्यान करो कि कुछ मारा दिमाग काम करो उस टाइम पे, भाई मारा भी बच्चा स्वस्थ हो, चलो वो तो बच्चा स्वस्थ अच्छी बात है, कुछ होना चाहिए, लेकिन मारा भी बच्चा स्वस्थ हो तो की कामना करी जा।
1: कामना ये है जी, एक तो दूसरे के साथ आप कंपेयर मत करो।
0: अच्छा।
1: आप बच्चा देखो बिल्कुल कोई उसको ढीला ही है, बिल्कुल एक्टिव नहीं है, तो ये चिंता का विषय है, तब आप डॉक्टर को दिखाओ।
0: अच्छा।
1: अब मेरी गुड़िया खुद की जी, एक तो अंडरवेट हुई वो, ठीक है जी, और बच्चों से वो, लेकिन वो एक्टिव ही थे नहीं, पूछो मत। तो हम भी जाते हैं कि डॉक्टर के पास जाए, तो मैं डॉक्टर साहब देखो एक बार ये क्या दिक्कत है इसको, वो शरारतें ही इतनी करे, बातें ही इतनी करे, और डॉक्टर का इंटरव्यू ले ले जाके।
0: अच्छा,
1: तो बोले जी अब ये बच्चे को बताओ मैं क्या टोने की दूंगी, इतनी तो एक्टिव है, इतनी बातें कर, इतनी इंटेलिजेंट है। तो मेरा मानना है कि आप उसके शरीर को मत देखो, इसका वेट कितना है कितना नहीं है। अब वो मेरे ख्याल से मेरी गुड़िया 4-5, 5-6 साल तक ऐसी थी हल्की हल्की से
0: जी।
1: और लेकिन अब जब से वो उसने पार्क में, पहले साइकिल वाइकिल चला लेती थी, पर लेकिन जब से उसने वर्कआउट स्टार्ट किया, खेलना कूदना बच्चों के साथ, ये खेल वो खेल, खूब खेलना कूदना, मतलब ऐसे लड़कों को पीछे छोड़ देती थी।
0: सामान्य हो गई,
1: सामान्य हो गया। और सामान्य कैसे, वो आते ही मम्मी खाना दे दो, मतलब इतना नाश्ते में मैं नहीं खा पा रहा होता था, वो 3-3 4-4 पौंठे आके खा लेती थी। तो वो जो हम जो पिछला उस जो हम देखते भाई ये तो कमजोर बच्चा है, वो उसने वो सारा रिकवर कर लिया
0: जी, जी।
1: तो उसको देखो कि आपका बच्चा एक्टिव कितना है, और उसको जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जैसे कोई भी गेम है, ये टचवुड के भाई मेरी गुड़िया हर चीज में, कब वो पढ़ाई में भी, खेल कूद में भी, स्विमिंग में भी, राइडिंग में भी, डांस में, हर चीज में वो एक्टिव रहती थी। तो उसका दिमाग हमेशा फिजिकल वर्क कुछ ना कुछ करती रहती थी, तो उसको भूख अपने आप लगती। अब एक्टिव रहोगे तो उसके बाद फिर आप खाना तो अपने शरीर को अपने आप लगेगा।
0: बिल्कुल ठीक बात, सही एक सलाह दी है जो,
1: पर एक एक किसी के साथ कंपेयर बिल्कुल मत करो।
0: हाँ, तुलना ना करो,
2: तुलना नहीं होनी चाहिए
0: बिल्कुल भी। देखो ना
1: भाई आप
0: बच्चा ठीक है, वो खुश हो, उसने भी देख के भाई ये फल फूल, ये
1: अभी कई देख रहा होता है जी, वो कहते हैं जी ये देखो इसने 3 ट्यूशन लगाई हुई थी, इसके 97% आए हैं, और हमारी गुड़िया खेल कूद भी होती थी, सारे काम कर भी होती थी, उसके 93-94 वैसे आ जाते थे बिना ट्यूशन के। तो आप उसको अब वो आप कॉम्प्लेक्स लेके बैठ जाओ, उसके 97 आए, 94 आए।
0: हाँ।
1: वो 10 चीजें जो तुम्हारे बच्चे में पॉजिटिव है।
0: हाँ।
1: वो तो उसका तो 1% भी नहीं है उसके अंदर।
0: ठीक बात, बिल्कुल।
1: तो आप उसके साथ कंपेयर मत करो किसी के साथ, क्योंकि लाइफ का क्या है जी, हर एक आदमी का, हर बच्चे का क्वेश्चन पेपर अलग है, आप एक दूसरे को कॉपी मत करो।
0: ठीक बात है, बिल्कुल। अंत में जाकर परिणाम क्या आना है वो तो
2: वो मैटर करता है।
1: हमने कभी बच्चों को हमने कभी ये नहीं कहा तो ये खा ले वो खा ले, पर कोशिश यही रहती थी कि डेली बच्चे को कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन वाला अलग अलग ढंग से बना के दो, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, वो रोज वही एक परौठा बना दिया चार दिन, वो बच्चा क्या खाएगा। अलग अलग वैरायटी वहां बच्चों के साथ देख रहा होता है।
0: ठीक बात है। संगीता जी
2: जी सर,
0: जैसे विज्ञापन आए हैं,
2: हां जी,
0: बच्चा दिख है, हम नाम तो नहीं लेंगे किसी खान पीने की चीज का, भाई ईस्ट ऑस्ट पुष्ट हो जाता है बच्चा, वो एलडी थोड़ा सा बच्चा दिखा दिया, कोई तेज स्पीड का बच्चा दिखा दिया, बच्चा उसने देख के वही कोशिश करे है, लेकिन उसकी माता को तो असली में पता है कि ये फायदेमंद नहीं है ये चीजें
2: जी।
0: तो ऐसा अगर मान ले बच्चा करे है तो उसको फिर समझाना भी हमने,
2: बिल्कुल हमने ही समझाना है सर।
0: तो क्या फिर उसका इलाज करे
2: सर? देखो अभी अनिल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमने ये देखना है कि बच्चे के शरीर में कोई विकार नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, एक्टिव है, सब कुछ है, तो किस लिए इन विज्ञापनों में जाना है? और माता बहुत अच्छे से समझा सकती है बेटे को
0: जी।
2: या अपने बच्चे को, बेटी को, किसी को भी, कि देखो बेटा आपके शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो ये टाइम के साथ आप अपने आप ऐसे हो जाओगे, आप अपने शरीर पे वैसे ध्यान दो, आप खाओ पियो घूमो फिरो, और जो आपके काम करने का है, पढ़ाई लिखाई है, उस पर ध्यान देते रहो। एक एज पे आके आप अपने आप ही जो आपको इसमें दिख रहा है वो शरीर अपने आप बन जाएगा, बस आपने बाहर की ये उल्टी सीधे काम कोई नहीं करने।
0: हाँ।
2: क्योंकि शरीर में कोई भी चीज नुकसान ज्यादा करती है और फायदा कुछ नहीं करती,
0: फायदा कम करती है।
2: बिल्कुल,
0: बिल्कुल जी। कई बार खाना आपने बना दिया परिवार के लिए, अपने हिसाब से सोच के बना दिया
2: जी,
0: लेकिन बच्चा जिद कर ले है, मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगा, मम्मी मैं ये खाऊंगा, तो फिर क्या प्रतिक्रिया रहे आपकी?
2: देखो प्रतिक्रिया रहती तो यही है कि जो बनेगा वही खाना पड़ेगा, तेरे लिए अलग बनाऊं, उसके लिए अलग बनाऊं, और क्या काम नहीं मेरे पास। लेकिन मन ये कहता है कि बच्चा भूखा ना रह जाए।
0: हाँ।
2: फिर थोड़ी देर में बच्चे से प्यार से पूछा जाता है, अच्छा बता क्या खाएगा, वो बना देती हूँ।
0: कई बार घर में थोड़ी सी कहासुनी भी हो जाए इस बात के बारे में, इसका तो कुछ नहीं, इसने बिगाड़ेगी, ये करेगी, आ जाती होगी,
2: बिल्कुल आती है,
0: लेकिन फिर भी वो माँ का जो है ना, कहीं
2: भूखा नहीं सुलाया जाता जी, सीधी बात ये है
1: सर। इसी उसमें क्या होता था, संडे को जैसे भाई छुट्टी होती थी, घर पे बैठे हैं, तो गुड़िया हमारी पहले वो मम्मी कल मूली के परांठे बना दे, ठीक है जी, या अगर वो नहीं बता पा रही तो

0: पूछ लो कि बेटा कौन से परोठे खाने, क्या खाना है तुमने,
1: बिल्कुल
0: ठीक है जी। हाँ। तो वो उसमें क्या है, बच्चे को चॉइस है कि भाई तुमने ही तो कहा था, आप वो कैसे आना कहानी करेगा।
1: हाँ।
0: तो आप उसी से पूछ लो भाई कौन सी सब्जी खानी है, तुमने ये वाला खाना ये खाना, तो पहले ही दो ऑप्शन दे दो उसको,
1: बिल्कुल
0: उसको चॉइस के भाई, अब वो मना नहीं कर सकता कि भाई तूने ही कहा था ये वाली बना दो। हाँ। या मेरे को ये वाले परोठे खाने हैं, मैंने ये खाना है, ठीक है जी,
1: बिल्कुल।
0: तो आप स्टार्टिंग से ही उसको भाई अवेयर करोगे, तो भाई जैसे अब बच्चा परोठे के साथ, अब सोचे भाई तला हुआ है, लेकिन घर का नॉर्मल खाना होता है तो वो परोठे भी नहीं ज्यादा तंग
1: किए थे,
0: ठीक है जी। तो आप उसी में उसको दो चार चीजें वैरायटी दोगे तो वो बच्चा खुश रहेगा बाहर, और साथ में उसको लेके क्या जाना है बेटा, खा तो ये लेके क्या जाएगा स्कूल में, तो उसी से पूछ के आप उसी के पसंद का दो,
1: ठीक।
2: और सर मैं इसमें एक छोटा सा ऐड ऑन और चाहूंगी करना, इसमें जो फैमिलीज है ना, ज्वाइंट फैमिलीज, उनका बड़ा रोल है। अब मैं हूँ, मैं ज्वाइंट फैमिली में हूँ, मेरे हस्बैंड तीन भाई हैं, सब लोग साथ में, एक किचन है, तो बच्चे में ना आपस में ही वो बन जाता है, अच्छा बड़ा भाई ये खा रहा है मैं भी इसके साथ यही खाता हूँ, तो वो जो छोटी छोटी वो होती है ना कि मुझे ये खाना है मुझे, वो कहीं ना कहीं खत्म होके ना सारे एकजुट बैठ के खाते हैं।
1: हाँ।
2: तो उसमें जिसको नहीं भी पसंद है ना, वो भी सब कुछ मिक्स हो जाता है।
1: बिल्कुल ठीक बात है। देखो बेटी माता के साथ जुड़ा होता है, वो बड़ी भी हो जाएगी तो भी वो अपनी सारी बातें डिस्कस करेगी।
2: हाँ जी।
1: तो मेरा ये मानना है कि बेटा भी माँ को ही ज्यादा बात बता सकता है, अपने पिताजी से वो थोड़ा सा डरेगा।
2: हाँ जी।
1: तो वो कोई ऐसी बात बताता है कि भाई थोड़ा सा अमीर मान के चले कि उसकी मम्मी को अच्छी नहीं लगी, तो फिर इसमें क्या कुछ उसकी मम्मी सोचे, उसके पिताजी को वो बात भेजे या फिर अपने लेवल तक उसने सुर जावे, की कुछ विचार है?
2: देखो सर ये तो बात पे डिपेंड करता है। बात अगर ऐसी है कि माता ही उसको सॉल्व कर सकती है और वो आगे जाके ना बेटे पे नुकसान दे।
1: हाँ।
2: और ना ही परिवार पे।
1: हाँ।
2: और उसके समझाने से उसका बच्चा, बेटी या बेटा जो भी है, वो मान जाते हैं उस चीज को जो उसको, उसके लिए भी बेकार है और उसकी परिवार के लिए भी बेकार है, उसको छोड़ देते हैं, तब तो माता सोच सकती है, क्योंकि देखो पिता पे और भी बहुत जिम्मेवारियां होती है, बाहर की भी, समाज की, बहुत चीजें होती हैं। और पिता का थोड़ा होता भी ये है कि अगर उसको बात पता चले तो वो एकदम एक्शन मोड में भी आ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो माता को यही देखना चाहिए कि अगर बात बहुत ज्यादा जरूरी है तो एक तरीके से अपने पति से
1: करें। हाँ। और बच्चे के मन में ये ध्यान में जमाए रखे कि तेरे पापा को पता लग गया तो फिर देख लेना
2: क्या होगा,
1: तो वो
2: डर जो है ना वो जरूरी है,
1: वो जरूरी है।
2: हाँ जी।
1: तो अब वापिस आते हैं फिर स्वास्थ्य की बात।
2: हाँ जी।
1: हर समय ये रहता है कि भाई मेरा बच्चा अष्टपुष्ट रहे, कोई दिक्कत आ जाती है बच्चे के साथ तो बड़ी चिंता हो जाती है, और चिंता तो देखो पूरे परिवार को होती है,
2: बिल्कुल जी।
1: लेकिन माता को ज्यादा होती है।
2: हाँ जी।
1: फिर उसको खान पान ऐसा क्या दिया जाए कि भाई आगे बच्चे को वो दिक्कत ना आए, एक मिश्रित खान पान की बात करेंगे जो पारिवारिक हमारे मुख्य घरों में जो बनते हैं, थोड़ा सा खान पान का जिक्र करो।
2: हाँ जी। खान पान के बारे में देखो सर, घर पे जो सब्जियां, हरी सब्जियां जो मैंने पहले भी बताई थी, घर की बनी हुई सब्जियां, बाहर का तला फला जो है वो थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य पे वो बुरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए घर पे जो सब्जी बनी है उसी से रोटी और वो सब चीज खाई जाए, सैलेड, फ्रूट्स, ये सब चीजें जो है इन पे ध्यान देना चाहिए।
0: ज्यादातर सीजनल चीजों पे बच्चों का ध्यान रखो।
1: अच्छा।
0: जैसे आजकल आम का सीजन है, खरबूजे का, तरबूज का, तो जैसे ककड़ी है, खीरा, कितनी चीजें आती है जी, उनका प्रॉपर ढंग से अपना काट पीट के दोनों बिठाते रहे। अच्छा, मतलब एक ही ना, एक ही रिपीट ना हो, कभी तरबूज दे दिया, कभी खरबूजा दे दिया, कभी सैलेड दे दिया, उसमें वो थोड़ा चटपटा नींबू नींबू डाल के, मसाला डाल के, वो अपने आप ही जी करेगा खाने का जी।
1: अनिल जी,
0: जी
1: बच्चे सीधा खाते तो नहीं, जूस बनवाने की कोशिश करें,
0: जूस भी ला दो सर, उसको छानो मत।
1: हाँ।
0: क्योंकि वो फाइबर ऐसे कैसे चला जाएगा साथ।
1: हाँ।
0: में ठीक।
1: अच्छा।
0: है वो एक अगर आप फाइबर जैसे बाजारों में मिलता है, वो छान छून के दे देते हैं, तो फाइबर तो सारा निकाल ही दिया। जूस वो छना हुआ जूस उनके लिए होता था, जैसे जो बुजुर्ग हो गए 70+80+ जो बेचारे डाइजेस्ट नहीं कर पाते फाइबर को, वो था उनके लिए। इन्होंने तो फैशन बना लिया लोगों ने। नहीं, आप उसको फाइबर को छनवाओ मत, जूस को जैसा भी आता है एज इट इज उसको लो और वो पियो, तो वो एक ही बात है, खाना और पीना एक ही बात हो जाएगी फिर।
1: बिल्कुल। और खान पान में संगीता जी माता का रोल है, क्योंकि
2: हाँ
1: देना तो उसने है।
2: बिल्कुल।
1: अब परिवार के लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि आज बना
2: क्या है,
1: वो जो बन के आ जावा है सामने जब पता चल है, तो बच्चे के लिए एक विशेष डाइट का आप जिक्र कर दो। देखो टाइम भी बहुत हो गया है, काफी देर बात करते करते तो इस बात ने थोड़ा सा अंतिम छोर की तरफ लेकर चलेंगे, तो ऐसा कोई डाइट का हिसाब बताओ कि भाई एक बच्चा स्वस्थ रहे, उससे उसको कोई दिक्कत ना हो और बाहर की चीजों का उसका जी ना करे खाने।
2: सर उसके लिए एक तो नाश्ता बहुत जरूरी है। आजकल बच्चों का जो हो गया है ना रूटीन, बच्चे नाश्ते को ड्रॉप कर देते हैं। बच्चे सोचते हैं कि मम्मी पैक कर दो, मैं स्कूल में खा लूंगा। लेकिन माता को ना

0: देखना चाहिए कि बिना ब्रेकफास्ट के तो घर से कोई ना जाए, चाहे वो कोई भी है, और बच्चों के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रात का जितना भी टाइम निकला है वो सारा डाइजेस्ट हो चुका उसका, और उसको मॉर्निंग में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। दूध दें, दूध बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, दूध और उसके साथ कुछ भी आप दे सकते हो, चाहे नॉर्मल रोटी सब्जी दे दो साथ में, नाश्ता करा के जरूर भेजें। और फिर दोपहर का खाना, मतलब एक टाइम टेबल बना होना चाहिए, दोपहर के टाइम पे दोपहर का खाना और शाम के टाइम पे शाम का खाना, तो एक जो रूटीन होता है ना वो हर पर्सन के लिए बहुत जरूरी होता है।
1: बिल्कुल ठीक बात है। और बेटा और बेटी में थोड़ा सा फर्क पहले था, जेकर हम बार बार करें इस चीज का, ईद तो नहीं रहा,
0: बिल्कुल भी नहीं है सर।
1: लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि वे कहीं किसी कोने में ये बात किसी भाई के दिमाग में रह रही हो, किसी माता पिता के ऐसा मन में हो, तो वो इस बात को अब निकाल दे। अब बेटियां किसी से कम नहीं है, वो काम भी कर रही है, आगे भी हर क्षेत्र में जा रही है, बेटे भी कर रहे हैं, वो भी क्षेत्र में बढ़िया चुन रहे हैं अपना, लेकिन खान पान में कोई किसी चीज की कमी ना रहे, दोनों को बराबर मिले, बराबर का परिवार जो उसको प्यार दे रहा है वो भी बराबर का मिले, और उनके स्वास्थ्य की जो चिंता करनी है दोनों की बराबर हो।
0: बिल्कुल बराबर होती भी है सर। अब तो देखो ये भेदभाव वैसे खत्म हो गया है जहां तक मुझे लगता है, पर फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो देखिए,
1: क्योंकि आप भी बेटी हो, कुछ बताओ।
0: बिल्कुल जी। नहीं देखो, बेटी को मुझे तो ये लगता है, अगर मैं अपना कंपैरिजन लूं तो, कि बेटी को सबसे ज्यादा प्यार मिलता है, तो बेटी और बेटे में अब कोई फर्क रह नहीं गया है बिल्कुल भी। बेटियां मेरे ख्याल से माता पिता के लिए ज्यादा सहयोगी हो गई हैं। एक फोन पे बेटी चाहे कितनी दूर भी हो सबसे पहले खड़ी मिलेगी आपको।
1: बिल्कुल ठीक बात है। चलो, इनका जो दिमाग के ये अच्छी एक सोच है बेटियों की, उसका हम हौसला बढ़ाएं इस चीज में।
0: जी सर।
1: और बच्चे हमारे स्वस्थ रहे, कुछ बातें आपने ध्यान में दिलवाई हैं, भाई खाना घर का बना हो, समय पे खाना मिल जाए, सारी चीजें उनकी चिंता करी जाओ, चाहे बच्चा कितना बड़ा हो जाए, माता पिता के लिए तो बच्चा
0: हमेशा ही रहता है,
1: चिंता रहा है।
0: बिल्कुल सर।
1: आप दोनों आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, श्रीमती संगीता शर्मा जी और अनिल कुमार जी, बहुत बढ़िया बढ़िया आपने जिक्र करा इन बातों का कि भाई बच्चा हमारा स्वस्थ किस तरीके तरह इसके है, और मारे आपने किए कुछ करते हुए फर्ज हैं, उन पाम कैसे खड़े उतर सके हैं, इस सब जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: तो ये सुनी भयान बातचीत, और समय हो रहा भाई गीत रागनी का, तो भयान रागनी सुनवाऊंगे बलवंत वत्स और साथियों की गाई हुई।
3: ए सुती उठ के

हाथ जोड़ के न्यू बुद्ध पिया कदसी कहे मैं नाटी इस नाप तोल के।

ये तो सुनी बहन रागनी। और इब फिलहाल का भाई वो थोड़ा हा मौसम का अगर ध्यान रखें भाई, मच्छर माखी का टाइम है तो थोड़ा अपना भाई वो इस टाइम के ऊपर थोड़ा कुछ डेंगू मलेरिया से बचाव का भाई प्रबंध हम जरूर करें, क्योंकि माखी मच्छर में थोड़ा अपना कोई मिट्टी का तेल है, कोई भाई अपनी ऐसी टेबलेट आओ हैं जो अपनी क्लोरीन वगैरह की पानी ने साफ करें हैं, आसपास में साफ सफाई का प्रबंध रखें। और इस टाइम में थोड़ा बरसात का टाइम में

0: बिल्कुल हम उबाल के पानी पीवें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो आज भाइयों इतना ही, देख लें घड़ी का नहीं, ग्रामीण संसार कार्यक्रम का समय ही पर समाप्त चल लेंगे। सारे बण भाइयों ने राम राम।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवाते हैं अभिजीत की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने, और फिल्म है यस बॉस।

यस बॉस फिल्म से सुना अभी आपने ये गीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत, फिल्म करीब से। इस गीत को गाया है कुमार शानू और संजीवनी ने। राहत इंदौरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाएंगे फिल्म धुरंधर से। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह और अरमान खान ने। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है शाश्वत सचदेव ने।

0: डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

फिल्म दुश्मन से सुना भी आपने ये गीत लता मंगेशकर और कुमार शानू की आवाज में, शब्द रचना दिए आनंद बख्शी की और संगीत दिया उत्तम सिंह ने। श्रोताओं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल का क्या कसूर से, आवाजें हैं आशा भोसले और कुमार शानू की। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

मिश्रा की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना फिल्म हमारी अधूरी कहानी से। इस गीत को लिखा है कुणाल वर्मा ने और संगीत दिया है एमी मिश्रा ने। कार्यक्रम में आखिरी गीत सुनते हैं फिल्म पापा कहते हैं से। इस गीत को गाया है उदित नारायण ने, लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत को यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत में हमारी आज की कलाकार हैं आस्था वर्मा। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में ये पहला गीत।

आज के कार्यक्रम में आपने सुने आस्था वर्मा की आवाज़ में कुछ गीत। इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत को यहीं समेटते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 8:45 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार और ठीक 9 अंग्रेजी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है, ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश की अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
2: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि 3री याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आमतौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा

0: सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
1: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दो तरीके अपनाए गए हैं, मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
2: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
3: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड इसके लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निकलता है पानी, उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने का टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
0: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाति संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार

0: निकाय ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुवर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कर्शियंग।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: एमिस्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet decides to set up a bench of Jammu and Kashmir High Court at Ladakh, announces Home Minister Amit Shah. Supreme Court forms 5-member panel to investigate violence during student protest across the country. Jharkhand High Court stays state government's decision to cancel 11th to 13th JPSC and food safety officer examinations. Government allows duty-free imports of 10 lakh tons of raw sugar until 31st of October. Centre unveils Delhi Master Plan 2047 to transform national capital into inclusive and world-class city. Bangladesh Nationalist Party leader Mirza Fakhrul Islam Alamgir elected as country's 23rd president. And in hockey, Indian women's team qualifies for second round after a goalless draw with England in Pool D match of World Cup in the Netherlands. And now the news in detail. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. Union Home Minister Amit Shah today announced this, sharing a social media post. Mr. Shah said that the decision will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required to avail themselves of the legal services they are entitled to. He added that government is fully committed to the all-round development of Ladakh and to ensure constitutional safeguards. The Supreme Court has constituted a 5-member high-powered inquiry committee headed by former top court judge Justice R. Subhash Reddy to independently examine allegations of violence during the student demonstrations held at Jantar Mantar in New Delhi and other locations across the country last month, a report
4: The high-powered inquiry committee has been asked to examine both the allegations of excessive and disproportionate use of force by police and paramilitary.

आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आप तो ऐसे ना थे से कुछ चुनिंदा गीत। आइए सुनते हैं अगला गीत। आशा भोंसले, मनहार उदास और सुरेश वादेकर की आवाज़ में। शब्द रचना है निधा फाजली की और संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक फिल्म से यहीं समाप्त होता है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे कंट्री वाइड और ठीक 9:45 पर इनसाइटर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में जल सुरक्षा के प्रौद्योगिकी और नवाचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद डॉक्टर अरविंद कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: अरविंद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: अरविंद जी, भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण और कृषि क्षेत्र में पानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और जल सुरक्षा हमारे लिए एक बड़ी चुनौती भी है और स्वच्छ जल होना एक समस्या भी कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं। तो आपके अनुसार आने वाले जो वर्ष हैं, एक या दो दशक की हम बात करते हैं, तो भारत की राष्ट्रीय जल रणनीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता किस तरह की होनी चाहिए?
2: मेरी दृष्टि में अगले 10 से 20 साल के वर्षों के बीच भारत की राष्ट्रीय जल रणनीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी कृषि क्षेत्र में मांग पक्ष प्रबंधन, सिस्कर सिंचाई दक्षता में सुधार। कारण स्पष्ट है, भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल दोहन करता है और कुल जल खपत का लगभग 80% कृषि में होता है, जिसका अधिकांश भाग परंपरागत बाढ़ सिंचाई में नष्ट हो जाता है। पंजाब हरियाणा राज्यों में धान जैसी जल गहन फसलें उगाना भूजल स्तर को खतरनाक स्थिति से गिरा रहा है। आपूर्ति की समस्या में कहीं अधिक रचनात्मक असंतुलन का मामला है। इसलिए ड्रिप इरिगेशन को प्रोत्साहन है, फसल विविधीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति में सुधार तथा भूजल दोहन का पर सख्त विनियमन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ ही शहरी औद्योगिक क्षेत्र में अवशिष्ट पुनर्चक्रण यानी कि जो दोबारा यूज करना होता पानी को, वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाना, अंतर राज्य नदी जल विवादों के लिए एक सशस्त्र कानूनी रूप से बाध्यकारी संस्थागत ढांचे की आवश्यक आपूर्ति को बढ़ाने के बजाय मांग को तर्कसंगत बनाना ही दीर्घकालीन जल सुरक्षा की वास्तविक कुंजी है।
1: अरविंद जी, भारत के कई हिस्सों में देखा गया है कि भूजल का स्तर गिरा है और कृषि और जो घरेलू जरूरतों के लिए जल की आवश्यकता होती है, वो जाहिर सी बात है कि भूजल पर भी उस

0: निर्भरता हमारी अधिकतर रहती है। तो क्या भूजल पुनर्भरण कार्यक्रम पर्याप्त है या फिर हमें भूजल के दोहन और खपत को नियंत्रित करने के लिए भी नीतिगत बदलाव करने आवश्यक है?
1: नहीं, केवल भूजल पुनर्भरण कार्यक्रम पर्याप्त नहीं है। पुनर्भरण आपूर्ति पक्ष का समाधान नहीं है, जबकि असली समस्या मांग पक्ष के अनियंत्रित दोहन में निहित है। जब तक निकासी की दर पुनर्भरण की दर से अधिक बनी रहेगी, कोई भी वाटरस्टेट कार्यक्रम दीर्घकालीन संतुलन नहीं ला सकता। इसलिए बड़े नीतिगत बदलाव अनिवार्य हैं। इसका केंद्र बिंदु होना चाहिए भौगोलिक परिस्थिति आधारित कृषि, यानी जियोग्राफी बेस्ड एग्रीकल्चर। पंजाब, हरियाणा, आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में धान जैसी गहन फसल उगाना पारिस्थितिक दृष्टि से भूल है, जबकि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद नीति द्वारा कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित होती रहनी चाहिए। अतः आवश्यक तीन स्तर पर बदलाव होना चाहिए। पहला, फसल विविधीकरण, धान से मक्का, बाजरा, दलहन, तिलहन जैसी कम जल गहन फसलों को बढ़ाना, विशेषकर मोटे अनाज मिलेट्स को बढ़ावा देना, जल दक्षता भी है और पोषण की दृष्टि से भी लाभकारी है। दूसरा, क्षेत्र विशिष्ट फसल योजना, एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग, यानी हर क्षेत्र की मिट्टी जल उपलब्धता के अनुसार फसल पैटर्न तय करना, न कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समान नीति थोपना। तीसरा, मूल्य और सब्सिडी नीति में सुधार, मुफ्त एवं अत्यंत सस्ती बिजली जैसी व्यवस्थाएं जो भूजल दोहन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करती है, उन्हें फसल विशिष्ट प्रोत्साहन ढांचे से बदलना चाहिए। पुनर्वरण आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं। असली समाधान ये कि हम प्रकृति के विरुद्ध नहीं बल्कि उसके अनुरूप खेती करें।
0: अरविंद जी, भारत की हम बात करें या फिर कहीं दुनिया भर के किसी भी हिस्से की बात करते हैं, तो पाइपलाइनों में रिसाव होना और नलों से जो पानी बर्बाद होता है, ये एक बड़ी समस्या है। इससे जल की बहुत हानि होती है। जल वितरण का जो हमारा एक ढांचा है, उसमें भी कहीं ना कहीं रिसाव होने के कारण बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारा अच्छा पानी बर्बाद होता है। तो किसी भी नए जल स्रोत को विकसित करना अधिक जरूरी हो जाता है, या फिर जो हमारी पहले से ही मौजूदा वितरण दक्षता है उसे और हम बेहतर कर सकते हैं, किस तरह चीज को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए?
1: नए जल स्रोत विकसित करने से पहले मौजूदा वितरण दक्षता सुधारना कहीं अधिक तर्कसंगत और लागत प्रभावी प्राथमिकता है। तर्क सीधा है, जब घर पहुंचने से पहले आधा पानी बर्बाद हो रहा हो तो नए स्रोत जोड़ना केवल उसी टपकते बर्तन में पानी भरने जैसा है। नवीनतम आंकड़े इस समस्या की गंभीर समस्या को स्पष्ट करते हैं कि भारत की शहरी जल आपूर्ति कंपनियां औसतन करीब 38% पेयजल को गैर राजस्व जल के रूप में गंवा देती हैं, जो वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य 15-20% से लगभग दुना है। नीति आयोग के अनुसार जो स्थिति चिंताजनक है, शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का लगभग 40-50% हिस्सा बर्बाद हो जाता है, जबकि सिंचाई क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता मात्र 38% के बीच में है। ये आंकड़ा दो बड़े निहितार्थ रखता है। मतलब पहला तर्क है कि आप पानी यानी जिस पहले ऊर्जा और लागत को खो चुके होते हैं, जल का 40% अधिक रिसाव में नष्ट हो रहा हो, तो नए जलाशय नदी जोड़ो परियोजना में निवेश करने से पहले इस अदृश्य हानि को रोकना कहीं सस्ता पड़ता है। दूसरा, नए स्रोत विस्तृत करने का अर्थ है प्राय अधिक भूजल दोहन या नई नदी घाटी परियोजनाएं होता है, जो पहले से तनावग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र पर अतिरिक्त बोझ डालती है। इसके बजाय जिला मीटर्ड क्षेत्रों के माध्यम से नॉन रेवेन्यू वाटर बजट का प्रतिकरण करके राज्य वित्त आयोग की नीतियों को सत्यापन आयोग जल हानि की कमी से जोड़कर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि निवेश परिणाम आधारित हो।
0: अरविंद जी, अभी जो दिल्ली में सम्मेलन चल रहा है, इंटरनेशनल समिट ऑन स्मार्ट एंड सस्टेनेबल वाटर सिस्टम, तो इस सम्मेलन की विषय वस्तु रखी गई है तकनीकी और पहुंच के बीच से। तो हम स्मार्ट जल तकनीकों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन देश के जो छोटे शहर हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उन तक इन तकनीकों की कैसे पहुंच सुनिश्चित की जा सकती, ताकि जो भी हम योजनाएं बनाते हैं उनका लाभ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित ना रहे, उसका लाभ सभी तक पहुंचे।
1: जो टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं, एक्चुअली वो उन लोगों के लिए, हम दो तरह की योजनाओं पर बात करें, टॉप डाउन और बॉटम अप। यानी कि किसी भी प्रबंधन का मेन तरीका है कि हम बायलॉज हैं और रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, उनका उपयोग किस तरह से जमीन स्तर पर पहुंच पाए। अब वो उस क्षेत्र तक किस तरह से पहुंच पाएगी, उसके लिए हमें पहले दो स्तर पर काम करना पड़ेगा। पहले हमें ऊपर स्तर पर योजनाएं इस तरह की बनानी पड़ेंगी कि ताकि हर चीज को हम कवर कर पाए। दूसरा, हमें इस तरह से करना पड़ेगा ताकि जो योजनाओं का लाभ है वो जिले स्तर से, गांव स्तर से पहुंच पाए और वो भी उसमें शामिल हो।
0: अरविंद जी, जैसे भी देश में मॉनसून का समय चल रहा है, लगातार बारिश की स्थिति हम देख रहे हैं, और ये भी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि बारिश का जो जल है उसे संचित करना आवश्यक है, इसके लिए तमाम कोशिशें की जानी चाहिए और तमाम इसके लिए प्रयास भी किए गए, अमृत सरोवर बनाए गए और भी सरकार की तरफ से प्रयास किए गए। ऐसे में जब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जल तो काफी उपलब्ध हो जाता है, लेकिन उसका वास्तविक रूप से हम ना तो उसे इकट्ठा कर पाते हैं, ना ही उसका ठीक से दोहन कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक आम नागरिक के तौर पर लोगों को किस तरह की चीजें करनी चाहिए, कैसे उनकी

0: योजनाएं होनी चाहिए किस तरह से वो काम करें कि जल की बर्बादी कम से कम हो।
1: अगर हम बात करें आज से 30-35 साल पहले तो एक प्रति व्यक्ति जो जरूरत थी वो 150 लीटर के करीब होती थी। अब जल तो उतना ही रहा, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती रही और डिपेंडेंस बढ़ती रही, जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारी टोटल जनसंख्या का जो है अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए 16% है, केवल हमें 4% पानी मिलता है। ज्यादातर पानी चूंकि इस पिछले 10-20 सालों में आपने देखा होगा कि शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ है, लोग ग्रामीण क्षेत्र से बहुत जल्दी विस्थापित होकर शहर की तरफ आए हैं, तो उनकी आवश्यकताएं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले थे उनसे अलग तरह की हो गई हैं। तो अब गांव में भी जल की आवश्यकता है, तो किसी तरह से हमें कहीं ना कहीं हमारे जो स्रोत थे, यानी कि आपने सुना होगा कि हमारी अमृत सरोवर योजना बनी, तो उसका पर्पस ये था कि हर गांव में शहर में कई तरह के तालाब हों ताकि वो आपकी रोज की जरूरतों को जो है, जो आपकी रोज की जरूरत है उनको पूरा करते रहे। अब रोज की जरूरतें आपकी खाद्यान्न से रिलेटेड भी हो सकती है, यानी कि फिशरीज है जैसे, अब पानी से पोर्टेबल नॉन पोर्टेबल भी है तो वो भी पूरी होती रहे, और इसके अलावा आप किसी तरह से अपनी जिंदगी को, मतलब आपका सबसे बड़ा गांव में रहने वाले को, जैसे पहले बताया था कि हम ज्यादा जरूरतें जो हमारी हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यानी कि 40-80% पानी एग्रीकल्चर में चला जाता, तो किस तरह से हम कौन से पानी को कहां इस्तेमाल करेंगे ये हमारे लिए ज्यादा विषय का रहेगा।
0: अरविंद जी, शून्य तरल अपशिष्ट उत्सर्जन जैसी तकनीकें उद्योगों में पानी की खपत और अपशिष्ट जल बहाव को कम करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन इन तकनीकों की लागत अधिक मानी जाती है, तो ऐसे में जो छोटे और मध्यम उद्यम है या एक बहुत ही छोटे स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति है वो किस तरह की गतिविधियों को अपनाएं जिससे कि उसको वित्तीय लागत भी उस पर कम आए और जो अपशिष्ट जल निकलता है उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा सके ताकि बर्बादी कम हो?
1: एक बेहद चिंता का विषय है, मतलब ये कि हम किस तरह से कर पाए। तो शून्य तरल अपशिष्ट उत्सर्जन की, क्योंकि जल जैसी तकनीकों की ऊंची पूंजीगत लागत छोटे मध्यम उद्योग MSME के लिए स्वाभाविक रूप से बड़ी बाधा है। बड़े कॉर्पोरेट इसे वाहन कर सकते हैं, पर MSME इसके लिए नीति का आकार बनाने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ना होगा। तो हमें एक तो आम आदमी के लिए और हमारे उद्योग धंधे किस तरह हम कर पाएंगे, मेरी राय में तीन स्तरों पर संरचित होनी चाहिए। पहला, पूंजीगत सब्सिडी ब्याज सहायता जैसे MSME मंत्रालय की मौजूदा ZLD इफेक्टिव जो योजना है वो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हम कहीं ना कहीं 30-40% सीधा अनुदान दे के इसको हम रियायती करके हम लोगों को उससे सीधा जोड़ सकते हैं।
0: अरविंद जी, आज के दौर की अगर हम बात करते तो हमने देखा कि हमारे पास जल की उपलब्धता तो आसानी से हो जाती है, शायद यही कारण है कि उसकी इम्पोर्टेंस को एक सामान्य व्यक्ति उतनी ज्यादा नहीं दे पाता है। कहीं ना कहीं गलतियां सभी से हो जाती हैं कि जल की बर्बादी बढ़ती जा रही है, इसे न्यूनतम करने के लिए हम किस तरह के उपाय कर सकते हैं?
1: पानी जो है वो पोर्टेबल, जिसे आप बोल रहे पोर्टेबल नीड के हिसाब से जो हमें करना है, तो हम अपने व्यक्तिगत जो हमारे यूज में पानी आता है उसको कम से कम हम उस पर लाएं चीजों पे, तो उससे हम बर्बादी बचा पाएंगे। और जैसे आपने सुना होगा सिंगापुर में कई जगह पे रिसाइकल वाटर का यूज हो रहा है, अभी हमारे लिए वो चीजें उतनी उपयोगी नहीं बन पाई, लेकिन एक आम आदमी में केवल मतलब कुछ तकनीकी का सुधार करके हम या उनको समझा के किसी तरह से पानी के मामले में जागरूक बना सकते हैं।
0: अरविंद जी, कृषि का जो क्षेत्र है भारत में पानी का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता क्षेत्र, मतलब सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारे यहाँ पर जो शुद्ध जल है, पेयजल के रूप में भी हम पानी का काफी इस्तेमाल कृषि में करते हैं और सिंचाई की दक्षता बढ़ाने की भी हमारे देश में काफी संभावनाएं हैं, तो क्या सूक्ष्म सिंचाई, स्मार्ट सिंचाई और मिट्टी की नमी की वास्तविक समय निगरानी जैसी जो तकनीकें हैं वे व्यापक स्तर पर अपनाई जा सकती हैं और कृषि क्षेत्र में पानी की खपत को कम कर सकती हैं?
1: हाँ, संभावना बहुत बड़ी है, पर व्यापक अपनाना अभी बाकी है। कृषि भारत में जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और दलवाई समिति के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई मतलब ड्रिप इरिगेशन से 40% तक जल बचत, 45% उत्पादन वृद्धि, 50% आय वृद्धि संभव है। वाड़ सिंचाई की तुलना में इससे औसतन 30-50% औसतन करीब करीब 32.3 जल की बचत होती है, साथ ही बिजली और उर्वरक की खपत भी घटती है। अब इसमें क्या चैलेंज है? क्षमता बनाम वास्तविकता। सो भारत का माइक्रो इरिगेशन कवरेज 70 MHA की संभावना के मुकाबले केवल 17 MHA है, यानी कि क्षमता का 1/4 है। कारण है ऊंची शुरुआती लागत, जागरूकता की कमी और मुफ्त सस्ती बिजली जो ड्रिप अपनाने का आर्थिक तर्क कमजोर करती है। नीतिगत सहारा है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उद्यम योजनाएं हैं, सोलर पंप है, प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना है, पर ड्रॉप पर क्रॉप के तहत उपकरणों पर 55% तक अनुदान और नाबार्ड का 5,000 करोड़ का सूक्ष्म सिंचाई कोष विस्तार में मदद कर रहे हैं। स्मार्ट ग्रिड सिंचाई, मृदा नमी सेंसर इसे अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। रियल टाइम डेटा से पानी सिर्फ जरूरत पर दिया जाता है, ना कि निश्चित शेड्यूल पर, जिससे बचत संभावना है। निष्कर्ष ये सिद्ध करता है, फायदा स्पष्ट है कि एक चुनौती जिसके कारण सस्ती फाइनेंसिंग, बिजली मूल्य सुधार और किसान प्रशिक्षण जरूरी है।
0: अरविंद जी, आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो जल प्रबंधन

0: में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और वास्तविक समय का आंकड़ा विश्लेषण के इस्तेमाल की जो चर्चा है वो भी तेजी से बढ़ रही है। तो आपके अनुसार क्या लगता है कि आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल प्रबंधन की किस समस्या को सबसे प्रभावी ढंग से हल कर सकता है, यानी कि पानी की पाइपलाइन में रिसाव को, मांग के अनुमान को, भूजल प्रबंधन या फिर जल शोधन की जो दक्षता है उसमें?
1: मेरी विश्लेषणात्मक राय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकट भविष्य में सबसे प्रभावी ढंग से पाइपलाइन रिसाव, गैर राजस्व वाली नॉन रेवेन्यू वाटर जिसे बोलते हैं, की समस्या का हल कर सकता है, क्योंकि यहाँ तकनीक और आवश्यकता के बीच तालमेल सबसे स्पष्ट है। इसका कारण यह है कि भारत में भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित पाइपलाइन मानचित्र यानी कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन मीटर क्षेत्र की अनुपस्थिति सक्रिय जल प्रबंधन में सबसे बड़ी बाधा है। इसके कारण जल उपयोगिता संस्थाएं प्रायः रिसाव एवं पाइपलाइन विफलता के बाद भी प्रतिक्रिया देती हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसे AI आधारित प्रिडिक्टिव मॉडल द्वारा तुरंत हल कर सकते हैं। रिसाव होने के इंतजार के बजाय पैटर्न समझ के पहले से चेतावनी, व्यावहारिक उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। बेंगलुरु जल आपूर्ति जो मल निकासी बोर्ड ने पानी की चोरी, रिसाव, गैर राजस्व वाटर कम करने के उद्देश्य से स्मार्ट टेरा एवं सोलिनियस जैसी स्टार्टअप के साथ AI व रोबोटिक तकनीक पर संयुक्त अध्ययन शुरू किया है। इसी तरह 2026 के राष्ट्रीय AI समिट ऑन वाटर में गैर राजस्व वाटर घटाने, डेटा संचालित नागरिक केंद्रित उपयोगिताओं के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। मांग पूर्ण मान यानी कि कैसे पता लगा लें, भूजल प्रबंधन दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, परंतु रिसाव नियंत्रण में AI का तुरंत प्रभाव, मापन योग और आर्थिक रूप से स्वतः वित्तीय पोषण तक यानी कि जानकारी देना, क्योंकि बचाया गया हर लीटर पानी सीधे राजस्व में बदलता है, इससे निवेश जल्दी वसूल हो जाता है। यही कारण है कि पहला सबसे व्यावहारिक मोर्चा बनानी चाहिए।
0: अरविंद जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू वेरी मच।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में जल सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद डॉक्टर अरविंद कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड।

ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम मन चाहे गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में पत्र लिखने के लिए सबसे पहले अपना पता बता देते हैं। मन चाहे गीत द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी रोहतक, पिन कोड रहेगा 124001। आप इस पते पर पत्र लिखकर हमें अपनी फरमाइश भेज सकते हैं और हम जल्द से जल्द आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे। पहला खत जो हमारे हाथ में है वह आया है गोला बाजार बक्सर से। भेजने वाले हैं श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित। महेंद्रगढ़ से आप हैं विकास गांधी, ममता गांधी, वंश, दिया, नोनू, शगुन और विक्की गांधी। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा ने पत्र भेजा है। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर विरक, जतेक और मिका विरक। बठिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। ये पत्र है रेलवे कॉलोनी बठिंडा से। भेजा है जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और उनका समस्त परिवार। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। अलिका डब्वाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। ये पत्र है पटेल नगर मलोट पंजाब से। भेजने वाले हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, बेबी आरजू जाजोरिया। आइए सुनते हैं इन सब की फरमाइश पर फिल्म मासूम से ये गीत। आवाज़ें हैं वनिता मिश्रा, गुरप्रीत कौर और गौरी बापत की। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगला खत जो हम शामिल करने जा रहे हैं वे आया है आदर्श गांव बलियाली जिला भिवानी हरियाणा से। भेजने वाले हैं दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी बंसल, प्रवीण कुमार, ममता रानी बंसल, कमल कुमार, गर्विश बंसल और तमन्ना बंसल। गांव फ्रांसिसी से राजकुमार डुडी, सुरजीत सिंह, प्रमोद कुमार। हांसी शहर से आप हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। ये पत्र है औरंगाबाद से भेजा है राजेश साबले पाटिल, राजदीप रजेश, राशि रजेश और शीतल राजेश ने। नई बाजार बक्सर से ये हैं राजेश कुमार केशरी, विनोद कुमार, रोहन कुमार और पंकज केशरी। मोहाली पंजाब से आप हैं बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, अरफा अफरीन, इल्मा रानी, नबी हसन और असलम सैफी। प्रमीलागंज अलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। आइए इन सब की फरमाइश को पूरा करते हैं और आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म जूली से ये गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

अगला खत है फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से, भेजने वाले हैं गुरविंदर सिंह पांडा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांडा, कोलू काकू और जेएस रामगढ़िया। चौधरीवास से आप हैं राजू अग्रवाल, केशव, अलक, चरणदास और रेखा। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, आशीष, बेबी काव्या और सुच्चा पाठक। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और फिरोज आलम और चांदनी नाज। महादेव घाट अमलेश्वर से आप हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म द ग्रेट गैम्बलर से ये गीत। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत बद किया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम में अगला गीत जो हम आपको सुनवाएंगे वह है फिल्म तेरे घर के सामने से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है SD बर्मन ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा ने। जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी और ऋतिक। जिला कैथल हरियाणा से पवन शर्मा, बाला शर्मा, रोहित, मोहित और भाविक शर्मा। मसीता डब्वाली से दर्शन लोट, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर और हनी लोट। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। ये पत्र है मुक्तसर से भेजने वाले हैं बाबू सिंह दीमान, बलजिंदर कौर, रवनीत और निशू।

अगला खत हमें मिला है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, भेजा है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवाई से गुलाबदास मानिकपुरी और तितरेंगी से भागवत वर्मा, बटेना से आप हैं बालकरण अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, चटोदा सारागांव से सुजान वर्मा, सोहित्रा आयुषी और कृत वर्मा, साधुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान, दादरी केट भिवानी से आप हैं कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप, सुनीता जैन और सुनीता शर्मा, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल और रमेश मिगलानी। आइए सुनते हैं इन सबकी फरमाइश पर अग्नि रेखा फिल्म से ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगला खत हमें मिला है। गांव नथाना पंजाब से भेजने वाले हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, गगन सोनी, जसमीन, रेखा, सीता और गीता। करुला मुरादाबाद से आप हैं अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। ये पत्र है सुंदरखेड़ राजमाता नगर महाराष्ट्र से भेजने वाले हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति, आकांक्षा, आकाश कुमार, प्रदीप और आसिफ। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। बनियापारा छत्तीसगढ़ प्रदेश से रामचंद्र मखीजा काफिर, शंकरलाल मखीजा, राहुल कुमार, श्रीमती सविता मखीजा, स्वाति मखीजा और उनका समस्त परिवार। आइए सुनते हैं इन सबकी फरमाइश पर फिल्म धर्म करम से ये गीत। इस गीत को गाया है मुकेश ने, लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम में अगला पत्र हमें मिला है राजनगर मधुमनी से। भेजने वाले हैं कुशेश्वर प्रदास गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसमी गुप्ता, संगीता रुद्र गुप्ता और विधि गुप्ता। ऐशबाग लखनऊ से मुकेश गुप्ता, कुसुम पलक गुप्ता और मंकुरी गुप्ता। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली, सूर्यांशी, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी, तन्मय, राज और गुनगुन। अंबाला से आप हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश, राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत और गुरशब्द। गांव गोविंदगढ़ मांझीवाला राजस्थान से ये हैं राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला टुटेजा, गुड्डू, जीनू, मन्नू, आदित्य, भूमि, राखी, अमृत फड़वाल, शिव सेठी, करणपुरी और स्माइल टुटेजा। गांव मटोर जिला कैथल से रामदिया, संजय टाक, अजय टाक, विजय, कृष्ण, गौरव, मुस्कान, पायल, तमन्ना, नीलम बोध से साए, मीना बोध से साए और कृष्णा रामफुल। मोहम्मद हलवाइन शेरकोट बिजनौर से आप हैं वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर अमर अकबर एंथनी फिल्म से ये गीत। इस गीत को गाया है किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और लता मंगेशकर ने। लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगला पत्र है डबवाली हरियाणा से, भेजने वाले हैं जेके बोकलिया, सुनीता, संजय, अनिल और मीनू बोकलिया। न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से सुरेंद्र खुराना, सुमित, सुरभि, अनीता और राजीव ढिंगड़ा। करनाल से नरेंद्र तनेजा, देव, कोमल और शिवम तनेजा। चनहेटी बरेली से विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान। देवघर झारखंड से आप हैं मनोज केसरी, पूजा केसरी, महादेव केसरी, श्रद्धानंद केसरी और रोशनी केसरी। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। नवागढ़ कटई छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा, शारदा और दामिनी वर्मा। दिल्ली शहर मोरी गेट से ये हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। पंखा रोड दिल्ली से आप हैं पिंटू दीवाना, सतनाम कौर, हनी सिंह और राकेश सेठी। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म खिलौना से ये गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में अगला पत्र है सम्राट चौक शिरपुर जैन से। भेजने वाले हैं गिरीश देशमुख, सोनाली, रेणुका, आरव, मनीषा, अश्वनी और जीवा देशमुख। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। चकला बाजार समाना से पुष्पा राज खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल और उनका समस्त परिवार। टावर कॉलोनी भिवानी से आप हैं रमेश सिवानीवाल, सौरभ सिवानीवाल और रमेश वर्मा। गांव बिरौली जीन से ये हैं सुरेंद्र सांगवान, अंकित सांगवान और सचिन सांगवान। योगनगर पंजाब से नरेंद्र मेहता, वरेंद्र मेहता, गिरिराज मेहता, हनी मेहता और सिमरत मेहता। महागौरी मंदिर खजूरी खास दिल्ली से आप हैं पृथ्वी सिंह नेगी, सौरभ सिंह नेगी, कौरव सिंह नेगी और मिट्टी और कोहू। आइए सुनते हैं अगला गीत इन सब की फरमाइश पर, अनुराधा पोटवाल और कुमार सानू की आवाज़ में, फिल्म दिल है के मानता नहीं से। फैज़ अनवर ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम में आखिरी पत्र जो हम शामिल करने जा रहे हैं वे आया है पुणे से। भेजने वाले हैं पंकज वड़ोते, आर्या, आदि, शैलेश, सोनम, धनुषपुरी और बीटी वड़ोते। बगावत यूपी से एहसान अली, दिल्ली से डॉक्टर सोनम और अदीबा, बेरी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज। पिरता कोरासी से रोहित साहू, हरीश कुमार, पुष्पलता और राधा साहू। पत्रोड़ा अनूपगढ़ से मंगल जनागल, रोशनी, अंकुर, इंदु, सुनील जनागल। मेरठ छावनी से दिव्य दर्शन और कविता, हिसार से राजेंद्र सैनी और राहुल सैनी। गांधी पार्क अकोला से आप हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। ये पत्र है फतेहबाद से, भेजने वाले हैं बिट्टू मोहरवाला, गगन अमरपुरी, युवराज और भावुक। सच्चा खेड़ा से वेद बिहारी, बगावत यूपी से एहसान अली। ये पत्र है मटोर से, भेजने वाले हैं रामदिया, नीलम, अजय, विजय, तमन्ना, पायल, रामफल और धर्मवीर। आइए सुनते हैं इन सब की फरमाइश पर इस कार्यक्रम का आखिरी गीत, फिल्म आज और कल से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, बोल हैं साहिर लुधियानवी के और संगीत दिया है रवि ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत को यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, 11 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार और ठीक 11:05 पर अंग्रेजी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश